0: क्या बात है। सो मौसम ने जो करवट ली है, अब लगा है कि हाँ सच में सावन जो है वो शुरू हो गया। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है गोंडा शहर की धड़कन। सो यस, आइए आपको हम ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि भाई आज का स्पेशल, क्योंकि आज जो है वो हल्की हल्की सावन वाली बारिश हो रही है, यानी फुहार बोलते हैं, कई जगह झीसी बोलते हैं और कई जगह झाला बोलते हैं। खैर आपके लोकल एरिया में क्या बोलते हैं ये तो आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बताने वाले हैं कि आज का ट्यूसडे स्पेशल थॉट है क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Koda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, सो आइए चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और ले चलते हैं थॉट पर। जी हाँ, कुछ मैसेजेस आ गए हैं, क्यों नहीं ऐप पर आ रहा था या रेडियो पर। सो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए रुक गया था, अभी फिलहाल उसको बिल्कुल सही कर दिया गया है। सो चलिए बताते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। आज का थॉट ऑफ द डे कहता है, जब कोई इंसान आपके पास अपनी कमज़ोरी बताने आए तो उसे कभी भी मजबूत बनने के लिए मत कहिए। सुना? जब कभी कोई इंसान आपके पास अपनी कमज़ोरी बताने के लिए आए तो उसे कभी भी मजबूत बनने के लिए मत कहिएगा। ऐसा क्यों कहा आज के थॉट ऑफ टर्न ने? कोई ख्याल आ रहा है आपको कि ऐसा क्यों होगा, है ना? सो होना क्या चाहिए फिर? जब कोई भी इंसान आपके पास अपनी कमजोरी बताने आए तो उसे कभी भी मजबूत बनने के लिए मत कहिए। क्यों? क्योंकि भाई, कोई अगर अपने बारे में बता रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंसान कमज़ोर है, आगे नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। हम सभी लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन जब हम पर आती है तो कुछ वक्त के लिए हम भी ब्लैंक होते हैं, कुछ वक्त के लिए हम भी नाउम्मीद हो जाते हैं, कुछ वक्त के लिए हम भी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। बहुत कुछ होता है और ये बहुत कुछ ऐसे ही चलता है। इसलिए कहा कि कभी कोई शख्स आता है आपके पास अपनी कमज़ोरी बताने के लिए तो उसे ये मत कहिए कि तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं, हर किसी की लाइफ का एक फेज़ होता है। ये वैसे ही है जैसे हर दिन को खुश हो सकते हो, हर दिन खुश रह रहे हो, ऐसा नहीं है। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी सादगी है, कभी बहुत सारे लोग हैं, कभी तन्हाई है, सब कुछ तो चलता रहता है लाइफ में। और वैसे भी जो बता ले जाते हैं अपने बारे में वो वीक थोड़ी ना होते हैं, तो स्ट्रांग में आते हैं, राइट? सो इसीलिए आज का थॉट ऑफ द डे ये बात कह रहा है कि जब कभी कोई आपके पास अपनी कमज़ोरी बताने के लिए आए तो उसे आप ये मत कहिए कि तुम स्ट्रांग बनो, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी ही तरह। बस कुछ ऐसे हालात अभी इस वक्त उसके साथ हैं जो आपके साथ में नहीं हैं और कभी आपके साथ में भी रहे हैं, है ना? सो ये होता है कि जब कभी हम किसी को सुन लेते हैं ना, तो खुद ब खुद उसके अंदर का गुबार निकल जाता है। कई बार इंसान को ऐसा नहीं है कि किसी से राय लेने की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। राय लेने की ज़रूरत किसी से नहीं होती है, बस वो कहना चाहता है कि मेरी जो सिचुएशन है, मेरी जो कंडीशन है इस वक्त, क्या सामने वाला या कोई भी शख्स समझ पा रहा है? और अगर कोई बस सुन भर लेता है तो वो इंसान रिलैक्स्ड हो जाता है, लाइट फील करता है, उसके बाद बहुत बेहतर तरीके से जा करके अपनी चीज़ों को शुरू करता है। सो इसलिए कहा गया है, आज का थॉट यही कह रहा है कि किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मजबूत बनो, खुद भी मजबूत है पहले से ही। सो आज का थॉट ऑफ द डे मुझे लगता है, लाइफ टाइम अगर हम अपने संग रखते हैं और कोई भी जब आएगा बताने और उसको हम कुछ भी एडवाइस करने चले और ये बोलने चले नहीं तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, उससे पहले हमको ये थॉट सुन लेना चाहिए। क्योंकि गम भी एक फीलिंग है, जिस वक्त आ रही है उसको पूरा पूरा होने दो। कहते हैं ना, रोने अगर किसी को नहीं दिया जाता है तो उसके अंदर बीमारी आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती, बहुत अग्रेशन भर जाता है। इसीलिए शायद चीज़ों को निकल जाने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिलहाल मेरा तो यही मानना है इस थॉट ऑफ द डे को सुनने के बाद, और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी इस चीज़ को अपनाना है और कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करना है अपनी उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों के लिए हमें हमेशा लगता है कि एडवाइस करना चाहिए। नहीं, एडवाइस नहीं करना है, एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि आज का ये थॉट ऑफ द डे आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। चलिए, अब आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लग रहा है आपको
ये आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं। और फिलहाल हम आपको ले चल रहे हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। फिलहाल मौसम ने ले ली है करवट और बड़ा ही रोमांटिक सा मौसम हो रहा है अपने गोंडा का, क्योंकि आप भी उठ चुके हैं और आप भी जुड़ चुके हैं अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा से।

0: पता है साहिबा का ख्याल दिन रात क्यों आता है? अरे भैया रिचार्ज करवा लिया था, अभी तक पैसे वापस नहीं दिए। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉकर जी अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

आपने बुलाया और हम चले आए, साथ में थॉट ऑफ द डे का भी तोहफा लाया, जिस पर आपके रिएक्शंस आ गए हैं। थॉट ऑफ द डे को आपने सुना और उसके बाद कई सारे रिएक्शंस भी दिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं भाई किसने क्या कुछ दिया। लेकिन उससे पहले विशेस भी है आपकी मॉर्निंग के टाइम को लेकर के, आज के दिन को लेकर के। आज तो ट्यूसडे वाला शो भी है, सो सबसे पहला जो मैसेज आया है इस शो में वो वहाँ से शुरुआत करते हैं। सविता दुबे जी लिखती हैं, सुप्रभात सुप्रभात, आपको भी अनोखी का मैसेज है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग टू यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप कि आप भी ज़रूर अच्छे होंगे। लवली लिखते हैं, सर जी गुड मॉर्निंग, मौन व्रत रखा है। जी हाँ, कुछ देर का मौन व्रत था आज 89.6 FM का। ऑलराइट, सो इसके बाद महेंद्र देपन, आपका भी स्वागत है, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। हमारी गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा वाले शो में। एंड यस, देखिए हमारी सविता जी ने लिखा भी है कि मैं बहुत रोती थी, अब नहीं, पहले बहुत मजबूत कर लिया आपने आपको, आज का सुविचार बहुत प्यारा लगा, आपकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही, गला ख़राब? नहीं, गला ख़राब नहीं है, गले को तो हमने चेंज करके बोलना शुरू किया है ना, मुझे नहीं लग रहा गला ख़राब है क्या? खैर, ख़राब होगा भी तो भी सही हो जाएगा, बस इस शो के ख़त्म होने से पहले पहले। इसी बीच में हमारे धर्मेंद्र मोहन जी आ गए हैं आवाज़ फिकास से, चैट पर लिखते हैं अदनान सर, हैप्पीनेस मॉर्निंग सुबह सुबह का आपको भी। और एक पेन गलती कर सकता है लेकिन एक पेंसिल गलती नहीं कर सकती, क्योंकि उनके साथ एक दोस्त है रबर। जब तक एक सच्चा दोस्त आपके साथ है वो आपकी ज़िंदगी की गलतियों को मिटाकर आपको अच्छा इंसान बना देगा, इसलिए सच्चे और अच्छे दोस्त हमेशा साथ रखिए। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और बात करते ही करते दिलीप जी आ गए हैं मध्य प्रदेश कोठी से, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत स्वागत करते हैं आपका दिलीप साहू जी मध्य प्रदेश कोठी से गोंडा FM पर। सो यस, दोस्त भी रखिए और गुड मॉर्निंग भी विशेस देते रहिए, और रोने का मन करे तो खूब खुल के रोते रहिए, हर चीज़ यार एंजॉय करने की बात है, इतना ज़्यादा टेंशन काहे को लेते ना। चलिए फिलहाल चूँकि भाई मौसम रोमांटिक हो चला है, तो एक ये बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा है जो हम आप तक ज़रूर पहुँचा देते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। और उसके बाद आ रहे हैं वापस और लगातार बातचीत का सिलसिला जारी होने वाला। वैसे हाँ, आज के दिन में आपको सिटी अपडेट की तरफ भी हम ले जाने वाले हैं, इसलिए आप भी चिपक के बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो से, सिर्फ अपने आरजे अदनान के साथ।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। अरे सुना
2: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 53 46।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो वक्त आ गया है आपको सिटी की अपडेट की तरफ ले चलने का और बताने का कि भाई क्या है आज की सिटी अपडेट। सो चलिए शुरू करते हैं। और पहली जो अपडेट आ रही है गोंडा से, वो है एनसीसी भर्ती शिविर की अपडेट। जी हाँ, सो तुलसी स्मारक जो पस्का में मौजूद है इंटर कॉलेज, वहाँ जूनियर डिवीज़न एनसीसी भर्ती प्रक्रिया आज सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। और स्कूल के ANO कैप्टन नरेंद्र ने बताया कि कक्षा 8 और 9 के जिन स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है वो इसमें शामिल होंगे। इसमें शारीरिक दक्षता फिर लिखित परीक्षा होगी। सो जूनियर डिवीज़न की 50 सीटों के लिए 80 स्टूडेंट्स ने जो है इसमें अप्लाई किया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई आ रही है। 215 ग्राम पंचायतों की आय का जो है वो ऑडिट शुरू हो गया है। सो ज़िले की 215 ग्राम पंचायतों की खुद की आय का ऑडिट शुरू हो गया है और ये ऑडिट पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना के तहत किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो पंचायतों को उनके खुद के संसाधनों से बेहतर राजस्व कमाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो है बिजली विभाग से जुड़ी हुई। जी हाँ, सो आपको बता दें कि बालपुर हजारी के पृथ्वीपुरवा निवासी शिवशंकर ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप फिलहाल लगाया है और पीड़ित ने बताया भी है कि 1 अप्रैल को 1400 रुपये का बिल जमा करने के बावजूद 16 अप्रैल को कनेक्शन काट दिया गया। सो जाँच में 15,40,000 रुपये बकाया दर्शाया गया और शिकायत पर 6 जून को अवर अभियंता अनुराग ने जांच करके सुधार करके आश्वासन दिया था। 4 महीने बाद ना तो बिल सही हुआ और ना ही आपूर्ति बहाल की गई। सो बिजली नहीं होने से उनका जो दैनिक जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो आपको हम बता दें गोंडा में सबसे ज़्यादा HRP 9,334 महिलाओं में मिला गंभीर एनीमिया। जी हाँ, मंडल में 14,509 जो गर्भवती महिलाएं हैं वो हाई रिस्क के दायरे में आ चुकी हैं। सो देवी पाटन मंडल के जो बता दें हम अगर डेटा की बात, तो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े फिलहाल सामने आए हैं। सो अप्रैल से जून 2026 के बीच में मंडल के 4 जिलों में 14,509 गर्भवतियों को प्रसव के पहले हाई रिस्क प्रेगनेंसी श्रेणी में रखा गया है और इस फेज़ में 9,334 गर्भवतियों में गंभीर एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे भी कम पाया गया है। सो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से अप्रैल से जून 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से मंडल में सबसे ज़्यादा 5,220 हाई रिस्क गर्भवती गोंडा में चिन्हित हुई हैं और इसके बाद बहराइच में 4,378, 3,105 श्रावस्ती में और 1,761 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर की क्या सलाह है? डॉक्टर की सलाह है कि ज़िला महिला अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर माधुरी ने बताया है कि गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 नियमित जांच कराना ज़रूरी है और सभी गर्भवतियों को आयरन फॉलिक एसिड यानी IFA की गोलियां नियमित लेनी चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, चना, गुड़, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित अनाज और मौसमी फल जो है वो खाने में शामिल करना चाहिए। सो हाई रिस्क क्या होता है?

ऐसी गर्भावस्था जिसमें माँ या गर्भस्थ शिशु को सामान्य से ज़्यादा खतरा हो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। सो बहुत गंभीर एनीमिया है या हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कम उम्र में गर्भधारण या जुड़वा गर्भधारण या बार बार गर्भपात या पूर्व में प्रसव संबंधी जो जटिलता हैं वो इसकी प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और वो है फिलहाल समिति पर खाद को लेकर के। सो धानीपुर का मामला है कि साधन सहकारी समिति माधवगंज पर खाद डंप होने के बावजूद कल की अगर हम बात करें सोमवार को वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया और गुनईपुरवा के बठई और नौसी के लोगों ने बताया कि माधवगंज समिति पर खाद होने की जानकारी वहां पर पहुंचे तो ताला लटकता मिला। सचिव ने बताया कि रेवतागाड़ा में खाद का जो है वितरण वो किया जा रहा है इसलिए माधवगंज समिति जो है वो बंद है। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है नशा उन्मूलन गोष्ठी को लेकर। सो आज सुबह 10 बजे से महाकवि तुलसीदास पीजी कॉलेज में एनएसएस के तत्वाधान में नशा उन्मूलन पर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आज ही कन्हैया लाल इंटर कॉलेज करनैलगंज में एनसीसी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन आज सुबह 10 बजे से किया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें शाम 5 बजे गांधी पार्क के ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से खिलाड़ियों का प्रशिक्षण भी दिया जाना है। सो ये जो भी अपडेट्स बताया वो आज के होने वाले इवेंट्स के बारे में बताया है। और अब आपको हम बता दें अगली अपडेट। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो है 2609 परिषदीय स्कूल्स में अब स्पेशल रीडिंग क्लास होगी। जी हाँ, सो परिषदीय विद्यालयों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल की लत से दूर करके बुक्स से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। ज़िले के सभी 2609 परिषदीय स्कूल्स में जल्द ही ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड यानी DEAR अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत हफ्ते में एक दिन 30 मिनट की स्पेशल रीडिंग क्लास जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स अपनी पसंद की कहानी कविताएं बाल साहित्य जो है या प्रेरक प्रसंग समाचार पत्र ये सभी पढ़ेंगे। सभी परिषदीय विद्यालयों की जो टाइम टेबल है उसमें पुस्तकालय के लिए अलग से वक्त डिसाइड किया जाएगा ताकि बच्चे जो है वो अपनी पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ बाकी के जो साहित्य है उसको भी रेगुलर पढ़ सकते हैं। सो अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को डेवलप करना है, भाषा कौशल मजबूत करना है और मोबाइल स्क्रीन पर बिताए जाने वाले वक्त को कम करना है। इसके अलावा नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में संडे की शाम शहर के एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर फारूख सगीर ने की थी। सो मुख्य अतिथि ACMO डॉक्टर GM चिश्ती रहे थे और डॉक्टर सलमान खालिद ने दैनिक जीवन में यूनानी चिकित्सा पद्धति अपनाने के उपाय पर भी चर्चा की थी। सो यूनानी चिकित्सा की उपयोगिता पर इस पूरे इवेंट में चर्चा की गई थी कि किस तरह से आजकल की हो रही कई बीमारियों में यूनानी पद्धति बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इन सभी के साथ में आपको ले चलते हैं एक और अपडेट की तरफ। सो सावन कृपाल रूहानी मिशन के तत्वाधान में जो है कल सोमवार को मालवीय नगर में मौजूद कृपाल आश्रम में करियर काउंसलिंग की कार्यशाला भी आयोजित की गई। इसमें जम्मू से आई करियर काउंसलर निमिषा गोयल ने स्टूडेंट्स को उनकी रुचि क्षमता और व्यक्तित्व के हिसाब से करियर को चूज करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में करियर के जो है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स को किसी भी दबाव में नहीं बल्कि अपनी जो योग्यता है अपना जो इंटरेस्ट है और अपना जो लक्ष्य है इसको ध्यान में रख कर के फैसला लेना है। सही दिशा में की गई तैयारी जो है वो ज़रूर उनको हर वो चीज़ अचीव कराएगी जिसके लिए वो ऑफकोर्स कोशिश लगातार कर रहे हैं। सो भाई ये कुछ ख़ास अपडेट्स रही जो कि हमने आपको बताया एंड आई होप कि आप तक ज़रूर ये बातें पहुंच गई होंगी। अब सीधे चल रहे हैं आपको एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाने के लिए एंड आई होप कि भाई आज की सिटी अपडेट आपको काफ़ी कुछ दे गई होगी। और होता भी है कि भाई सिटी अपडेट में हमको कई सारी ऐसी अपडेट्स मिल जाती हैं
जिनकी जानकारी हमको नहीं होती है और वो काफ़ी ज़्यादा हमारे काम की निकल आती है। सो आई होप कि आज की भी कई जानकारी जो है वो आपके काम की निकल आई हो और ज़रूर आप इसको यूटिलाइज़ करें। फ़िलहाल अब लेकर चल रहे हैं आपको अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

0: अरे अरे अरे यार यार सेंटी, तू यहाँ जंगल में बैठा काहे को रो रहा है भाई?
1: अरे यार बंटी,
0: हाँ
1: एक लड़की को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: अरे तो इसमें रोने की कौन सी बात है?
1: अरे जिसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ उसका नाम नहीं याद आ रहा।

0: हाँ जी, सुबह इश्क का है काम पुराना, चैन बनके चैन चुराना। फिलहाल अब हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की तरफ चल करके कुछ खास खबरें जो आपके लिए हैं। फिलहाल एक मूवी के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना था। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ पर फिल्माई गई ये मूवी मैं वापस आऊँगा, डेफिनेटली आपने इस मूवी के बारे में सुना होगा। अच्छी बात ये है कि ये OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है। इसके अलावा सलमान खान ने अपनी जेल का किस्सा भी सुनाया है, और तो और अशोक सम्राट का किरदार निभाना चाहते हैं सनी देओल। ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो OTT प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं और कई सारी मूवीज़ को देखते हैं। तो आपको बता दें, चूँकि अगस्त स्टार्ट हो गया है, आज 4 तारीख है, इस फर्स्ट वीक में कौन कौन सी वेब सीरीज़ जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ रही है, कौन कौन सी मूवीज़ जो है वो लॉन्च की जा रही है, ये बताते हैं आपको। दरअसल आपको बता दें कि पहला जो है वो है मैं वापस आऊँगा, इम्तियाज़ अली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी। इसमें नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवदी वेदांग रैना जैसे सितारे नज़र आए थे। सो फिल्म की क्रिटिक्स ने जम करके तारीफ़ भी की थी। अब ये OTT पर दस्तक देने जा रही है। फिल्म 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। जी हाँ, इसके बाद है उयिर। सो उयिर कौन सी मूवी है? दरअसल ये तमिल फिल्म है और तमिल भाषा में उयिर का मतलब होता है जीवन या आत्मा। सो रोशन मैथ्यू, बैजू संतोष और अतुल्या चंद्रा की अभिनीत ये फिल्म 4 अगस्त से यानी आज ही से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी। और इस फिल्म की कहानी कन्नूर के धर्मदम पुलिस स्टेशन पर तैनात एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मूवी है वो है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। जी हाँ, सो ये वेब सीरीज़ देशभक्ति से सराबोर है और ऑपरेशन सफ़ेद सागर साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया एक ऐतिहासिक और निर्णायक हवाई अभियान था, जिसका उद्देश्य था कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर छिपे घुसपैठियों को खदेड़ना। सीरीज़ जो है 7 अगस्त 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जिसमें जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ मिहिर आहूजा और अभय वर्मा इसमें आपको नज़र आने वाले हैं। माय लाइफ विद द वॉल्टर बॉयज 3। जी हाँ, लोकप्रिय अमेरिका टीन ड्रामा और रोमांटिक सीरीज़ माय लाइफ विद द वॉल्टर बॉयज का तीसरा सीज़न आने वाला है। सो सीरीज़ का प्रीमियर 6 अगस्त से 2026 से नेटफ्लिक्स पर होगा। सीज़न में कुल 10 एपिसोड्स होंगे और ये सभी एक साथ रिलीज़ किए जाएंगे। इसके अलावा स्टर्लिंग पॉइंट, ये अमेरिकी ड्रामा सीरीज़ है, इसमें मेगन पार्क ने बनाया है। 17 साल की एनी जैकबसन यानी एला रूबिन की कहानी है। स्टर्लिंग पॉइंट 5 अगस्त से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। MTV हसल 5, सो MTV हसल के नए सीज़न के साथ ये लौट रहा है। इस बार शो में नए रैपर की खोज हो रही है, साथ ही उन जगहों और एक्सपीरियंसेस और कहानियों से भी रूबरू कराया जाएगा जहां इन कलाकारों को आकार मिला था। ये 8 अगस्त से जी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाला है। सो ये तो बातें रही जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस फर्स्ट वीक में आ रही मूवीज़ या वेब सीरीज़ हैं या सीरियल्स हैं। इसके बाद बताने वाले हैं भाई, सलमान खान ने अपने जेल का किस्सा सुनाया और साथ ही सनी देओल का सम्राट अशोक का किरदार निभाने की चाहत के बारे में भी आपको हम बताने वाले। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। ब्रेक ही उस पर वापस से हाज़िर हो रहे हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: तो भाई जिस वादे के साथ गए थे उस वादे के साथ वापस से आ गए और आपको बता रहे हैं आखिर सलमान ने पहली बार जेल का किस्सा क्या सुनाया, कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस और साथ ही साथ क्यों करना चाहते हैं सनी देओल अशोक सम्राट का किरदार, ये सब कुछ बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Kota, with your favorite, RJ Khan.

अलायंस शो पर पहुंचे सलमान खान का एक प्रोमो सामने आया। इसमें इन्होंने सभी प्रतिभागियों से जेल के बिताए वक्त का किस्सा साझा किया। सो जेल के दिनों को याद करते हुए सलमान ने कहा, बहुत साल पहले जब मैं जेल था, वहाँ एक छोटे से कमरे में 50-60-70 लोग रहते थे। सिर्फ एक बाथरूम था और वो भी इंडियन स्टाइल। कभी कभी छिपकलियाँ होती थी और हालात इतनी ख़राब थी कि गंदगी ऊपर तक भरी रहती थी। सो आपको बता दें कि भाई 1998 के काले हिरन और चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान को 4 बार जेल और हिरासत में जाना पड़ा है और करीब 18 दिन गुजारने पड़े हैं जेल में। इसके अलावा आपने बताया था कि भाई सनी देओल जो है वो इंटरेस्टेड हैं अशोक सम्राट का किरदार निभाने के लिए, आखिर क्यों? सो आपको बता दें कि पटना में एक हुए प्रमोशनल इवेंट के दौरान सनी देओल ने अपने अगले प्रोजेक्ट की जो योजना है वो साझा की है। सो इन्होंने बताया है कि वो फिल्म में अपने दोनों बेटों को भी शामिल करना चाहते हैं। सो इसी इवेंट में सनी ने कहा कि सम्राट अशोक मेरे दिल के बहुत करीब हैं, राजकुमार संतोषी ने मुझे इसकी कहानी सुनाई और चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी इस कहानी का नरेशन दिया। मुझे ये भी यकीन है कि मैं अपने दोनों बेटों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकता हूँ क्योंकि इसका एक विशाल इतिहास है। सो ऐसी फिल्मों के लिए भारी बजट चाहिए। जी हाँ, सनी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे कहा कि ऐसी फिल्मों के लिए भारी बजट की ज़रूरत होती है। पहले मेरे पास ऐसी कोई फिल्म नहीं आई, हालांकि गदर 2 के बाद हालत बेहतर हुई है। मुझे उम्मीद है कि आगे और बेहतर होंगे। मैं ज़रूर एक ऐसी फिल्म बनाना चाहूँगा। सो आपको हम बता दें कि शाहरुख खान इससे पहले साल 2001 में रिलीज़ हुई फिल्म अशोका में सम्राट अशोक का किरदार जो है वो निभा चुके हैं और अब फिलहाल सनी देओल ने सम्राट अशोक का किरदार निभाने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि भाई जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक मूवी जब बनाना होता है पुरानी चीज़ों को लेकर के, तो उसके सेटअप में और उसके दिखाई जा रही प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी खर्चा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, एक भारी बजट की आवश्यकता होती है। फिलहाल सनी देओल ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी मूवी बनाएं जिसमें वो किरदार निभाएं सम्राट अशोक का और साथ ही साथ अपने दोनों बेटों को भी उसी फिल्म उसी प्रोजेक्ट में शामिल करें। सो फिलहाल आपको क्या लगता है, अगर अशोक सम्राट का किरदार निभाएंगे सनी देओल तो कितना फिट बैठेगा और आप इस रोल को कैसे देखते हैं? यानी अगर सनी देओल आते हैं सम्राट अशोका के किरदार में तो आपको कितना पसंद आने वाला है? फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में, क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन

0: मॉर्निंग गुंडा में मैंने खुद आपको बताई है, और न जाने कितनी सारी स्टोरीज आपने खुद अपनी आंखों से या तो देखी है, या तो पेपर में पढ़ा है, या तो कहीं किसी सोर्स से आपने उस चीज़ को जाना है। सो ये तो बात सही है कि दोस्ती के मायने बहुत अलग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़ास होते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम आपको बताएं कि भाई कोई ऐसी दोस्ती जिसको आप सोच कर ही कहे कि अरे ये कोई फिल्मी स्टोरी चल रही है क्या, बट ये सच है, ये हकीकत है। सो क्या हुआ है ये फिल्म जैसी स्टोरी लगने वाली रियल लाइफ स्टोरी में, ये आपको बताने वाले। लेकिन उससे पहले आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं, एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जहाँ पे एक इंडियन छोटा सा बच्चा है और साथ ही साथ उसका जो दोस्त है वो शायद आप इमेजिन भी नहीं करेंगे। सो भाई वो फ्रांस का ह्यूगो है। सो आखिर फ्रांस के ह्यूगो की भारत में रहने वाले ऋतिक से कैसी फ्रेंडशिप हुई और किस तरह की ये फ्रेंडशिप चल रही है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। स्टे ट्यून्ड।
1: व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ट्रेन से कूद कर लौटा हूं

हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो, ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और जिस वादे के साथ हम गए थे वो वादा तो हम निभाने ही वाले हैं, यानी एक ऐसी फ्रेंडशिप के बारे में बताने वाले हैं आपको जो सुन करके

0: आप खुश भी होने वाले हैं और आप सच में हैरान होने वाले हैं कि यार इस तरह से फ्रेंडशिप काश को आपकी लाइफ में भी हो। इवन जब मैंने इस फ्रेंडशिप के बारे में जाना, मुझे ऐसा लगा काश को मेरी भी कोई ऐसी फ्रेंडशिप हो तो कितना ज़्यादा मज़ेदार और कितना ज़्यादा अलग रहने वाला है। सो चलिए विस्तार से बताते हैं, दरअसल हम बताना क्या चाह रहे हैं और किस विषय में बताना चाह रहे हैं। आखिर कौन है ऋतिक और कौन है ह्यूगो, जिनके बारे में आपको आरजे अदनान बताएंगे, क्योंकि ये फ्रेंडशिप जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और बड़ी ही शफाफ, बड़ी ही साफ, बड़ी ही बेहतरीन उम्दा सी ये फ्रेंडशिप मानी जा रही है। सो यस ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं तो हम, जाहिर सी बात है, इस फ्रेंडशिप को लेकर के हम यही कहेंगे कि हाँ, जो भी इस फ्रेंडशिप में, इस तरह के फ्रेंडशिप में होते हैं वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। वजह सीधी सी होती है कि भाई कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ पाते हैं कि फ्रेंडशिप निभाना बहुत अच्छा होता है और जब अनएक्सपेक्टेडली कोई फ्रेंडशिप हो तो वो और भी बेहतरीन होने लग जाती है। सो ऐसे कौन सी फ्रेंडशिप है जिसके बारे में हम इतनी सारी बातों को आपसे पहले ही बताए जा रहे हैं, चलिए आपको फाइनली उस कहानी पर ले चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपसे साझा करना, और कहीं ना कहीं अब आप तक ये दोस्ती की कहानी जरूर पहुंच रही है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

0: सो एक फ्रेंच लड़का और एक स्त्री करने वाला भारतीय बच्चा, इनकी दोस्ती की जो चर्चा है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है। सो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इस फ्रेंडशिप का क्यों इतना छाना हो रहा है, चलिए बताते हैं। दरअसल दुनिया के लिए अनोखी लेकिन इनके लिए जिंदगी भर का अटूट रिश्ता हो गया है। सो पेरिस से भारत में आए 22 साल के ह्यूगो डुमास और पटना के एक धोबी परिवार के 8 साल के ऋतिक के बीच में उम्र, उनका रहन सहन, भाषा, हर चीज़ का फ़र्क था, लेकिन उनमें जितनी असमानताएं थीं उतनी ही गहरी दोस्ती भी इनकी बन गई। कैसे? दरअसल हम बात कर रहे हैं आज से पहले की, यानी सन 2012 की, जब इसमें ह्यूगो पढ़ाई के लिए भारत आए थे और कुछ वक्त दिल्ली में रहने के बाद ये हिंदी सीखने पटना पहुँचे थे। वहीं उनके घर के बाहर एक स्त्री करने वाला ढेला था और उस प्रेस वाले के बच्चे भी वहीं खेला करते थे, जिसमें सबसे छोटा था 8 साल का ऋतिक। सो ह्यूगो जो है रोज़ जब काम से घर लौटते तो मुस्कुरा कर ऋतिक से बात करते थे। उन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती थी, फिर भी दोनों घंटों बैठ के बात करते। कभी इशारों में बातें होती तो कभी टूटी फूटी भाषा में, और जब शब्द कम पड़ जाते तो हंसी सब कुछ कह देती थी। सो एक दिन ह्यूगो ने देखा कि ऋतिक और उसकी बहन सड़क किनारे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। सो इन्होंने अपने घर आकर पढ़ने के लिए कहा। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अब ऋतिक जो है बिना झिझक इनके घर आता, किताबें पढ़ता, सवाल पूछता और कभी कभी बस यूं ही बैठा रहता। सो ऋतिक को फ्रांस के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती। वो पूछता वहाँ लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं। सो ह्यूगो उसे पिज्ज़ा और पास्ता खिलाते और ऋतिक उन्हें अपने घर ले जा करके माँ के हाथ का चिकन करी खिलाते। सो दोनों ने अपने बीच के फर्क को नहीं बल्कि एक दूसरे की दुनिया को समझा। सो कभी दोनों साइकिल पर पूरे मोहल्ले की गलियाँ घूमते, कभी क्रिकेट देखते, कभी घूमने जाते। सो ह्यूगो अपने नन्हे से दोस्त की नज़र से शहर को देख रहे थे और ऋतिक के लिए ह्यूगो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे बल्कि ह्यूगो भैया बन चुके थे। लेकिन हर किसी को ये रिश्ता समझ नहीं आता था। कई लोग सवाल करते थे कि एक फ्रेंच लड़का धोबी के बच्चे के साथ इतना वक्त क्यों बिताता है। कुछ लोग ताने भी देते थे, लेकिन ऋतिक ने कभी ये बातें ह्यूगो को नहीं बताई। उसे डर था कि कहीं दुनिया की सोच उनकी दोस्ती के बीच में ना आ जाए। सो वक्त के साथ में ऋतिक बड़ा होता गया। ह्यूगो हमेशा उससे एक ही बात कहते, बिहार से भी बाहर निकलो, दुनिया देखो। उसी हौसले ने ऋतिक को दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। जब वो पहली बार दिल्ली आया तो नए शहर का डर कम रहने वाला कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि ह्यूगो भैया थे। उन्होंने उसे मेट्रो में सफ़र करना, रास्ता समझना और नए शहर पर खुद पर भरोसा करना भी सिखाया। आज भी दोनों मिलते हैं तो रिश्ता बिल्कुल वैसा ही लगता है। खाना साथ बनाते हैं, म्यूज़िक चलाकर डांस करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ऋतिक आज भी किसी मुश्किल में सबसे पहले ह्यूगो भैया को ही फ़ोन कॉल करता है और ह्यूगो कहते हैं कि ऋतिक के साथ रहते हुए उन्हें हमेशा अपना छोटा भाई जैसा फील मिलता ही रहता है। जबकि ऋतिक कहते हैं, अगर ह्यूगो कभी फ्रांस लौट गए तब भी उन्हें मैं परेशान करता रहूँगा, मुझे पता है वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहेंगे। शायद यही दोस्ती की सबसे बड़ी खूबसूरत पहचान है, जब दो लोग एक दूसरे की ज़िंदगी बदलने नहीं निकलते बल्कि उनकी दुनिया का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो कितनी अलग और कितनी सच में फिल्मी स्टोरी लगती है ना ऋतिक एंड ह्यूगो की कहानी। लेकिन सच में सोचिए, ऐसी दोस्ती जहां उम्र भी बहुत अलग, जहां रहन सहन भी बहुत अलग, भाषा भी अलग, कितने कुछ असमानताएं थी, कितने कुछ डिफरेंसेस थे। लेकिन कहते हैं ना कि हैं तो इंसान ही ना, ये तो हमने और आपने बनाया है, ये तो हम चीज़ों में बांटते रहते हैं। फलाना फला जगह का रहने वाला है, उसकी भाषा ये है, उसका सरनेम ये है, उसकी चीज़ें ये हैं, लेकिन है तो इंसान ही। हर कोई मोहब्बत चाहता है, हर कोई अपनापन चाहता है, हर कोई फ्रेंडशिप चाहता है। तो कहीं ना कहीं ऋतिक और ह्यूगो की ये अनोखी दोस्ती के बारे में सुन करके आपको कैसा लगा ये आप हमको बता सकते हैं। यस, एंड साथ ही साथ अभी हमसे एक कॉलर की बात हुई और उनको कुछ स्पेशल सॉन्ग सुनना था, तो चलिए भाई आपको डेडिकेटेड ये सॉन्ग हम सुना देते हैं। फिलहाल आप काम भी कर रहे हैं और एफएम भी सुन रहे हैं और साथ ही हम आपको ये गाना डेडिकेट करते हुए सुनाते। दरअसल कॉल थी मुमताज जी की।
1: Where's the money? Where's the money? Where's the money? Let's dance. Oh yeah.

0: know the system, that it's love for money.
1: पापा पापा, मुझे ना एक बाजा दिला दो।
2: नहीं, तुम बहुत शैतान हो, अगर बाजा दिला देंगे तो तुम सबको तंग करोगी, मुझे पता है।
1: नहीं करेंगे पापा, लॉमी जब छमना छो जाएंगे तब बजाऊंगी।
3: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: मोहब्बत में डूबते हैं दोस्त, तैरते नहीं।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन,

और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: हाँ जी सुबाई, देखिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि आज है 4 अगस्त, लेकिन अगस्त से सिर्फ एक ये नया महीना नहीं आया, बल्कि एक बात ये भी है कि इस वक्त 12th पास करके जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अपने पहले सेमेस्टर के लिए, उनके लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी होती है, क्योंकि 12th तक की लाइफ एक अलग तरह होती है, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं हमारे लिए बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं, नई अपॉर्चुनिटी होती है, नए चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारे नए फ्रेंड और तो और नया सिलेबस भी होता है जो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका होता है अगर हम कंपेयर करें 12वीं से। क्या ध्यान देने लायक होता है जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हैं, चलिए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग जो कार जो अदनान आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

सो चाहे तो आप खुद अगर एक स्टूडेंट हैं और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तो भी गौर से सुनिए, या फिर आपके घर का कोई बच्चा है जो इस वक्त कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, तो उनके लिए ये बातें आपको जानना भी एज पेरेंट या गार्जियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कॉलेज का जो पहला साल होता है वो सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं फ्यूचर करियर की नींव रखने का सबसे अहम वक्त भी माना जाता है। होता है क्या कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं पहले दो साल तक हल्के में लेते हैं और प्लेसमेंट के वक्त अचानक से तैयारी शुरू करते हैं। हालांकि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। अगर पहले साल से ही सही डायरेक्शन में काम किया जाए तो लास्ट ईयर तक बेहतर प्लेसमेंट या इंटर्नशिप या कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन, तीनों के मौके जो हैं वो बढ़ जाते हैं। होता क्या है, नई स्किल्स सीखना होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं या आपका बच्चा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है तो उसको नई स्किल सीखने के लिए इंस्पायर करिए। सो देखिए, आज की जो कंपनीज हैं या आज का जो दौर है, मार्केट है, वो रिजल्ट पर नहीं बल्कि कैंडिडेट की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, यानी वो समस्याओं को कैसे सुलझाता है, या उसका कम्युनिकेशन जिसको हम संचार कौशल भी बोलते हैं, या टीम वर्क, या फिर उसका टेक्निकल कितना वो अच्छा है, इसलिए पहले साल से ही उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ज़रूरी स्किल्स सिखाना उसको शुरू करें। सो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोग्रामिंग या डेटा एनालिसिस या फिर AI जैसे एरियाज में भी शुरुआत कर सकते हैं, जबकि कॉमर्स की अगर हम बात करें या आर्ट्स या फिर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डिजिटल स्किल्स, डेटा हैंडलिंग, रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, फिनेंशियल एनालिसिस या कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। सो हर सेमेस्टर के आखिर में कम से कम एक नया स्किल सीखने का आपको एक लक्ष्य रखना होगा और इस तरह से आप हर बार कुछ नया ज़रूर सीख पाएंगे। क्या करना है, नेटवर्क बनाना है। जी हाँ, सो कई ऐसी नामचीन कंपनीज हैं जो प्लेसमेंट के लिए कम से कम जो एक शैक्षणिक अंक है वो निर्धारित करती हैं, इसलिए पढ़ाई को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। यानी शुरुआत तो आपकी वही होगी ना कि कम से कम इतने नंबर का होगा तो फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं या आप आगे जा सकते हैं, इसलिए पढ़ाई को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो। इसके अलावा आसान भाषा पर काम करिए, यानी भाषा पर अपने काम करना है जिसको लिखने इंटरव्यू के लिए, क्या ताकि वो अच्छे से आप इंटरव्यू क्रैक कर सके, इसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले से ही करना है। रेगुलर जो है आपको समाचार है पत्र जिसको पढ़ना होता है, या फिर ग्रुप डिस्कशन करना होता है, या फिर अपने सीनियर्स से या अपने टीचर्स से जो है वो कांटेक्ट बनाए रखना होता है। जब आपको जॉब की नीड होती है 3 साल बाद तो यही काम आते हैं। सो सही दिशा आपको चुनने का मौका ये सारी चीज़ें देती हैं। इसके अलावा हर साल का एक आपको एम बनाना है। जी हाँ, सो कॉलेज के 4 साल बिना किसी आपके योजना के अगर निकल जाते हैं, इसलिए पहले साल में ही आपको ये तय करना होता है कि आपका जो कैंपस प्लेसमेंट है या आपको हायर एजुकेशन या सरकारी नौकरी या फिर आपको बिजनेस में आना है तो उसका क्या है, उसी के हिसाब से हर साल का छोटे छोटे आपको जो है वो एम बनाने होते हैं और वक्त वक्त पर अपना बायोडेटा अपडेट करना होता है जिसमें आप नए सर्टिफिकेट्स जोड़ते हैं और इसी से देखते हैं कि आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है। सो आखिरी वाले साल में नौकरी की तैयारी शुरू अगर अचानक से करते हैं तो वो बेहतर नहीं होती है, बल्कि इसकी नींव जो है वो पहले साल से ही रखी जाती है। सो वक्त वक्त पर वेबिनार या प्रोफेशनल वर्कशॉप होती है उसका भी हिस्सा बनते रहें। सो जो स्टूडेंट्स वक्त रहते सही डायरेक्शन में छोटे छोटे कदम उठाते हैं वही प्लेसमेंट के वक्त सबसे आगे दिखाई देते हैं। ये बात हमारी नहीं, ये बात रिसर्च बता रही है और ये बात तो भाई जाहिर सी बात है। सो अभी वो बच्चे, अभी वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में आए हैं अपने ग्रेजुएशन की, चाहे वो BA कर रहे हैं, वो BCom कर रहे हों, BSc कर रहे हों, या कोई और हो, इंजीनियरिंग का कोई कोर्स हो, कोई अलग कोई डिग्री हो प्रोफेशनल, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं कि पहला साल है दूसरा साल है तो थोड़ा सा आराम से कैजुअल ले लेते हैं, जब लास्ट में आ रहा है तब तैयारी करते हैं, फिर वहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन ये 2 साल अगर आपने सच में प्रॉपर करके कर लिया तो लिटरली आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है और आप बेहतर जगह होते हैं और डिज़र्व भी करते हैं। सो अगर इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखा तो डेफिनेटली आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा मिलने वाला है और ये बहुत ज़्यादा
ज़रूरी बात है। अब चाहे आप खुद फर्स्ट ईयर में हो, आप खुद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर आप जो हैं एक ऐसे गार्जियन हो कि आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट ईयर में जा रहा है ग्रेजुएशन के लिए या आफ्टर ट्वेल्थ किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए, तो आपको पहले ही इन सारी बातों को बता देना है ताकि उनकी तैयारी पहले से ही रहे। अचानक से पढ़ने वाला जो एक प्रेशर होता है प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए, वो नहीं आएगा। और साथ ही साथ वो बच्चा क्लियरली अगर 4 साल तक लगातार कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में मेहनत करता रहेगा, यानी पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा, तो डेफिनेटली उसका जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए ज़रूरी है वक्त पर इन सारी चीज़ों को करना। एंड आई होप कि भाई आप भी इस बात को समझ रहे हैं और अब अपने घर के बच्चे को भी आप कहीं ना कहीं गाइड करने वाले हैं इन्हीं बातों को लेकर के। सो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल कुछ मैसेजेस भी आपकी तरफ से आए हुए हैं और वो मैसेजेस आपने चैट बॉक्स पर लिखे हैं। चैट बॉक्स पर कौन लोग लिख पाते हैं? वो लोग जो सुनते हैं 89.6 FM को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसकी एप्लीकेशन से। जी हाँ, अगर आप भी एप्लीकेशन से सुनते हैं तो आप भी सुन सकते हैं और साथ ही लिख सकते हैं प्ले स्टोर के ज़रिए डाउनलोड किए गए ऐप के चैट पर आकर के, जहाँ पर आप जो कुछ लिखते हैं वो हम तक डायरेक्ट पहुँचता है। फिलहाल मैसेजेस में क्या है और किसने क्या लिखा ये हम बता ही देते हैं। सो हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था वो दिलीप जी का था, उसके बाद में प्रीति जी हमारी आ गई। सर जी, वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। आशु जी लखनऊ से, सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी। प्रीति जी कहती हैं आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थॉट मिस हो गया। कोई बात नहीं, हम आपकी तबीयत के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं और प्लीज़ मुस्कुराइए, थोड़ा जल्दी ठीक होइए। धर्मेश मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड धर्मेंद्र जी ने कहा है उनको ये सॉन्ग्स पसंद आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और संसार का सबसे बड़ा रिश्ता जो है सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता होता है, जिसके बारे में लवली सिंह ने बताया। थैंक यू सो मच कि दुनिया उस पर मजाक बनाती है लेकिन आपने उसको सच्चाई से बता दिया है और उसको लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं हमने। इरफान शाह मौजूद हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सोनिया तिवारी आपका भी स्वागत करते हैं और आपने बहुत अच्छी बातें बताई, ऐसा कहना है धर्मेंद्र जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कहानी है, सच्ची बात दोस्ती ऊपर रहती है इस दुनिया में, है ना, सविता जी का कहना है। और सर जी, ऐसी फ्रेंडशिप कमाल की फ्रेंडशिप है, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी की, आपको भी पसंद आया। अकबर कुरैशी जी नवाबगंज से हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड सर जी, शिक्षा की जानकारी, बहुत परफेक्ट जानकारी दी आपने, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। सो इसी तरह की कई सारी आपको बातें हम करते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, जिससे हमको बहुत कुछ जानने को मिलता रहता है अपने बारे में या अपने घर के बच्चों के बारे में या अपने घर के बुजुर्गों के बारे में या अपने से जुड़े लोगों के बारे में। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई सुनते रहिए हर रोज़ गुड मॉर्निंग गोंडा शो अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर। फिलहाल वक्त हो गया आपसे इजाजत देने का। आज का शो कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और नगमे गाते रहिए 89.6 FM के संग।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: समता श्वेता जिम्मी, कहाँ हो सब लोग? अरे भाई, हरिओम आया कि नहीं? चलो सब लोग, एक हफ्ते का सामान रख लो। और सुनो, शादी वाले कपड़े जरूर रखना।
3: वहाँ किसी वेडिंग में ले चल रही है किरण दीदी।
4: लगता है डेस्टिनेशन वेडिंग है। जयपुर, केरल या गोवा, कहाँ चलना है भाई?
5: इतने खुश ना हो आप लोग किरण दी, कि बुआ सुल्तानपुर के गांव हलियापुर में रहती हैं, उनके बेटे की शादी है।
2: हाँ सही कहा जिम्मी, बिना तामझाम के लाखों रुपए खर्च किए बिना ढेर सारी रस्मों के साथ चलो शादी दिखाते हैं। तुम सब देखना, इस शादी की बातें करते नहीं थकोगी।
3: अरे किरण दीदी, इतने दिन के लिए हम नहीं चल पाएंगे, छुट्टी भी नहीं मिलेगी और इस समय घर पे मम्मी भी नहीं है।
4: नहीं श्वेता, हम सब चलेंगे। गांव की गूंज की टीम का लक्ष्य है सबको गांव की मिट्टी से जोड़ना है, और इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। शादी चाहे गांव में हो या शहर में, खुशी तो उतनी ही होती है।
5: सही कहा। एक बात बताएं, आजकल की वेडिंग मजा तो आता है पर थक जाते हैं। दो ही दिन में तिलक, एंगेजमेंट, संगीत, शादी, रिसेप्शन सब हो जाता है। वैसे गांव में कैसी शादी होती है?
2: अरे हमारी जिम्मी रानी इतनी समझदार बातें कर रही है तो सुनो, पहले पंडित जी आते हैं, दो चार लड़कियों की फोटो लेकर, उसमें एक फूफा को सरिता पसंद आ जाती है, फिर कुंडली मिलाई जाती है, और अगर कुंडली मिल गई तभी आगे की बात शुरू की जाती है।
6: अब यह तो कतई मत कहना तुम लोग कि कुंडली मिलाना भी कितनी दकियानुसी बातें हैं। हम लोग चाहे जितने भी मॉडर्न हो गए हैं, यह सब बातें मानते जरूर हैं। सच सच बताओ, न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है और तुम लोगों ने क्या यूट्यूब पर नहीं देखा कि 2024 में किस राशि के लिए क्या शुभ है? और तो और न्यूज चैनल पर भी आने लगता है कि दीपावली का कब शुभ मुहूर्त है, साफ सफाई कैसे करनी है, पूजा कैसे करना है।
4: सही कहा, चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, सोच हमारी अभी भी गांव की मिट्टी की है, पर इस बात को हम मानना ही नहीं चाहते।
3: चलिए सॉरी बिना सोचे समझे बोलने के लिए। और समता दीदी, हम आपके भी कपड़े ले आए हैं, रास्ते में बाकी बातें करेंगे।
5: क्या, लड़की को देखने बहुत सारे लोग गए थे? और मैंने तो ये भी सुना कि लड़की से पूछ रहे थे कि गाना गा लेती हो, क्या क्या बना लेती हो, जैसा पिक्चर में होता है।
2: बिल्कुल भी नहीं, लड़के के बारे में सब पता करके ही उसके घर जाते हैं। और हाँ, यह जरूर है कि लड़की से पूछते हैं कि क्या क्या बना लेती हो, वो इसलिए कि लड़की का जो डर है ना वो खुल जाए और वो अपने ससुराल के लोगों से हिल मिल जाए। पर इसको गलत तरीके से पेश किया जाता है।
6: यही घर है ना आपकी बुआ जी का, लोकेशन भेजने से कितना आराम हो जाता है। बिना भटके पहुंच गए, वो देखो किरण दी का सब दरवाजे पे वेट कर रहे हैं।
7: शादी के शुभ काम शुरू होने वाला है बहनी, ढोल पूजा कराओ, तनी देवी गीत गाए दो जरा।

0: सरिता को भैया पीली चिट्ठी लाए वाले हैं, यकरे बात तो सब शुभ काम शुरू हो जाए।
1: ये पीली चिट्ठी क्या होती है?
2: हमें पता है, हम बताते हैं। यह एक तरह का इनविटेशन है जो लड़की के घर पर लिखा जाता है, जिसमें लड़की के घर के लोगों के नाम होते हैं। उन्हें लड़की के घर में कौन कौन लोग बुला रहे हैं उनका नाम भी होता है। शादी की डेट आदि उसे पंडित भी लिखते हैं। इसके बाद ही लड़की के घर में शुभ कार्य शुरू होते हैं।
3: आज ये लड़के वालों के घर आ गया है तो कल इसे खोला जाएगा, फिर गांव वालों को इनविटेशन कार्ड बांटा जाएगा। पीली चिट्ठी करीब 21 दिन पहले आती है, पर आजकल शादी जल्दी जल्दी की जाती है, इतने दिन नहीं लगाए जाते हैं।
4: किरण दी, शगुन के गीत गाकर शादी की शुरुआत कीजिए, कल इस लिफाफे को खोल कर देखेंगे।

0: उठो भाई उठो सब लोग, देखो येलो लिफाफे में क्या है। इसे देखने की मुझे इतनी जल्दी थी कि पूरी रात नींद ही नहीं आई। जल्दी देखिए भाई, जल्दी खोलिए।
1: दीदी चिट्ठी पूजा घर में है, देखो इसमें सुपारी है, धूप घास है, पीला चावल है, पैसा है और मौली से बांधा भी है।
2: बुआ जी बता रही थी कि यहाँ गांव में लड़की की शादी का इनविटेशन देना होता है तो हल्दी दी जाती है और लड़के का हो तो सुपारी, दोनों ही बहुत शुभ होते हैं।
3: एक चीज देखा तुम लोगों ने, लड़की के भाइयों का भी बुआ ने टीका किया और मिठाई और फल भी भिजवाए।
4: सही कहा, उन लोगों का आदर किया गया या उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ गाँव में सुपारी बांटने, लोगों को निमंत्रण देने। आप लोग तिलक की तैयारी कीजिए, आज शाम को ही तिलक है। जिमी तुम चलोगी निमंत्रण बांटने के लिए?
0: मेरा मन तो गांव घूमने का बहुत है, पर चले गए तो तिलक की तैयारी कैसे देखेंगे। आप जाइए हरिओम भैया, हम रुकेंगे।
1: जिमी तिलक पर डीजे नहीं लगेगा, ढोलक वाला तिलक है। किरण दी बताइए तिलक कैसे होगा?
2: शाम को हम सब सीधे पहले ही साड़ी पहनेंगे, हम सब के लिए नथ भी लाए हैं।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है श्वेता समता, गांव में तिलक बहुत इम्पोर्टेंट सेरेमनी होती है। पूरे गांव का खाना आज ही होगा, रिसेप्शन नहीं होता यहाँ।
0: देखो देखो जो दो चौकी सजी है उसमें तिलक का जो सामान आएगा उसे सजाया जाएगा और पूरा गांव देखेगा।
4: अरे तुम सब अभी बातों में ही बिजी हो, देखो मैं धोती कुर्ता पहनकर तैयार भी हो गया।
3: बस 10 मिनट में हम सब मिलते हैं, आज तो खूब गाने गाते हैं।

0: कितने लोगों ने खाना खाया, कम पैसों में भी कोई फंक्शन इतना अच्छा हो सकता है, यह तो हम सोच ही नहीं सकते हैं।
1: शादी और हल्दी कल है, तो फिर आज क्या है, आज क्या करेंगे हम लोग?
2: आज मामा भात है, आज बुआ जी के मायके से सब लोग आएंगे, और यह हम लोग में भी होता है, पर हाँ इसमें शो ऑफ बहुत होता है कि हमारे भाई ने तो ये सब कुछ दिया है।
3: हाँ, यह नहीं देखा जाता कि भाई पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं हम लोग। ढोल की आवाज आने लगी, लगता है सब लोग आ गए हैं।
0: कितनी प्यारी बुआ लग रही है, अरे यह कितनी सुंदर चुनरी बुआ जी को भाभी ने उड़ाई है।
2: ये दोनों मामी ने अपने हाथों से बनाई है, इसे बुआ जी जिंदगी भर संभाल कर रखेंगी।
3: अब बुआ जी के घर के हर किसी का टीका करके किसी को कपड़े किसी को पैसे देंगे और हर किसी का सम्मान करेंगे। बुआ बहुत इमोशनल हो रही हैं।
4: हाँ, उनको लग रहा होगा कि हमारा परिवार हमारे साथ है। चलिए, हम तो जा रहे दोस्तों के साथ गप्पे मारने, और कल तो वैसे ही शादी में धूम रहेगी।
0: जिमी रुक जाओ, आज ही इतना नाचोगी तो कल बारात में नहीं नाच पाओगी।
2: मैं तो चली मेहंदी लगवाने, यहाँ पेड़ से मेहंदी तोड़कर पीसी जाती है, फिर भी कितनी शानदार मेहंदी लग रही है सबको यहाँ।
3: उठो कुंभकर्णों, हल्दी की रस्म शुरू हो गई है।

0: किरण, हम उठ चुके हैं। कितनी सुबह से यह गांव की लेडीज आ गई हैं, हाथों से हल्दी पीसी। शहर में सब तो हर्बल मेहंदी लगा लेते हैं, पर यहाँ सब ने गाना गाया, हल्दी पीसी, और कितना अपनापन देखने को मिल रहा है।
1: सच कहा समता दी आपने, उन दादी लोगों को देखा कितनी बूढ़ी हैं, पर सुबह से लेकर रात तक बैठी रहती हैं और एक एक करके सारी रस्में बताती रहती हैं।
2: यही तो खुशबू है गांव की। शादी एक घर में है और काम सारे मिलकर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरे गांव में शादी है।
0: शहरों में तो कोई अपने घर से भी नहीं करता शादी, पता ही नहीं चलता कि इस कॉलोनी में शादी है।
3: सब लोग तैयार हो जाओ, 4 बजने को है यार, बारात निकल जाएगी और जनवासे पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। बारात चलने से पहले बहुत सारी रस्में होंगी और वो तो आप सब देखेंगे ही।

0: जीजा जी ने दूल्हे को साफा बांधा, भाभी ने काजल लगाया, बहनों ने घोड़ी को चने गुड़ और माँ ने नजर भी उतारी।
1: एक चीज नोटिस की आप सभी लोगों ने, सबको नेक दिया गया बराबर से, चाहे वो सगी बहन है या गांव की है। ये है अपनापन जो हम सभी शहर में कहीं ना कहीं खो रहे हैं।
2: बुआ जी बारात में नहीं चल रही हैं और उनके साथ कुछ और लेडीज भी रुक रही हैं।
3: हाँ, माँ चाची मासी यह सब रुकती हैं घर पर, और रात भर रथ जगा होगा, सब लोग गाने गाएंगे और फिर बहू के आने का इंतजार करेंगे और तैयारी करेंगे।
4: हम जनवा से पहुँच गए हैं, यहाँ शरबत पियो, मिठाई खाओ और ये सब तो घर के बने होते हैं। बस आधे घंटे में बारात चल देगी, और ध्यान रखना रास्ते भर में बारात के आगे पटाखे जरूर जलाए जाएं।
0: बारात में घंटों नहीं नाचा जाता है, बस थोड़ी देर और बारात टाइम से पहुंच जाती।
1: एजुकेशन कम है और सब कुछ नियम से, ना कोई लड़ाई, ना कोई किसी को परेशान कर रहा है और ना ही कोई किसी की शिकायत कर रहा है, और ना ही एक दूसरे में यहाँ कमी निकाली जा रही है।
3: यही खूबसूरती है गांव की, हर किसी को पता है कि क्या काम करना है। शहर में तो हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है, पर फिर भी कितनी सारी कमियां निकाल ही दी जाती हैं।
2: कितनी बातें करते हैं आप लोग, दौर चार खत्म हो गया। और आप लोग ने देखा, जब बारात आ रही थी तब लड़की छिप के दूल्हे को देख रही थी, कितनी रस्में जानी हम लोगों ने।
4: जयमाल होने जा रहा है, पहले वो देख लेते हैं। फिर एक बात बताइएगा कि कुछ दूल्हे के हाथ में बांधा गया था, फिर दूल्हे को उसके बाद घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया, ऐसा क्यों?

0: दूल्हे दुल्हन दोनों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन दोनों को उपटन लगने लगते हैं, जिससे उसकी स्किन में निखार आती है और बाहर निकलने से सनबर्न हो जाता है।
1: हर रस्म का एक साइंटिफिक रीजन होता है, पर हम दकियानूसी बातें कहते रहते हैं।
2: जयमाल के बाद स्टेज पर नहीं बिठाते हैं बहू को, और बेटे को देखो, बहू को वापस ले जा रहे हैं। अब रात भर शादी चलेगी, फिर फेरे होंगे और लगभग हर घर के लोग बेटी का पैर पूजा करेंगे। इसको पांव पूजना भी कहते हैं।
3: कुछ जगह तो अब शादियों में स्टेज भी बनने लगे हैं, पर अभी भी कई जगह ऐसा नहीं होता है। माना जाता है कि नए जोड़े पर कई निगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

हां जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने वाले शो ज्ञानस्थली लाइव में। और आज है ट्यूसडे, यानी कि मंगल वाला दिन, और मंगलवार को हम लेकर आते हैं बढ़िया बढ़िया कहानियां, रियल स्टोरीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अलग अलग कोने से। और स्पेशली हमारा जो कोना होता है वो अमेरिका ही होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अमेरिका से इतनी सारी स्टोरीज हम निकाल के लेकर आते हैं कि आपको भी लगता होगा कि उन्नति जी अमेरिका को ज्यादा पसंद करती है कि नहीं। फिलहाल आपको हम बता दें कि आपने ट्यून कर लिया 9.6 FM, ये गोना शहर की धड़कन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौक की उन्नति जुड़ी हुई है आपके साथ, आपके अपने वाले स्टूडियो में। और आज की जो हमारी कहानी है, स्पेशली वो एक ऐसी कहानी है कि आपका भी सर घूम जाने वाला है। कोर्ट में पहली बार कोई इंसान खड़ा है अपना सर नीचे करके, मुंडी नीचे करके, और उसके जो वकील हैं वो जज को समझाने पे लगे पड़े हैं कि सरकार, माय लॉर्ड, मेरे इस क्लाइंट ने कुछ भी नहीं किया है, इससे जो किया है वो इससे करवाया गया है, इसका शरीर इसके हाथ में नहीं था, इसके कंट्रोल में नहीं था, इसने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया है, इससे ये करवाया गया है, इसे किसी डीमन ने करवाया है। और कोर्ट ये बात सुन रही है, आपको लगता है कि कोई क्रिमिनल वहां पे खड़ा हुआ है जिसने अभी अभी किसी का मर्डर किया है, और कोई आकर कहे कि नहीं नहीं नहीं नहीं, इसने नहीं किया है, इसके अंदर कोई शैतान आ चुका है और उसने कराया है। और जज भाई साहब कहे, अच्छा बहुत अच्छी कहानी है, ऐसी कहानी तुम कहां से लेकर आते हो, तुमको यहां नहीं थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटर बन के एक मूवी में होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केस पब्लिश किया गया है, इसके न्यूज बनी है, प्लस डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज बनी है। अब आप इस बात पर यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं, I don't know, क्योंकि भाई भूत प्रेत जिन जिन्नात पर तो मैं भी यकीन नहीं करती, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके जवाब देना नामुमकिन सा हो जाता है, जिनके पास ये बताना जाकर के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तुमको प्रूफ कर सकता हूं और ये हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। इवन उस वक्त अमेरिका के सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड एक्सपर्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो थे, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, वो तक वहाँ मौजूद थे। और न जाने कितने प्रीस्ट, यानी कि वो पुजारी, वो पादरी जो चर्च में रहकर काम करते हैं, वो वहाँ मौजूद थे और उस बच्चे की एग्जॉर्सिज्म पे एग्जॉर्सिज्म किए जा रहे थे, और वो भी इस चीज़ का गवाह बने कि ना ना ना, ना, ना चीज़ें ऐसे नहीं होती जो आपको दिखाई पड़ती हैं, हमेशा सच वही नहीं होता, कुछ चीज़ें आपकी आँखों के, आपके दिमाग के और साइंस के परे होती हैं। तो आपका आज के इस वाले प्रोग्राम में स्वागत है, क्योंकि यहाँ कल्पना से विपरीत हम कुछ बात करने वाले हैं, जो आप कभी इमेजिन नहीं करते, जो सिर्फ हम मूवीज़ में देखते हैं, मूवीज़ में देखकर एंटरटेनमेंट लेते हैं, एंटरटेन करते हैं, खुद को मसा लेते हैं, और निकलने के बाद बात करते हैं कि ना ऐसा कुछ नहीं होता। वो अलग बात है कि अगर आधी रात को देखे बत्ती बंद करके घर में कोई ना हो, तो एक चूहे की खट से भी लगता है कि घर में कोई है, पीछे भी कोई खड़ा है, पानी पीने भी जाओ तो लगता है कि नहीं कोई साथ साथ में चल रहा है, वो अलग चीज़ है कि एक्सपीरियंस होने लग जाता है। बट अगर आप उनमें से एक हैं मेरी तरह जिन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आज की आपको कहानी में मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये एग्जॉर्सिज्म आपको रियल में कहीं ना कहीं होगा भी। वैसे एग्जॉर्सिज्म की अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी एग्जॉर्सिज्म हुए हैं जो यूट्यूब पर पड़े हैं, इवन उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी है, और तो और उस वॉइस रिकॉर्डिंग को करने के बाद जिन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था, यानी कि वो पुजारी लोग जिन्होंने परफॉर्म किया था, उन्हें भी जेल हो गई कि तुमने जो किया वो किया, तुम बचा क्यों नहीं पाए, अब तुम बचा नहीं पाए हो तो जाओ तुम 20 साल की जेल काट के आओ। अब इस तरह से उन्हें जेल भी भेज दिया गया। फिलहाल इस कहानी में क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय कीजिए ये वाला गाना जो आप सुन रहे थे, तू मेरी जान है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार। तो तक के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए चैट बॉक्स में, और ऑफकोर्स एक शब्द लिखकर भेज दीजिए, यस आई एम एक्साइटेड टू नो क्या होने वाला है। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

आज की कहानी की शुरुआत होती है 11 साल के बच्चे से। नाम डेविड, उम्र 11 साल, रहने वाला अमेरिका के कैनिकट में। वक्त था 1980 का। एक हस्ती खेलती खुशहाल फैमिली जो अपना घर बदलने की कोशिश कर रही थी। एक किराए के घर पर ये लोग रहते थे और अब क्योंकि वो घर रेनोवेट होने जा रहा था, दोबारा से ठीक होने जा रहा था, तो घर बदलना था और इस घर को बदलने के लिए दूसरे घर की तलाश जारी थी।

लाइन कही। लाइन में सिर्फ दो शब्द थे, बी अवेयर, यानी कि होशियार रहो। इतना कहकर वो गायब। डेविड परेशान कि ये कौन सा मना ही था भैया, आया भी चला भी गया, इसने तो मतलब इस घर में तो कोई था नहीं ना। वो बहुत डर चुका था, इस हद तक डर चुका था कि वो अब चिल्ला भी नहीं पा रहा था कि घर वालों को आकर बता तो दे कि इस कमरे में मैंने अभी अभी क्या बवाल चीज देखी है। वो वहां से उतरा, गिरता पड़ता सीधे घर के नीचे गया और चिल्लाना शुरू कर दिया, ये हमको घर नहीं लेना चाहिए, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं है, ये वो। बट घर वालों को लगा यार बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसको भी सफाई ना करनी पड़े ना, इसीलिए सारी चोटले कर रहा है, सारे बवाल कर रहा है कि घर मत लो, घर ऐसा है वैसा है, यहाँ पर अच्छी वाइब्स नहीं है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। घर वालों ने साइड कर दिया, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा ही होता है। मैं तो कह दूँ जब भी आपके बच्चे आकर के आपको बताएं कि इस घर में कुछ अच्छा नहीं है, या किसी आदमी के आके किसी आदमी के बारे में आकर बताएं कि वो आदमी अच्छा नहीं है, तो मान लेना चाहिए। बच्चे झूठ नहीं बोलते, उन्हें जो महसूस होता है वो वही आकर बोल देते हैं। ऐसा अभी तक तो होता है, आगे का पता नहीं। घर वालों ने ध्यान नहीं दिया और घर वालों को लगा कि शायद मजाक कर रहा है काम ना करने की वजह से। बट घर वालों ने कहा ओए सुनो चुपचाप, ये पकड़ो झाड़ू जाके कमरा साफ करो अपना, नहीं करोगे तो घर से बाहर निकाल देंगे। बेचारा क्या ही कर सकता, 11 साल का बच्चा कहाँ जाएगा। तो उसने अपना कमरा साफ करना शुरू कर दिया। 4 दिन की मेहनत, यानी कि टोटल 3 दिन की मेहनत, और 4th दिन पूरे घर को अपना जो पुराना सामान था उसको ला लाके इस घर में शिफ्ट करना। 4 दिन की टोटल मेहनत के बाद रात आ चुकी थी और सबने अब सोचा क्यों ना गुड नाइट करते, सोने चलते। सब अपने अपने कमरे में चले गए, डेविड अपने कमरे में चला गया, वो फियांसी अपने कमरे में चले गए, उनकी बेटी माँ बाप सब अपने अपने कमरे में चले गए। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये अमेरिका वालों की दिक्कत है क्या, इनका बच्चा 6 महीने का हो नहीं पाता है ये उसको एक अलग ही कमरा दे देते हैं। हमारे यहाँ तो भैया ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो अभी भी हम अपनी मम्मी के पास सो जाते हैं और मम्मी कुछ नहीं कहती, वो अलग बात है। फिलहाल डेविड, क्योंकि अपने कमरे में जा चुका था और डेविड ने देखा कि वो आदमी, वो बूढ़ा आदमी जो पहले दिन आके उसको धमका रहा था कि बी अवेयर, होशियार रहो, वो फिर से उसी के कमरे में गश्त लगा के बैठा हुआ है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो उसको घूरे जा रहा है, लैटिन भाषा में कुछ बोले जा रहा है, उसको लैटिन समझ में भी नहीं आ रही है क्योंकि उसको कभी पढ़ी ही नहीं थी ये भाषा, उसको इंग्लिश आती थी और इंग्लिश में वो कुछ बोल नहीं रहा। एंड लास्ट में उसने सिर्फ एक लाइन इंग्लिश में कही, वो ये कि मैं तुम्हारी सोल यानी कि तुम्हारी आत्मा अपने साथ ले जाऊंगा। ये कैसी धमकी होती है, क्यों ले जाओगे, मेरी आत्मा है कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना यार, तुमने समोसे की बात थोड़ी की है जो आओगे ले जाओगे। बट बेचारा क्या ही कर सकता था, उसे समझ में भी नहीं आया। घर वालों ने महसूस किया कि ऊपर से भागने की आवाज़ आती थी, जो ऊपर रहते थे उन्हें नहीं आती थी, लेकिन हाँ बाकी लोग जो नीचे सो रहे थे उन्हें किसी के भागने की, किसी के दौड़ने की, कदमों की आवाज बहुत जोर से आती थी। सुबह हुई, घर वालों ने पूछा कौन दौड़ रहा था छत पे, बच्चे भी लाइक हमको नहीं पता, हमने नहीं किया कुछ। कोई जो दौड़ रहा था, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते, हम यहाँ पे बहुत शरीफ इंसान हैं। घर वालों ने कहा चलो जाने दो, बच्चे हैं झूठ बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं, खैर घर में आए हैं नए नए अभी एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इतना कहकर घर वालों ने उस चीज को वहीं खत्म किया। ये लोग खाना खाने ही बैठे थे कि तभी इन्होंने देखा कि इनकी जो प्लेट्स हैं वो हवा में है। अब ये चीज़ जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ी थी मुझे लगा था क्या बकवास है, कौन सी स्क्रिप्ट है ये, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं खाना खाने बैठूं और मेरी खाने की प्लेट हवा में तैरने लग जाए। फिलहाल अब ऐसा क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है सामने से, जो पढ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। अब क्योंकि हवा में कोई प्लेट तैर रही है तो आप भी डर जाओगे, मैं भी डर जाऊंगी, क्योंकि हमारे लिए तो ग्रेविटी नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, और ग्रेविटी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो वो हमेशा अट्रैक्ट होगी, यानी कि वो नीचे होगी। अगर सेब ऊपर से गिरा है तो वो नीचे ही गिरेगा, बीच में नहीं अटक जाएगा, ना आप उड़ जाएंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। स्पेस में तो हम हैं नहीं जहाँ ग्रेविटी काम नहीं कर रही कि पानी की बूंदें उड़ रही हैं, इधर से प्लेट उड़ा जा रहा है, उधर से चाकू उड़ा जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। प्लेटें हवा में लेविटेट कर रही थी, घूम रही थी गोल गोल गोल गोल। घर वाले अपनी अपनी चेयर छोड़ के साइड पे खड़े हो गए थे कि ये माजरा क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने में ही वो जो टेबल थी जो रखी हुई थी वो बहुत तेजी से जाकर के दीवार में जाकर लड़ती है, और घर वाले बहुत ज्यादा परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी रात एक और किस्सा होता है। वो जो डेविड था उसके सामने वही आदमी खड़ा था और वो आदमी के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आ रही थी। आपने देखा होगा मूवीज़ में जब हड्डियाँ चटकती हैं ना तो एक कड़कड़ की आवाज़ आती है, बस वही आवाज़ अब उस आदमी के अंदर से भी आ रही थी। डेविड
उसको कुछ

समझ नहीं आ रहा था कि आदमी उसे चाहता क्या है, बट उसने अपना इरादा पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारी आत्मा लेके जाऊंगा, तुम्हारी आत्मा मेरे लिए समोसे वाली प्लेट है। हालांकि ऐसा नहीं बोला था, बस इतना ही बोला था कि मैं तुम्हारी आत्मा लेके जाऊंगा। फिलहाल अब वो आदमी तो गायब हो चुका था, उसकी हड्डियां चटकी और ऑफ कोर्स वो वैनिश्ड। बट यहां से डेविड बदल चुका था। अब डेविड के साथ क्या होने वाला था और इसमें आरने का क्या काम है, दोनों बताऊंगी, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार बने रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप सुन रहे गैलेक्सी लाइव अपनी आरजी के साथ 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड।

तो अब तक आपने कहानी में सुना कि टेवेट के अंदर अब कुछ तो बदलाव होने वाले थे, वो क्या था? डेविड के माँ बाप ने देखा कि डेविड अब नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो अजीब हो चुका है, वो चिल्ला रहा है, उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी हैं। और इतना देखकर उस रात डेविड का पूरा खानदान डर चुका था। जैसे तैसे वो रात गुजारी गई बाइबल्स की लाइन पढ़ के, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस बाइबल की लाइन को पढ़ा जा रहा था ताकि ये जो हो रहा है डरावना सा, जो समझ के बाहर है, ये बंद हो जाए, इसका उल्टा हो रहा था। डेविड खुद बाइबल पढ़ रहा था। और हैरानी की बात यह कि डेविड को कभी बाइबल आती ही नहीं थी, उसने कभी पढ़ी ही नहीं थी, तो वो बोल कैसे रहा था, वो भी इतनी अच्छी। एंड इसके अलावा वो एक और भाषा बोल रहा था जो उसको कभी नहीं आई। उसको क्या, उसकी पूरी फैमिली को कभी नहीं आई। इसके अलावा जो आवाज़ थी वो 11 साल के बच्चे की अब लग ही नहीं रही थी, वो आवाज़ किसी बहुत बड़े बुजुर्ग की लग रही थी। घर वाले परेशान कि क्या हो गया इस बच्चे को। सुबह हुई, सुबह होते ही वहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस और एक्सपर्ट हॉस्पिटल के अंदर इसको भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने देखना शुरू किया, सारे टेस्ट हो गए, बट कुछ नहीं निकला। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि देखो बाबा, हमसे ना होगा, पता नहीं तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है, वी डोंट नो। ऐसा हमेशा होता है ना, जब भी किसी मूवी में किसी के अंदर कोई भूत ऊत आता है तो सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ही भेजते हैं, जैसे हॉस्पिटल में एनेस्थीशिया दे करके उसकी आत्मा निकाल ली जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। और जब वहाँ से भी हाथ खड़े हो गए तो ये लोग तुरंत भाग कर सीधे चर्च पहुँचे। चर्च में जा करके पादरी से हेल्प की। अब जो पुजारी लोग थे वो घर के अंदर आए और अपना ऑफकोर्स वो जो होली वाटर है वो लेकर आए, कुछ बाइबल की आयतें लेकर आए, पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इससे कोई फ़र्क तो हुआ नहीं। पादरी जी ने भी बोला कि देखो भैया, हमसे ना हो रहा है क्योंकि ये बहुत ताकतवर है और हम इसको शुद्ध उद्ध कर नहीं पाएंगे, अपना अपना हिसाब तुम देख लो। अब जब पादरी ऐसा बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स ये काफ़ी डरावनी बात है। घर वालों ने पता किया आसपास से, तब जाकर कहीं पड़ोसियों ने अपना मुंह खोला और बताया कि यहाँ पर हम हमेशा अजीब अजीब चीज़ें सुनते तो रहते थे, बहुत किस्से कहानियाँ हैं इस घर में कि ये हॉन्टेड है, ये हॉरर है, ये है वो है। घर वालों का तो दिमाग वहीं पर ख़राब हो चुका था कि पहले नहीं बता मिला था तुमको, अब जब हम मेरा लौंडा झेल रहा है, जब मेरा लड़का ये सब कुछ झेल रहा है, तब तुम आकर बता रहे हो हैं, मेरा बेटा बीमार पड़ चुका है, मेरा बेटा पता नहीं अब क्या क्या कर रहा है, तो तुम्हें याद आ रहा है कि इस घर को हॉन्टेड बोला जाता था, आज से पहले तुम लोग का मुंह कहाँ था? खैर, अब लड़ने का भी क्या फ़ायदा। वहाँ पर मौजूद एडन लॉरेंस, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, हाँ, कॉन्जरिंग फिल्म में, एनाबेला फिल्म में, ऐसे बहुत सारी फिल्मों में इस कपल का जिक्र किया गया है जो भूतों पर इन्वेस्टिगेशन करते थे, भूतों को पकड़ने का काम करते थे। और एक एमिटीविला नाम का जो घर था, सबसे फेमस उनका केस वही था, वहीं से ये पूरे अमेरिका में पॉपुलर हो चुके, अमेरिका में क्या, बाहर भी पॉपुलर हो चुके थे। कुछ लोग इन्हें स्कैम्स बोलते थे कि भैया आते हैं, पैसे वैसे लूटते हैं, ये अपना है जादू मंत्र टोना टंतर करते रहते हैं और हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। बट जो लोग इसको झेल चुके थे, जो लोग इस चीज़ को देख चुके थे, वो इन पर पूरा पूरा भरोसा करते थे। इन्होंने बुलाया और जैसे ही वो मोहतरमा वो जनाब पहुँचे और उन्होंने जैसे ही उस घर के अंदर पहला कदम रखा, उसकी बीवी ने सबसे पहले डेविड की तरफ देखा और अपने हस्बैंड से कहा कि देखो, ये लड़का ठीक नहीं है, इसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर की एनर्जी है, एक धुआं सा है, और वो एनर्जी अपने अंदर और भी लोगों को खींच रही है, यानी और भी एंटिटीज खींच रही है। और तब जाकर उन मोहतरमा ने बताया कि तुम्हारे बच्चे के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दस नहीं, बारह भी नहीं, पूरे के पूरे 40 स्पिरिट्स हैं, डीमंस हैं, 11 साल के बच्चे के अंदर। और अब शुरू होना था एग्जॉर्सिज्म, यानी कि आत्मा से, इंसान के शरीर से आत्मा को निकालना। बहुत सारे पादरी बुलाए गए, बहुत सारे चर्चेस के बहुत बड़े बड़े, बहुत महान महान और जो एक्सपर्ट्स थे उन्हें बुलाया गया कि एग्जॉर्सिज्म करने में आपकी मदद चाहिए। 11 साल के बच्चे को 3

चार लोग कस के पकड़े हुए हैं कि यार कैसे भी करके ये बंदा मान जाए, इसके अंदर से चीज़ें निकल जाए। रोज रोज एग्जॉर्सिज्म हो रहा है, रोज रोज उसको तीन चार लोग पकड़ रहे हैं। वो जैसे ही बाइबल की चीज़ें पढ़ना शुरू होती है, वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लग जाता है, हवा में घूमने लग जाता है। इवन अपने पिता को उठा के दीवार में मार भी चुका है। 11 साल का बच्चा अपने से चार गुना बड़े अपने पिता को उठा करके दीवार में फेंक देता है। ये चीज़ किसी के भी समझ से बाहर हो सकती है। और लगातार ये प्रोसेस चले जा रहा था। कुछ सेकंड के लिए तो लगता था कि और डेविड के अंदर सब कुछ ठीक हो गया, एकदम सब शांत हो गया। और जैसे ही लोगों को लगता था ये शांत हो चुका है, वैसे ही वो एक नया बवाल खड़ा कर देता था कि ऐसे कैसे शांत हो गया, अभी देखो हड्डियाँ चटकना बाकी हैं, अभी देखो मेरा मुँह खुलना बाकी है, अभी मैं आवाज़ें निकालूंगा। न जाने वो क्या क्या कर रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, वो भी इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि लग रहा था कि उसका फेफड़ा भी आज फट ही जाना है। इतना ज़ोर से वो पूरा अपना मुंह खोल के पूरी ताकत लगाकर चिल्ला रहा था। एक इंसान चाहकर भी इतना तेज नहीं चिल्ला सकता है अगर उसका दिमाग उसका साथ दे रहा है। तो बस यहीं पर आर ने वो जो फियांसी था, यानी कि वो जो मंगेतर खड़ा हुआ था, उसको देखा नहीं गया कि यार ये 11 साल का बच्चा क्यों इसको लोग इतना परेशान कर रहे हैं। और वो ज़ोर से चिल्ला बैठा कि यार भैया जो कोई भी हो इसके अंदर, प्लीज़ इसे छोड़ दो और तुम सब मेरे अंदर आ जाओ। इतना सुनते ही वहाँ खड़े सारे पादरियों ने, वो कपल ने जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स माने जा रहे थे, उन सब ने अपना माथा पकड़ लिया कि अरे बाबा तुमने क्या बोल दिया, यही चीज़ तो सबसे पहले वो लोग सुनते हैं और तुमने यही चीज़ बोल दी, तुमने क्या किया। उसने कहा देखो मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, गलत है सही है, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता 11 साल के बच्चे के साथ। उन लोगों ने कहा तुमने किए कराए पर जो पानी फेरा है ना, कुछ नहीं हो सकता अब तुम्हारा। वो सबसे पहले यही सुनेंगे, सबसे पहले अब तुम्हें टारगेट किया जाएगा। लेकिन उस वक्त उन्हें सब कुछ शांत दिखा, डेविड शांत हो चुका था। एर ने भी, उसके अंदर भी कोई ऐसा चीज़ था नहीं जो भी उन लोग को परेशान करे, एकदम काम शांति। हालत सुधरने लगी थी डेविड की, वो खाने लगा था, पीने लगा था, नॉर्मल बच्चों की तरह घूमने खेलने लगा था। घर वालों को शांति मिल चुकी थी कि फाइनली मेरा बच्चा इन सब चीज़ों से फ्री हो गया, अब उसको कोई तकलीफ नहीं है। बट रियल तकलीफ तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुछ महीने बीत चुके थे। आर ने जो कि पेड़ पौधों के लिए काम करता था, यानी कि अगर किसी के घर में पेड़ पौधे लगे हैं, कोई भी ऐसा लगता है कि पेड़ों में बीमारी हो गई है, तो सबसे पहले इसी को उठा के ले जाया जाता था। जैसे इंसानों के लिए डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे वो पेड़ों का डॉक्टर माना जाता था। और उसकी फियांसी यानी कि उसकी मंगेतर, वो जानवरों की थी, वो जानवरों के लिए काम कर रही थी। तो एक दिन जब उसने छुट्टी ली हुई थी कि मैं अपनी मंगेतर के साथ घूमूंगा मज़े करूंगा, उसमें उसकी फियांसी ने बोला देखो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि काम है, ऐसा करो तुम शाम में मिलना मुझसे। और शाम जैसे ही हुई, वो आर ने पहुंच चुका था ऑफिस में अपनी फियांसी को लेने, अपने मंगेतर को लेने। और उसने वहां पर जाए जैसे ही पहुंचा कि हाय तुम्हारी छुट्टी होगी क्या, आप चले हमारी डेट है। इतने में ही आर ने उसका जो बॉस था एलन, वो सामने आया। उसने कहा हाय बताइए आप कौन जनाब। तो उसकी मंगेतर ने उसे इंट्रोड्यूस कराया, ये आरने है मेरा मंगेतर और आज शाम हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। एलन को पता नहीं कौन सा कीड़ा काट रहा था, उसने कहा अरे अरे आप लोग डिनर पे जा रहे हो, हम भी चलें क्या साथ में, मतलब अगर आपको बुरा ना लगे तो हम 5-6 लोग हैं, हम भी चलें आपके साथ डिनर पे। वैसे बुरा तो लगा होगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बॉस है, मुझे बोल भी नहीं सकते कि मैनरलेस इंसान हो यार तुम, हमारी डेट खराब कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आप भी चलिए हमारे साथ, डिनर करेंगे, एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, गेम्स खेलेंगे। और मज़े में ये लोग पहुंच भी चुके थे। अब आपको भी पता है कि अल्कोहल कंज्यूम करना अमेरिका में कोई बड़ी बात है नहीं, एक लीगल एज के बाद आप पी सकते हो, और किसी भी देश में पी सकते हो। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ मम्मियाँ तोड़ देती हैं पकड़ के, पापा का गुस्सा हो जाते हैं, घर में नहीं घुसने देते हैं, बट वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो इक्वल है। इवन फैमिली मेम्बर्स खुद बैठा कर बताते हैं कि बच्चों को किस तरह से वाइन को होल्ड करना है, किस तरह से बियर को होल्ड करना है, तो उसमें ऐसा कोई बवाल था नहीं। तो वो लोग बैठ कर बस ड्रिंक करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। और इस हद तक उन्होंने ड्रिंक कर ली थी कि अब वो थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका था, ओवरलोड हो चुका था, हैंगओवर हो चुका था उनको। इतने में ही एरन और एलन दोनों के बीच में पंगे हो चुके थे। दोनों बड़ी तेज तेज आवाज से बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था दोनों झगड़ रहे हैं। और झगड़ते झगड़ा इस हद तक बढ़ चुका था कि अब एक दूसरे का कॉलर पकड़ चुके थे। उसकी मंगेतर भागती हुई आई, अपने मंगेतर आरने के हाथों को पकड़ा, पीछे छुड़ाने की कोशिश की, मैनेजर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरने ने जैसे ही घूमा और अपना हाथ झटका, उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो जो मंगेतर थी उसकी, वो सीधा दीवार पर जाके लगी और वो डर चुकी थी। क्योंकि सेम चीज़ कुछ साल पहले, कुछ

महीने पहले अभी तक उसके भाई के अंदर थी और वही चीज अब उसके मंगेतर के अंदर है। उप्स, भारी मिस्टेक हो गया। आगे क्या होता है बताते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी भाई दोस्तों, लड़ाई झगड़े को साइड में नहीं करेंगे इस बार हम, क्योंकि लड़ाई झगड़े से ही शुरू हुई है ये कोर्ट कचहरी वाली काम। और ऑफ कोर्स आरने जिसने कॉलर वॉलर

पकड़ रखा था वो कॉलर से छोड़कर सीधे चाकू को हाथ में उठा करके उस एरन के ऊपर कम से कम 10 से 12 बार वार कर चुका था और वो पूरा खून खून हो करके नीचे गिर चुका था। ऑन द स्पॉट वो बंदा वहीं मारा गया था। मारने के बाद भाई साहब कहीं गायब हो चुके थे? नहीं, ऐसे ही गायब नहीं हुए थे, चिल्ला के गायब हुए थे। इतनी ज़ोर से वो चिल्ला रहे थे अपना बड़ा सा मुंह खोल के, जो कि इंसान की हद में है ही नहीं। इतना बड़ा उन्होंने मुंह खोला हुआ था, आंखें उनकी पूरी पलट चुकी थी, सफ़ेद हो चुकी थी। और वहाँ पर खड़ी डेबी, जी हाँ वही फियांसी जिसका नाम मैंने आपको बहुत देर तक नहीं बताया, वो देखकर उसका दिल बैठ चुका था कि ओह शिट शिट शिट, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था बॉस, ये वही है जो मेरे भाई के साथ हुआ था। और इतने ही बीच में ये भाई साहब वहाँ से निकल के, उस रेस्टोरेंट से निकल के, खाना पीना बाद में देखा जाएगा, जंगल में मंडरा रहे हैं जा करके। वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं बिना पल के झपकाए, हाथ नीचे करके। पुलिस ने आके उनको पकड़ा कि हाँ कहाँ, एक तो तुमने किसी को मार दिया है और ऊपर से तुम ऐसे फ्री में वॉक कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बस खाना हजम करने के लिए आए हो यहाँ पे हैं। उसने कहा सर मैंने मार दिया है, मैंने। उन्होंने कहा अब एक्टिंग की दुकान नहीं खोलना है यहाँ पे, ऐसे मैंने बहुत एक्टर्स देखे हैं। उन्होंने कहा सर मैं किसी चींटी को भी नहीं मारता, मैंने आज तक मच्छर नहीं मारा है, मैं इंसानों को मार दूंगा, क्या क्या कह क्या रहे हैं आप। उसने कहा अच्छा मतलब तुम वहाँ सबके सामने किसी ना किसी को मार के चले जाओ, वो भी एक बार नहीं दो बार नहीं 10-10 बार चाकू से हमला कर दो, हमारे सामने ऐसे हॉलीवुड के एक्टर बन के घूम रहे हो, हम यकीन कर लेंगे। उन्होंने कहा यकीन कीजिए मैंने आज तक कभी चाकू नहीं पकड़ा है, मुझे चाकुओं से डर लगता है। उन्होंने कहा तुम्हें चाकू से डर लगता है, अच्छा मजाक है, यही मजाक तुम कोर्ट में पेश करना। उन्होंने उसको पकड़ा और कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में जज साहब आए, उन्होंने बेटा हाँ बोला शुरू किया जाए। उसने कहा कि देखो सर मुझे नहीं पता, उसके वकील ने कहा एक्चुअली कि सर ये मेरे क्लाइंट ने किया ही नहीं है, इसके अंदर उस टाइम कोई डीमन था जिसने इसको कंट्रोल किया हुआ था। जज बोला कि एक बात बताओ, आज तक संविधान में तुमने भूत प्रेत के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखती हुई देखी है या कोई ऐसा बना हुआ IPC की धारा जिसमें हम तुम्हें भेज डालें? उन्होंने कहा सर मुझे पता है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट मैं क्या करूं, मेरा क्लाइंट इसमें निर्दोष है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे निर्दोष है, हैं आज तक सुपारी की मैंने क्राइम देखा है, बाकी चीज़ें देखी हैं, किडनैपिंग देखी है, लोग सुपारी देके मरवा देते हैं, वाइट कॉलर क्राइम देखा है, ये क्या होता है कि डीमंस अंदर आ चुके हैं और मैं क्यों मानूं, मैंने कभी पढ़ी नहीं है बुक में, संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हमने ऐसी कोई चीज़ अभी तक लॉ हमने देखा नहीं है, मैं क्यों मान लूं कि इसके अंदर कोई डीमन है, और डीमन है तो दिखाओ कहाँ है डीमन। उसने कहा सर मैं आपको कैसे साबित करूं? साबित करने के लिए उस वकील ने सीधे उसकी फियांसी डेबी को बुलाया। डेबी ने अपना मुंह खोला, वही सब बताया कि सर ये सच में अपने होश में नहीं था, जिस तरह से आवाज़ें निकाल रहा था, इसकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी थीं, ये पता नहीं क्या कर रहा था उस वक्त, इसे खुद भी नहीं पता, उसको भी याद नहीं किया मैंने क्या किया, इसलिए वो चुपचाप खड़ा था मुंडी लटका करके कि मैं क्या ही बोलूंगा जब मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या किया है। इसी के अलावा वो कपल जो इन्वेस्टिगेटर माने जा रहे थे उन्हें बुलाया गया, उन्होंने कहा भाई सब तुम भी बताइए, तो उन्होंने भी अपनी गवाही दी कि सर हाँ ऐसा हो सकता है, आज से पहले भी इनके परिवार में हुआ था, ये तो इनके इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भैया पहले डेविड को हुआ था, इनके 11 साल के बच्चे को हुआ था, अब इसको हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और एक हफ्ते पहले तो मैंने पुलिस को भी कहा था कि देख लो भाई ये कुछ होने वाला है, पता नहीं क्यों लेकिन वो जो महिला थी जी हाँ उसको हर एक चीज़ पहले से आभास हो जाती थी और वो बता देती थी कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में या 10 दिन में 12 दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन हाँ कुछ उसने बताया था कि मैंने तो पहले ही कहा था, पुलिस ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, छोड़ रखा था इसको, अब छोड़ रखा था तो छोड़ दिया, फिर हम क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा ना बाबा ना ऐसे हम नहीं मानते, पता चले कि हर दूसरा बंदा जो किसी ना किसी का मर्डर करके आ रहा है वो आकर यही बोलेगा कि देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर, मेरे अंदर तो किसी की आत्मा थी, मुझसे उसी ने कराया है, मैं इस केस को ऐसे रजिस्टर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं सकता। इतने में क्योंकि उसको पता था कि अब मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे इस इंसान के ऊपर जो मेरा क्लाइंट है, और वकील ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसका कोई दोष भी था नहीं, ये बात ऐसा डॉक्यूमेंट्रीज में बताया गया है, और शायद जो लोग गवाही दे रहे थे जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने सच में देखा भी था। तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर अगर आप इस तरह की बातें नहीं मानते हो तो एक और फैक्ट है, फैक्ट ये है कि वो मैनेजर लड़ाई कर रहा था और मेरे क्लाइंट ने सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या की है, जानबूझ के नहीं की है। जज ने राहत की सांस ली, बोले हाँ अब तुम्हारी ये बात मेरे इस दिमाग के अंदर जा रही है, संविधान के अंदर आ रही है, अब मान लेता हूँ कि इसने कुछ किया होगा, सेल्फ डिफेंस इज नॉट क्राइम, बट फिर भी सेल्फ डिफेंस है तो क्या, मर्डर तो मर्डर है, सजा तो इसको मिलेगी। 10 साल की सजा उन्होंने आरने को दे भी दी, 5 साल में वो बंदा छूट गया, वो अलग बात है अपनी अच्छी आदतों की वजह से क्योंकि वो किसी से भिड़ नहीं रहा था जा करके, तो 5 साल में उसको रिहाई मिल चुकी थी। बट जज ने अपना फैसला बिल्कुल भी नहीं बदला, उसने नहीं माना कि कोई डीमन है, कोई भूत है, कोई प्रेत है आकर के, तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा,
क्योंकि अंदर की आत्मा को तो सजा दे नहीं सकते ना, तो तुमको ही मिलेगी, तुम नहीं किया है सब कुछ, वो भी पब्लिक प्लेस में किया है। ऐसा भी नहीं है कि घर के अंदर किया हो तो एक बार को हम कोई वीडियो वगैरह देख करके मान ले, ऐसा कुछ था भी नहीं। और सोसाइटी में भी एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि अगर आप क्राइम करोगे, भले ही आपके अंदर कोई जन्नात ही क्यों ना घुसा हो, सज़ा आप ही को मिलेगी। नहीं तो हर दूसरा बंदा फिर आकर यही कहेगा कि मेरे तो डीमंस थे, मैं तो कुछ किया नहीं, मैं तो अपने वश में था नहीं। और ऐसी बहुत सारी जगह हो भी जाता है, आपको भी पता होगा, इवन हमारे इंडिया में भी बहुत सारी जगह ऐसा हो जाता है कि लोग अपने माँ बाप पर हाथ उठा देते हैं, अपने घर वालों पर हाथ उठा देते हैं, भले ही वो नशे में क्यों ना उठा रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट रख देते हैं कि नहीं, वो तो मेरे अंदर किसी की आत्मा आ गई थी और इसीलिए मैंने मारपीट कर ली है, अब क्योंकि मेरे अंदर से आत्मा निकल गई है तो फॉरगेट इट, भूल जाओ इसको जो कुछ भी हुआ है। और लोग यकीन भी कर लेते हैं, बट क्योंकि जज चाहता था ये एग्जाम्पल कभी भी सेट ना हो कि कोई डीमन आके किसी की हत्या करवा सकता है, तो उन्होंने इस चीज को माना भी। इसके अलावा ये केस यहीं पे खत्म नहीं हुआ। ये जो कपल था जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के नाम से जाना जा रहा था, इसने बिना किसी का कंसर्ट लिए, ना डेविड से पूछा, ना उसकी फैमिली से पूछा, ना आरने से पूछा, ना उसकी बीवी से पूछा, किसी से कुछ नहीं पूछा, और अपनी एक किताब छपवा दी कि भैया ये केस बहुत पॉपुलर होने वाला है और ये केस हमारे नाम पर ही तो होगा। पॉपुलर अगर ये केस होता है तो ऑफकोर्स पॉपुलर हम हो जाएंगे साथ में, तो ये बुक छापो और लोगों में बांट दो। और ये केस जैसे ही बुक के अंदर आया, बुक बाजार में आई, लाखों की संख्या में बट गई, बिक गई, पैसे ही पैसे छप चुके थे अब उस कपल के लिए। तो यहाँ पर जिसके साथ बुरा हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने का काम उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कपल ने किया जिसमें अपने नाम पर पैसे ही पैसे छाप लिए थे। तो ये थी आज की आपके लिए स्टोरी, जिसमें डेविड से शुरू होकर ये कहानी ख़त्म हुई आरने के 10 साल की सज़ा पर, क्योंकि उसने किसी का मर्डर कर दिया था। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। यूँ तो मैं नहीं कहती कि ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कहानियाँ हैं तो इन्हें बस एक कहानी की तरह ही ले, दिल पर ना ले, बस सोचे कि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं हो सकता है और वो भी पॉसिबल हो। ऑफ कोर्स कुछ कहानियाँ होती हैं जिनका जवाब नहीं होता, हो सकता है ये कोई मेंटल सिकनेस भी हो, मेंटल इलनेस भी हो, बट क्योंकि साबित नहीं किया जा सका तो इसको डीमंस का नाम दे दिया गया। आप मानते हैं क्या इन सब बातों में, चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड सनी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून मैम लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गैलेक्सी लाइफ में। तो भैया आज की कहानी बस इतनी ही, अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, वक्त है मेरा आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। आपका अगला कार्यक्रम सेहत या सिंह सुनना मत भूलेगा, सेहत का एक नायाब तोहफा आपके लिए पेश है, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही और लाभ कई। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। जी हां, आपने ट्यून करके रखा हुआ है अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी कि एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS, पोषण तथा मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IVFCM जैसे उपचार विकल्पों के बारे में बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद माँ का क्या? क्या प्रसव के बाद कमजोरी होना हमेशा सामान्य है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोरी होना तो सामान्य बात है, क्या ये सही है?
1: देखिए आरजे, प्रसव के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, इसलिए कुछ थकान महसूस होना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर कमजोरी लगातार बनी रहे, चक्कर आज आए, सांस फूलने लगे, रोजमर्रा का काम मुश्किल लगे या महिला बहुत ज़्यादा थकी हुई है महसूस करे, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: यानी ये खून की कमी का संकेत भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि परसों के बाद भी माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।
0: टीकन देवी जी, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को इस बात का महत्व समझा सके?
2: बिल्कुल, हमारे ही इलाके की शबाना की कहानी सुनिए। शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी शबाना को लगातार कमजोरी रहती थी। वो जल्दी थक जाती थी, बच्चे को गोद लेकर ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पाती थी। घर वालों ने कहा, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने घर आकर हालचाल पूछा और आगे जांच की सलाह दी, तब पता चला कि उसे एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका सहयोग किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हुई। वो अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से कर पाई।
0: यानी प्रसव के बाद भी कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या बच्चे पर भी?
1: माँ और बच्चे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है।
0: और बच्चे के संदर्भ में?
1: जब माँ स्वस्थ रहती है तो वह अपनी नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जाँच करवानी चाहिए?
1: हाँ, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दें या महिला में कमजोरी और अन्य लक्षण बने रहें तो जांच करवाना जरूरी है।
0: यानी प्रसव के बाद स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद की देखभाल दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देते हैं।
0: टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ आती है कि कई बार महिला खुद भी अपनी परेशानी को नजरअंदाज कर देती है।
2: बिल्कुल, प्रसव के बाद अक्सर महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। वो सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरतें पूरी हो, अपनी तकलीफ बाद में देखेंगे। लेकिन यही सोच कई बार परेशानी बढ़ा देती है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है।
2: जी हाँ, हमारे समाज में ये बहुत आम बात है। अगर बच्चा रो रहा हो, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी, चक्कर या थकान के बारे में बताने से भी हिचकती है। कई बार उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि वो शिकायत ज्यादा कर रही है।
0: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, बच्चे की देखभाल जितनी जरूरी है, माँ की भी देखभाल उतनी ही जरूरी है।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद महिला के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्या ये भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
1: बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़ता है, आराम कम हो जाता है, शरीर परसों से उभर रहा होता है और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है।
0: यानी ये समय केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए इस समय परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिला को आराम का समय मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सकती है।
0: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिससे महिला अपनी परेशानी बताने से बचने लगती है?
2: हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जैसे कोई कह देता है, हमारे समय में भी ऐसा होता था, थोड़ी कमजोरी तो सामान्य है, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में तो ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन इससे महिला अपनी समस्या बताना बंद कर सकती है।
0: यानी उसकी बात सुनना भी देखभाल का हिस्सा है।
2: बिल्कुल, अगर महिला बार बार कह रही है कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या वो पहले जैसा महसूस नहीं कर रही है, तो उसकी बात को गंभीरता से लेनी चाहिए।
0: सेहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रखना जरूरी है?
1: बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया है,

0: अब स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। परसों के बाद भी स्वास्थ्यकर्मी की सलाह घर पर मुलाकात और ज़रूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
1: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती।
0: बिल्कुल नहीं, वास्तव में परसों के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना गर्भावस्था का समय है।
2: और मैं सभी परिवारों से कहना चाहूँगी कि जब घर में नया बच्चा आता है तो केवल बच्चे की खुशियाँ मत मनाइए, बल्कि उस माँ का भी पूरा ध्यान रखिए जिसने उसे जन्म दिया है। उसकी सेहत, उसका आराम, उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: सचमुच स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है?
2: परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
1: परिवार क्या कर सकता है?
2: सबसे पहले तो माँ को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखें। दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक भोजन मिले। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत हो तो परिवार उसका साथ दे। चौथा, अगर कोई दवा या पूरक खुराक दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में उसकी मदद करें। और सबसे जरूरी बात, उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करें।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बात। सेहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रम में हमने IFA, MMS और IVFCM के बारे में बात की थी। क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है?
0: बिल्कुल, हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए आगे की देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर दें।
1: यानी अपने मन से दवा बंद या शुरू नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है।
1: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया जाए।
2: अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, चक्कर आते हैं या शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा, तो इसे सामान्य मानकर टालिए मत।
0: समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ की रिकवरी बेहतर हो सकती है, और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी बेहतर तरीके कर पाएगी।
1: चलते चलते आज के कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। दूसरी, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज कतई ना करें। तीसरी, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। और चौथी, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम, परिवार का पूरा सहयोग दें।
2: माँ की सेहत पर ध्यान देना है, बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना है,
0: और समय पर पहचान तथा उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सकती है।
1: इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: ज्ञान स्थली 89.6

0: 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में हैं
3: आरजे अंशिका।
2: हाँ जी, और आ गए हैं आज ब्यूटीफुल से मौसम के साथ में, खुद भी ब्यूटीफुल सा एक मूड लेकर के, माहौल लेकर के आपके अपने शो जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
2: और सुन सहेली में हम दोनों लोग फिर से बहुत ही कहते हैं ना चुस्त तंदुरुस्त होकर के अपने प्रोग्राम की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए भाई एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं इस प्यारे से मौसम में, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है और दोपहर के टाइम में हम एक साथ एक ही फ्रेम में विश करते हैं
1: शुभ दोपहरिया।
3: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और मौसम है जबरदस्त क्योंकि हम हैं मस्त मस्त मस्त, वाकई में मस्त हैं। और चलिए मस्त वाले मौसम के साथ बढ़ते हैं मस्त वाली हमारी पहली सेगमेंट की तरफ, जो की होती है एक प्यारी सी पोयम।
2: लेकिन आज के दिन के बारे में पहले बता दे अंशिका कि आज हमारा दिन कौन सा होता है।
3: आज हमारा दिन है ट्यूसडे।
2: ट्यूसडे के दिन क्या होता है?
3: ट्यूसडे के दिन होता है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का दिन, यानी कि हम उनके लिए बात करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। और आज होगी अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। तो मस्ती की पाठशाला में मस्ती करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं,
2: एक अंशिका एक समता।
3: यस,
2: आप किन से मस्ती कराना चाहते हैं ज्यादा,
3: ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
2: हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब हम फिर उन्हीं को मौका देंगे ज्यादा। अगर अंशिका बोलती है तो अंशिका बोलेगी, मैं बोलूंगी तो फिर मैं बोलूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
3: यहाँ वो है, वो वाला है, मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले आप नो, पहले आओ पहले पाओ, नहीं ये भी है पहले आओ पहले पाओ। और साथ में भी पा सकते हैं आप, कभी
2: साथ में भी पा सकते हैं। क्या झापड़
3: नहीं एंटरटेनमेंट, कभी हमारा मन ये भी होता है ना कि हम साथ में बोलें।
2: चलो तो आज के पोयम वाले सेगमेंट को शुरू करते हैं और अपने प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हो जाएगी वरना बरसात।
3: अरे वाह,
2: ये क्या था पता नहीं क्या था,
3: ये प्यारी सी लाइन थी जो दिल से सीधा निकली।
2: हाँ तो चले शुरू करें,
3: आप शुरू कर देंगे, शुरू करिए
2: जो बोलो हम रख दिए, बोलो
3: इतना ठंडा वाला आया, बोलो हम रख दिए, बोलो
2: नहीं बोलो, अब बोल ही दो, अब बोले इतना मन है तो बोल ही दो।
3: हाँ तो चलिए बोल देते हैं कि हो रही है प्यारी प्यारी बरसात, हो रही है प्यारी प्यारी बरसात क्योंकि आ गई है सावन की रात, हो रही है प्यारी प्यारी बरसात क्योंकि आ गई है सावन की रात, सब करते हैं इसमें कुछ खास होने का इंतजार, हम भी कर रहे हैं कुछ खास होने का इंतजार, दुआ तो यही है कि हो जाए वो जो हम चाहते हैं, दुआ तो यही है कि हो जाए वो जो हम चाहते हैं। तो आइए करते हैं एक प्यारी सी शुरुआत आरजे समता के साथ।
2: अच्छा, हम क्या सोच रहे थे कि अभी अंशिका ये बोलेगी हम जो चाहते हैं वो हो जाए दुआ की शुरुआत, वो हो जाए दुआ की शुरुआत आरजे समता के साथ।
3: मैंने सब जो समेटा ना उसका वो वही था,
2: वो जो आयता फैलाया था तुमने और फिर समेटा है जो। चलो शुरू करें
3: जी।
2: बचपन की अनमोल यादें, भाई आज है हमारा बचपन का दिन, यानी बच्चों को हम लेकर के बात करते हैं, बच्चों की बहुत सारी नटखट सी बातों को लेकर के बात करते हैं। तो लेकिन हमारा जो पहला हमारा आज का सेगमेंट होता है वो होता है पोयम, जो मैं लेके आई हूँ। आइए शुरू करते हैं एंड उसके बाद बताएंगी अंशिका आपको नहीं
3: रियल फैक्ट्स ऑफ
2: लाइफ। जिबा है फिसल जाती है कभी कभी,
3: आई नो।
2: रिम झिम, ये तो गाना लग रहा है मुझे, रिम झिम रिम झिम, तुम घूम भीगी भीगी रुत में, तुम हम तुम चलते हैं, ये वाला गाना लग रहा है,
3: भीगी भीगी रुत में हम तुम चलते हैं, वाह बहुत प्यारा गाना है।
2: रिम झिम बारिश आई, ठंडी ठंडी हवाएं छाई, कागज की वो नाव बनाकर पानी में तैराने की रुत आई, नन्ही नैया डगमग डोले, लहरों के संग होले होले, नौका विहार का ये सुख पाकर हर बच्चा मस्ती में डोले, छप छप पानी में कूदना, कीचड़ में वो पैर डुबोना, दुनिया का सबसे सुंदर है बचपन का ये जादू होना, गर्मियों की वो लंबी छुट्टी, नानी के घर जाने की जिद, बिना अलार्म के सुबह सोकर मीठे सपने जगाने की जिद, दिन भर गिल्ली डंडा खेलना, शाम को छुपन छुपाई का खेल, आम के बागों में छुप जाना, बचपन का था अनोखा मेल, होमवर्क की फिक्र ना कोई, होमवर्क की फिक्र ना कोई, ना ही कोई स्कूल का डर, लगता था जैसे खुशियों का अपना ही है छोटा सा घर। मिट्टी के वो महल बनाना, फिर हंसकर उन्हें ढहा देना, मिट्टी के वो महल बनाना, फिर हंसकर उसे ढहा देना, रूठना फिर पल भर में ही यारों को गले लगा लेना, टॉफी के एक छोटे टुकड़े पर दुनिया की जागीर लुटाना, तितली के पीछे भाग भाग कर थक कर फिर घर को आना। काश ठहर जाए वो पल, वो मासूमियत और वो प्यार, बचपन इतना सच्चा सुख न दे पाएगा कोई संसार।
3: वाह, शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक कहते हैं ना बिल्कुल फीलिंगफुल। देखिए यहाँ जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे होंगे उन सभी के मन में यही आ रहा होगा मैम कि काश वो बचपन वापस ला सकते।
4: हाँ।
3: बट ऐसा नहीं हो सकता है, बट बिल्कुल वही यादें जो हमने कहीं ना कहीं सब करके रखा हुआ है। अगर अभी कोई पूछ लेता तो हम बताते कि हमने क्या क्या किया है। तो बहुत प्यारी पोएम थी, थैंक यू सो मच मैम इतनी प्यारी पोएम सुनाने के लिए।
2: जी तो अब हम सुनते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि होती है हमारी बिना बिना किसी भी मुद्दे को लेकर के नो फाइट।
3: बिल्कुल
2: बना नहीं, लेकिन आप कोशिश की थोड़ी सी,
3: बन गया था, बनते आपने बनाया ना,
2: बनते बनते बन गया था,
3: बनते बनते बन गया था, मिलते मिलते मिल गया था, और जुड़ते जुड़ते सब जुड़ जाता है, क्योंकि सहेलियों के साथ यही होता है कि बेबात की बात की भी बातें बन जाती हैं, जो बातें होती हैं वो नहीं करते हैं हम, और बेबात की बहुत सारी बातें करते हैं, बट आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके लिए हम सिर्फ काम की ही बातें करते हैं
2: जी।
3: तो चलिए बताते हैं कि आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्या है। आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है शक कभी मत करना। शक कभी मत करना, क्योंकि शक वो दीमक होती है जो धीरे धीरे आपके घर को खोखला कर देती है। जब हमें किसी पर विश्वास होता है तो चाहे वो हमारे बगल बैठा हुआ इंसान कोई खराब चीज़ भी लेकर हमें देता है ना, तो हम पूरे भरोसे के साथ तो उसको ले लेते हैं कि अरे नहीं तुमने दिया है ना तो अच्छा ही होगा, चाहे उसमें कोई खराबी ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमें तब नज़र नहीं आती है जब हमें उस पर पूरा विश्वास होता है। और एक बार अगर किसी का विश्वास किसी पर से टूट गया तो आप बहुत अच्छी चीज़ भी देंगे तो लगेगा अरे नहीं ये तो रहने दो मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए शक को अपने रिश्ते में कभी मत आने दीजिए और विश्वास को हमेशा संभाल के रखिए। और अगर वो टूटने वाला हो, क्योंकि देखिए रिश्ते हैं, कई बार होता है कि हमारी किसी से बहुत ज़्यादा एक दोस्ती होती है, बहुत प्यार होता है, लेकिन बीच में आ जाती है कुछ बातें। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर ज़रूरत है साफ साफ बात कर लें। अगर फिर भी नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन शक ना करें। शक से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम साफ साफ बात कर लें, क्योंकि मन में कभी कुछ नहीं रखना चाहिए। मन में रखा हुआ छोटा सा शक का कंकर कब पहाड़ बन के आपके रिश्ते को खोखला करता है आपको पता नहीं चलता। इसलिए शक कभी नहीं करना चाहिए।
2: गुड,
3: थैंक यू,
2: अच्छा था। तो चले आज के फटाफट शुरू करते हैं, हमारे बच्चों के सेगमेंट से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक ब्रेक होना जरूरी होता है, और एक ब्रेक के बाद में फिर से आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा होने वाला है। लेकिन उसके पहले अभी हम जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, लेकिन आपको बने रहना है हमारे 89.6 FM पे। शो चल रहा है हमारा और आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
2: स्टे ट्यून।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है, या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
6: RJ अंशिका।
5: तो चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। और आई होप सो कि आपको ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा लगा होगा। मौसम के अकॉर्डिंग आज की प्लेलिस्ट बनाई गई है क्योंकि मौसम इतना सुहावना रोमांटिक है, तो सोचा गया कि कुछ गाने भी इसी तरीके से हो। क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल
5: मैम। मैं मुझे क्या देख रही हूँ, मतलब मैं अपने लिए थोड़ी बोल रही हूँ, मैं लिसनर्स के लिए बोल रही
6: हूँ। मैंने कहा कि आप अपने लिए बोल रही हैं, मैंने ऐसा नहीं प्रदर्शित नहीं किया ना, तो फिर आप क्यों समझ रही हैं? अब फिर वही एक कहावत होती है, वो फिलहाल मैं नहीं कहूँगी।
5: क्या बोलो?
6: नहीं बोलूँ।
5: बोलो बोलो।
6: नहीं बोलूँगी।
5: बड़े बुजुर्ग?
6: नहीं नहीं, बड़े बुजुर्ग। हाँ। बड़े बुजुर्ग वाला कभी कभी है वो, तो मुझे जब आपको आपकी मस्ती करने का मन होता है तो
5: क्या क्या कहावत कौन सी थी पहले वो बोलो, तब प्रोग्राम शुरू होगा।
6: नहीं वो मैं ऑफ माइक बताऊंगी आपको, सहेलियों वाली बात है ना, मैं वो ऑफ माइक करूंगी।
5: ठीक ठीक ठीक।
6: तो चलिए फिलहाल चलते हैं हमारे काम की तरफ, क्योंकि अगर हमारी बातें शुरू हो गई तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर आपको सिर्फ हमारी बातें
5: बक बक मिलेगी,
6: और वो आपको इंटरेस्ट हो या ना हो भाई हमें तो बहुत है, लेकिन अब सुनने वालों को थोड़ा ही इंटरेस्ट।
5: सहेलियों की बातें ना, जो तीसरा इंसान सुनेगा वो यही कहेगा यार कब इन लोगों की बातें खत्म होगी,
6: कब मुंह बंद होगा,
5: कब मुंह बंद होगा।
6: लेकिन हमारा तब भी नहीं बंद होगा, कभी भी नहीं बंद होगा। घर की सारी चाय पत्ती,
5: और अभी तो आज हम लोगों ने शुरू ही नहीं किए हैं, हमने अपना शुरू ही नहीं किया है कुछ,
6: वही
5: है ना,
6: घर की सारी चाय पत्ती, सारा दूध, सारी चीनी भी खत्म हो जाए और सारी की चाय भी पी डालेंगे ना, फिर भी सहेलियों की बात खत्म नहीं होगी। घर की पूरी कॉफी खत्म हो जाएगी लेकिन उनकी बात खत्म नहीं होगी। तो इन शॉर्ट ये है कि सहेलियों को कभी बात करने का मौका नहीं देना चाहिए, इसलिए हम चलते हैं हमारे काम पे।
5: चलो,
6: तो काम ये है कि एक आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाली हूँ, यानी हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, वो बच्चों के लिए नहीं उनके पेरेंट्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है।
5: इसीलिए क्योंकि हर एक कहते हैं ना कि जब मकान बनता है तो उनकी जो नींव होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए।
6: बिल्कुल।
5: तो हमारी नींव हमारे पेरेंट्स ही तो है ना, जब वो हमें एक अच्छा मकान और एक जैसे मजबूत मकान बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे पेरेंट्स हमें एक नींव, हमारे लिए एक नींव का काम करते हैं।
6: तो टॉपिक आज का ये है लिसनर्स कि बच्चे जो होते हैं उनका कई बार होता है ना, मैम होमवर्क करवा दो, या घर में बच्चे कहते हैं मम्मी होमवर्क करवा दीजिए। तो होमवर्क करवाना ठीक है कि आप होमवर्क करवाते हो, लेकिन कई पेरेंट्स की आदत होती है कि वो कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि होमवर्क करवाने का बच्चे पे क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नेगेटिव असर पड़ता है, तो पहले नेगेटिविटी फिर पॉजिटिविटी।
5: ठीक है ठीक है,
6: चलिए सबसे पहले नेगेटिविटी की ओर चलते हैं क्योंकि वो ज्यादा, उसे दूर भगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिविटी को तो हम अपने पास रख सकते हैं।
5: बिल्कुल।
6: तो नेगेटिविटी ये है कि धीरे धीरे बच्चे में जब जैसे कहते नहीं है कि क्वेश्चन आपने कोई पूछा मान लीजिए और आपको सीधे आंसर मिल गया, तो आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़े, इससे हमारे माइंड में ऐसे हार्मोन्स का स्राव शुरू हो जाता है जो धीरे धीरे हमारी नॉलेज पावर को कम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को उनके सवाल का जवाब तुरंत मिल जाता है उनमें कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती।
5: हाँ।
6: कभी जिज्ञासा नहीं होती है कि हम ये जाने, क्योंकि उनको तुरंत पता चल गया, उन्होंने कुछ पूछा और आपने आंसर कर दिया बेटा ये नहीं ये लिखो, तो आपने उनकी क्यूरियोसिटी खत्म की, इसका मतलब है कि उनकी जानने की इच्छा को भी खत्म कर दिया, जो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। दूसरी चीज कि जब हम किसी चीज को सुलझाने में मेहनत करते हैं तो वो हमारे माइंड की पावर को बढ़ाता है, और जब हमें किसी चीज पर बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती तो हमारी माइंड की जो पावर होती है वो कभी बढ़ती नहीं है। क्यों कहा जाता है बच्चे को कि बेटा ये इसको पढ़ो, क्योंकि जब वो पढ़ेगा तभी पढ़ना जानेगा, उसे समझ में आएगा कि ये छोटा लिखा है, ये बड़ा लिखा है। लेकिन ये कब? जब वो अपने मुंह से बोल बोल के पढ़ेगा। हम बच्चों को क्यों कहते हैं कि बेटा बोल बोल के, जोर जोर से बोल बोल के पढ़िए, क्योंकि इससे दोहरा फायदा होता है, बच्चे सुनते भी हैं और देखते भी हैं, इससे उनके माइंड में जल्दी चीजें बैठती हैं। लेकिन आपने तो उससे दोनों नहीं करने दिया, आपने तुरंत आंसर दे दिया तो बच्चे को समझ में आ गया कि अच्छा इसका आंसर ये है। लेकिन वो लॉन्ग टाइम उसके दिमाग में नहीं है, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, उनसे सिर्फ आपसे सुना है, वो कुछ टाइम बीतने के बाद उसे भूल जाएंगे। इसलिए जरूरी होता है कि बच्चे को हमेशा खुद से दिमाग लगाने दीजिए, आप मत बताइए, उसको खुद करने दीजिए, गलत करे सही करे कुछ भी करे, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स खुद करे, इससे वो इंडिपेंडेंट होगा। क्योंकि धीरे धीरे अगर हम बच्चे को पूरा पूरा होमवर्क करवा देते हैं तो बच्चा हमारे ही ऊपर डिपेंड हो जाता है कि अब तो मम्मी बैठेंगी तभी लिखेंगे, पापा बैठेंगे तभी लिखेंगे,
5: ऐसा होता है,
6: तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात होती है कि कई पेरेंट्स की आदत होती है कि वो बच्चे का होमवर्क खुद ही कर देते हैं।
5: मेरे घर में भी ऐसा ही है। एक बारी अभी जल्दी की बात है, जिया मेरे पास कॉपी लेके आई और बोले कि आप ना मेरा ये होमवर्क पूरा कर दो, और आपके बदले ना आप मुझे बोलते हो ना कि मेरा पैर दबा दो, मेरा हाथ दबा दो, मेरा सर दबा दो, तो मैं सारा काम करूंगी लेकिन आप मेरा होमवर्क कर दो। मैंने कहा कि नो, आई एम नॉट टायर्ड, ठीक है, तो मैं आज बहुत ज्यादा थकी हुई नहीं हूँ, तो तुम ऐसा करो, तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे हाथ पर दबा देते हैं। बोली नहीं आप करके दो। मैंने कहा ये आदत बहुत गलत बात है। और एक बारी हुआ था, एक बारी एक्चुअली ये लोग जब ये छुट्टियां होती है ना, वेकेशन होती है, तो बहुत सारा काम था, बहुत ज्यादा काम होने की वजह से, बहुत ज्यादा काम होने की वजह से क्या हुआ, हो गया कि मतलब वो हो गया कि वो आई मेरे पास लेकर के कि आप लोग आप ना इसका पूरा काम कर दो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं काम करती हूँ तो ये तो बात गलत हो जाएगी, है ना
6: जी मैम।
5: तो फिर मैंने किसी तरीके से समझाया और उसको, उसने फिर पूरा वो काम पूरा किया, और देन क्या हुआ कि अब उसकी ये आदत भी छूट गई कि हाँ ये मुझे कभी नहीं कहेगी कि मेरा काम करके दो। हाँ वेकेशंस की बात अलग होती है, बट हमेशा वाली ये तो चीज फिर गलत हो जाएगी ना।
6: बिल्कुल, बच्चों में कभी ये हैबिट नहीं होनी चाहिए कि उनका काम कोई दूसरा करे। दूसरी थर्ड पॉइंट आता है कि नेगेटिव चीज एक ये होती है कि कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि वो अपने बच्चों की मदद करने के लिए उसे पहले, जैसे आपने मान लीजिए होमवर्क करने के लिए बिठाया, वो उस पर गुस्सा करते हैं, उसे डांटते हैं, उसके साथ ठीक से बात नहीं करते हैं, और हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तुम होमवर्क ही नहीं कर पाते हो, अरे इसे ऐसे करो ना, चार बार तुम्हें समझाया लेकिन कभी होता है कि तुम्हें समझ में आ जाए। इससे बच्चे में होमवर्क को लेकर डर बैठ जाता है और वो दोबारा कभी जल्दी होमवर्क करने के लिए आपके साथ रेडी नहीं होगा। धीरे धीरे आपकी डांट का डर, आप क्या कहेंगे कैसे कहेंगे, इसका डर बच्चे में बिल्कुल से बैठ जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चे को डांटे नहीं, उसको समझाएं। क्योंकि देखिए, जब हम किसी, कोई काम आप किसी से डांट के नहीं करा सकते हो, आपको उसे समझाना पड़ेगा। देखिए बच्चों में ये मेंटल पावर होती है, कोई बच्चा कोई बात एक बार आप समझाएंगे समझ जाएगा, किसी बच्चे का आईक्यू लेवल ऐसा होता है कि वो चार बार आप बताएंगे तो पांचवी बार में उन्हें समझ में आएगा। ये आईक्यू लेवल का फर्क होता है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चे के आईक्यू को समझकर ही उसे पढ़ाएं। पढ़ाने के तरीके भी आप चेंज करें, ज़रूरी नहीं है कि हम वही घिसे पीटे तरीकों से पढ़ाएं या पुराने तरीकों से पढ़ाएं। आप कुछ बच्चे को नया बता सकते हैं, कुछ गेम करा सकते हैं, कुछ चॉकलेट्स दे सकते, कुछ भी आप चॉकलेट्स रख के, पता है मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप अपने बच्चे को थोड़ा फनी वे में कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे करती हूँ कभी कभी, छोटे बच्चे मेरे पास भी जब आते हैं तो मैं उनके साथ ये करती हूँ और ये काफी फायदेमंद होता है। एक दिन मैं एक बच्चे को मैम प्लस करना सिखा रही थी, ऐड करना, कि ऐड कैसे किया जाता है, तो मेरे चार पांच बार समझाने के बावजूद भी उसको समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसको लाइन खींच के समझाया कि इतनी लाइन खींचो, इसको प्लस करो और फिर इसको इसमें ऐड कर दो, फिर भी उसे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि आपने बैग में क्या रखा हुआ है, उसके बैग से आवाज आ रही थी, तो उसने कहा मैम मेरे पास टॉफी रखी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है टॉफी निकालो सारी। उसके पास करीबन आई थिंक 10-12 टॉफी थी। और मुझे उसमें उस, और फिर मैंने उसको उस टॉफी से समझाया कि देखो 5 टॉफी यहाँ रखी हुई है, 2 टॉफी अगर आपने और रख दी है तो कितने टॉफी हो गए। तो उसने फट से मुझे काउंट करके बता दिया कि मैम ये 7 टॉफी हो गए।
5: इसका मतलब पता है अंशिका क्या होता है कि जब हम अगर हम एक एक टीचर लाइन में हैं या तो फिर हम अगर एक मतलब घर पे हैं, मदर हैं, तो हम लोगों को सिंपली क्या करना होता है कि हम लोगों को बच्चों को खेल खेल में सिखाना होता है ना। तो खेल खेल में जब हम सिखा पाएंगे तो ही बच्चे बहुत जल्दी से सीख पाते हैं।
6: बिल्कुल। दूसरी बात होती है कि एक नेगेटिव असर ये पड़ता है कि अगर आप बच्चे का होमवर्क कराते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना नहीं सीखते हैं। जैसे एक आपने देखा होगा कुछ बच्चों में होता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं अगर मुझे सारे होमवर्क मिले तो मुझे सारी कॉपी में पूरा करके लेकर जाना है, कल मैम चेक करेंगी। लेकिन कुछ बच्चों में ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरे मम्मी पापा पूरा करवाएंगे ना, या अगर हम ट्यूशन जा रहे हैं तो हमारी ट्यूशन वाली मैम पूरा करवाएंगी ना। ये एक गलत आदत है। आप बच्चे को हमेशा समझाइए कि अगर होमवर्क मिला है चाहे ट्यूशन से हो चाहे स्कूल से हो, वो पूरा करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एक बच्चे को, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी पढ़ाई होती है और उन उसके प्रति उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। क्योंकि जब छोटी उम्र से आप जिम्मेदारियां लेने लगते हैं तो बड़े होते होते वो इतनी मजबूत हैबिट बन जाती है कि कभी आप उससे चूकते नहीं हो।
5: बिल्कुल।
6: अगर हमने छोटी उम्र में जिम्मेदारियां नहीं दी या बच्चों ने नहीं ली तो बड़े होकर तो बिल्कुल ही नहीं सीखेंगे कि मुझे मेरा काम करना चाहिए। इसलिए ये आदत बच्चों में जरूर होनी चाहिए। अब आते हैं कि पॉजिटिव असर क्या होता है। पॉजिटिव असर बहुत अच्छा सा होता है और वो ये होता है कि जब माता पिता या भाई बहन या घर के कोई भी बड़े, बुआ मासी कोई भी है, तो अगर वो
5: तो
6: अगर वो बच्चे को समझाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव असर होता है। वो बताएंगे और भी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग सुनेंगे।
5: हाँ।
6: क्योंकि मौसम है बहुत ही प्यारा,
5: सुनिएगा जी।
6: हाँ, इसके हाँ, आगे हाँ। की लाइन मुझे नहीं याद
5: है। ये गाना अभी मैं सुनाऊंगी लिसनर्स को,
6: जरूर
5: सुनेंगे। बहुत देर से मेरे मुंह में ये गाना आ रहा है,
6: जरूर सुनेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि मौसम है बहुत ही मस्ताना, तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा तराना और मिलते हैं इसके उस पार फिर से लेकर के वही फसाना।
5: अरे बाप रे, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए सुन लेते हैं इस प्यारे से नगमे को, फिर आते हैं हम और अंशिका। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेंगे यहाँ पर ब्रेक। स्टेज में

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं, भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में हैं
6: RJ अंशिका।
5: तो चलिए, जो टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि होमवर्क।

0: हम पेरेंट्स के लिए जरूरी होता है या हानिकारक होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें थी वो हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले गीता जी ने बहुत ही बढ़िया सी एक बात बताई हम लोगों को कि एग्जैक्टली जब वो छोटी थी तो उन्होंने क्या किया था, उनकी जो दादी थी उन्होंने उनको छोटी छोटी मिट्टी की गोलियों को आग में पका करके उनको दिया था और उन्हीं से वो जोड़ना घटाना सीखती थी। अंशिका आपके लिए लिखा है।
1: थैंक यू गीता जी, और बहुत ही प्यारा आपने बताया, क्योंकि कुछ ऐसी मेमोरीज मेरी भी हो गई रिमेम्बर, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे तो लाइंस खींच के बताया जाता था और हम लोग दरवाजे पे लिख के हम लोगों ने बहुत सीखा है।
0: हाँ।
1: दरवाजे पे लिखने वाली एक आदत होती थी कि दरवाजे पे लिख
0: दरवाजे के पीछे। हाँ। मेरी, और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई मतलब मैंने 10th 12th में कुछ भी ऐसा टफ होता था, चाहे वो इंग्लिश को लेकर के हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं दरवाजे के पीछे उसको लिख लिख के, तो जो जिसकी ऐसी हैबिट होती है ना वही टीचर्स होती है, पता है तुम्हें।
1: हाँ,
0: तो ऐसे ही क्या कहते हैं, मैंने उसमें पढ़ पढ़ के और लगता था कि मेरे पूरी क्लास भरी हुई है, जो कि जैसे आज हम रियल में देखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो पूरी क्लास मेरी भरी हुई है और मैं उसको समझाती थी, अपने आप को समझाती थी और वो दिमाग में ऐसी बैठ जाती थी कि मैं क्या ही बता दूं। मतलब वो ना वो पढ़ाई वाली जो हम लोगों ने पढ़ाई की है वो बिल्कुल फिट हो जाती थी माइंड में। तो गीता जी शुभ दोपहरिया, अंशिका जी को भी शुभ दोपहरिया बोल रही हैं,
1: शुभ दोपहरिया।
0: एंड मानवी महेंद्र जी हैं वो लिख रहे हैं कि आदरणीय आदरणीय आरजे समता मैम जी और आरजे अंशिका मैम जी नमस्कार।
1: नमस्कार शुभ दोपहरिया आपको भी, कैसे हैं आप।
0: सनी पांडे जी हेलो एंड हेलो एवरीवन, सभी को अनोखी जी एंड सनी पांडे और सोनिया तिवारी और हमारे लिसनर्स में अकबर जी आ गए हैं जो कि हैं नवाबगंज से, तो काफी लिसनर्स आ गए हैं अंशिका। तो चलो हम चलते हैं अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं।
1: जी मैम, तो आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, और आगे बढ़ते हुए एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगी। मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपको बताया था कि हमारा आत्मविश्वास जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं मैम, हर सिक्के के दो पहलू, ठीक उसी तरीके से अगर माता पिता हर वक्त बच्चे के पास बैठकर उसे बताते हैं तो जहां उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है वहीं पर धीरे धीरे बच्चे में एक चीज़ ये आ जाती है कि जब मेरी मम्मी मुझे बताएंगी तभी मैं करूँगी। हाँ। और जब मेरे पापा मुझे बताएंगे तभी मैं करूँगी। इसलिए आप बच्चे को क्या करना है आपको कि पॉजिटिव असर पड़े, इसके लिए आपको दो मिनट उसको बताना है कि बेटा ये बताओ कौन कौन सी कॉपी में आपको होमवर्क मिला है। वो आपने कॉपी दे दी और एक हल्का सा उसको ब्रीफ कर दिया कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, अब तुम करो, मुझे काम है, मैं आधे घंटे या एक घंटे बाद आके चेक करती हूँ कि आपने क्या किया।
0: हाँ।
1: आप वहाँ से हट जाइए। जब आप वहाँ पर नहीं होंगे तो बच्चे को खुद का काम खुद से ही करना पड़ेगा। उस टाइम वो जो माइंड लगाएगा, जो अपना काम करेगा, वही उसकी असली दिमाग की कहीं ना कहीं मजबूती होती है और फिर ही हमारा IQ लेवल बढ़ता है। आपने देखा होगा कि रिसर्च भी प्रूव करती है कि उन्हीं बच्चों का IQ लेवल कम होता है जो कम मेहनत करते हैं। कम मेहनत का मतलब है जो मेंटली कम मेहनत करते हैं उन्हीं का IQ लेवल कम होता है, जो अपने दिमाग को ज़्यादा चीज़ों में लगाते हैं हमेशा उनका IQ लेवल ज़्यादा होता है। IQ लेवल उन्हीं बच्चों का ज़्यादा होता है जो जिज्ञासा प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब क्वेश्चनिंग इतनी करेंगे अगर आप उनसे बैठ जाओगे ना उनको करने के लिए तो एक टॉपिक पर वो इतनी सारी क्वेश्चनिंग कर लेंगे कि शायद आपके पास भी आंसर ना हो। ऐसे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं और उनकी मानसिक क्षमता औरों से ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चे को हमेशा सवाल को पुट करने दें और उसके सवाल का उसे सही आंसर भी जरूर दें।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली जो अंशिका ने अभी बताया, अंशिका गीता जी कह रही है कि ये जो कि जनरेशन का अंतर है, क्योंकि आपके समय में चूल्हा कहाँ जलता है गांव में, ऐसा नहीं है उसके गांव में भी आज भी चूल्हा जलता है।
1: ऐसा नहीं है, अभी भी है मेरे यहाँ मौसी के घर हम लोग जाते हैं गीता जी गाँव में तो वहाँ आज भी है। हाँ ये जरूर है कि अब हमेशा नहीं बनाती हैं वो उस पर कभी कभी यूज करते हैं।
0: और मैं बताऊं गीता जी कि हम लोग तो सर्दियों में आज भी अपने घर में चूल्हा मतलब जो वो होता है ना चूल्हा जो वो आज भी जलाते हैं और उस पे ना हम लोग मतलब जैसे लगता है कि दोनों काम हो जाते हैं, उस पे खाना भी बन जाता है और काफी देर तक चलता है तो उसमें हाथ भी सिक जाते हैं। तो काफी घरों में आज भी चूल्हा मतलब मैंने काफी ऐसे घरों में देखा है जो कि आपको लगेगा कि इतने ज्यादा स्टैंडर्ड है, लेकिन आज भी हम जब गांव की या फिर ये जो एक जैसे कहते हैं एक प्राकृतिक चीज है और ये हमारी जिसको कह सकते हैं हम मिट्टी से जुड़ना, तो ये सारी चीजें ना हमें बहुत कुछ याद दिलाती हैं पहले की। तो आज भी हमारे घरों में जब बहुत क्या कहते हैं जो भीड़ वाली सर्दियां होती है ना, उसमें ये चीजें करती मतलब की जाती है।
1: चूल्हे से याद आ गया कि आप सभी ने कभी ना कभी वो चूल्हे की राख वाली जो रोटियां होती है ना, चूल्हे की आग पर जो बनी होती है, वो जरूर खाई होंगी, बहुत अच्छी लगती है, और वो भी बैगन के भरते के साथ।
0: ओह माय गॉड, क्या कहाँ कहाँ से खोज के तुम बोलती हो, वो भी इस समय 1:30-2 बजे, ताकि बिल्कुल ना दिमाग खराब हो जाए, खाने की ओर भाग जाए। ये है, बताइए मतलब इस तरीके से कोई किसी को, किसी के माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जाता है, वो भी खाने
1: क्या करूँ मैं।
0: अंशिका 4 अगस्त है। ओके वाओ, आज तो 4 अगस्त है ना।
1: हाँ
0: तो 4 अगस्त है,
1: क्या यार,
0: क्योंकि कल 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी, फिर 10 होगी, फिर 11 होगी, है ना।
1: I know.
0: तो भाई कुछ है खासम खास बातें, तो उसको तो हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, पहले अंशिका जो बात करें करें, वरना अभी मुझे यही सुनने को मिलेगा कि आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं।
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपने डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ याद दिला दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एक पॉइंट की तरफ, जो कि ये है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई से बच्चों का एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए, और वो रिश्ता तभी बन सकता है जब आप उनकी कमियों की पहचान करें। कमियों की पहचान करने का मतलब होता है कि कई बार, अगर देखिए, हम पहले भी मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया कि हर बच्चे का IQ अलग होता है, किसी बच्चे को आप एक बार समझाएंगे वो समझ जाएगा, किसी बच्चे का IQ ऐसा होता है कि हम 4 बार भी बताते हैं तो वो नहीं समझ पाता। तो कहीं ना कहीं IQ लेवल समझ करके हमेशा कमियों को हटाना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि उन कमियों पर इतना ज्यादा पिंच कर देते हैं कि वो दूर होने की बजाय हिस्सा बन जाती हैं लाइफ का। इसलिए अगर किसी से कोई गलती हो रही है तो उसे सुधारने के तरीके बताने चाहिए, न कि उसकी उस गलती पर पिंच करना चाहिए। तो हमेशा अपने बच्चे को सुधारने की ओर ले जाएं, उसको बताएं कि अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो बेटा देखो ऐसे 4 तरीके हैं कि जिनसे आप ये कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि टेबल जब हम लोग बचपन में मैम सीखते थे,
0: जिसको कहते थे पहाड़ा।
1: हाँ, तो मेरा
0: आज टेबल हो गया है,
1: आज टेबल
0: वैसे पहाड़ा ही कहते थे, क्योंकि गीताजी आपको याद है ना, हम लोगों के स्कूल्स में कहा था कि कल पहाड़ा याद करके आना। हाँ। अरे भाप,
1: और वरना मार पड़ेगी। और पढ़ती,
0: पता है अंशिका, मैं एक साल तक मैं बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम के स्कूल में थी, मैं उस स्कूल का नाम नहीं लूंगी। उसमें ना मेरी, मैं अपने से जुड़ी इस घटना को मैं सभी को बताना चाहूंगी।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी मम्मी ने क्या किया कि मतलब मैं एक साल तक, मम्मी ने मुझे उस स्कूल भेजा, वो प्योर हिंदी का स्कूल था, मतलब प्योर हिंदी, इंग्लिश थी ही नहीं उसमें।
1: जी।
0: क्लास 4th के बाद इंग्लिश स्टार्ट थी उस जमाने में।
1: ओके।
0: तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, और इंग्लिश फिर आप बच्चे सीख जाएंगे। अच्छा, मैं सबसे घर में पहली, मतलब अपनी बुआओं के बाद, चाचू के बाद मैं सबसे पहली औलाद, तो मैं बहुत लाड में भी पली। तो मम्मी ने कहा, मम्मी की जिद थी कि नहीं इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी, लेकिन मेरे बाबूजी पापा के आगे भाई किसकी चलनी थी।
1: हाँ।
0: और पहले की तो बहुएं बिल्कुल ऐसा ही होता था कि हमेशा से अपने फेस को कवर करके रखना,
1: जी, जी, जी।
0: बिल्कुल हामी भरना। तो चलो किसी भी तरीके से मैं गई स्कूल, गई, और एक साल तक मैं इतनी ज्यादा, अब मैं शार्प माइंडेड तो शुरू से ही थी, सभी को पता है कि मैं बचपन से ही थी,
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स,
0: है ना। तो मैं जैसे गई, और मैं day 1 से ही लेकर के और पूरा 6 महीने तक जो भी एग्जाम्स होते थे वहां, मैं फटाफट अव्वल नंबर सब में आती गई।
1: ओके।
0: अब उसके बाद से ऐसा कुछ हुआ कि जब मैं घर पे आई, मतलब जब मेरा वो एक साल पूरा हुआ, और मम्मी ने कुछ मुझसे पूछा, तो मम्मी ने कहा कि कुछ इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स पूछे जो मैं बिल्कुल बता नहीं पाई। तो मम्मी को लगा कि अरे मतलब एक साल तक किच ABCD तक नहीं बच्चे को सिखाई गई है। फिर उसके बाद से ये हुआ कि नहीं, मुझे तो यहाँ से इस बच्चे को, मुझे अपनी बेटी को निकालना है। फिर मुझे किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। देन वहां पर क्या होता था कि वहां पहाड़ा से सीधे टेबल आ गया,
1: टेबल
0: 1-2 आ गया। अब टेबल आ गया तो फिर ये लगा, और मेरे तो क्या कहते हैं जिबा पे वही था कि भाई 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा, और वहां सीधे 1-2 10 टेबल आ गई। तो ऐसे ऐसे करके फिर क्या हुआ कि हम लोग अच्छे, मतलब अच्छे क्या, मतलब हम लोग इंग्लिश मीडियम में स्कूल में गए, और उसके बाद से ये पहाड़ा जो परिवर्तित हो गया टेबल में।
1: तो वो क्या होता था कि आज भी होता है, मतलब जब बच्चे टेबल याद करते हैं मैम, तो जैसे 2 2 4, तो 2 2 4 जल्दी बच्चे याद नहीं कर पाते मान लीजिए, तो हम उन्हें एक ट्रिक बताते हैं उसको लर्न करने की। वो ट्रिक होती है कि 2 को 2 से प्लस करो, कितना आया, 4 आ गया। तो 2 2 क्या हुआ, 4 हुआ। ऐसे आप प्लस करते जाओ और वो आगे जो है नंबर्स बढ़ते जाते हैं।
0: लेकिन अंशिका ये ट्रिक अभी की है, पहले हमारे जमाने में ना सुना जाता था, ये अभी जो है ये रिटर्न का है।
1: ओके okay.
0: अभी आप सुना, अब बच्चों में ना लर्निंग पावर जो है उसकी टेबल्स की वो कम हो गई है, अब रिटर्न ज्यादा हो गया है।
1: हाँ.
0: ठीक है, पहले हम लोगों

0: पढ़ाई बदली, बच्चों के साथ में उनसे जुड़ी हुई बातें बदली, तो ये सब सारी चीजें भी हमारे पेरेंट्स को यानी हम लोगों को समझनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो अब हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो कि है वो भी बहुत ही अच्छा वाला। तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट बच्चों के लिए आज हम लेकर के आए कुछ ऐसा डाइट प्लान कि वो हम आपको बताएंगे, जिसकी वजह से आप अपने मॉनसून में यानी बरसात में आप अपना ये बढ़िया वाला जो है डाइट चार्ट आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो अंशिका शुरू करें।
4: जी मैम।
3: और बता दूं कि ठीक इसके बाद हमारी एक मॉरल स्टोरी भी है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा प्लीज एंड प्लीज। एंड महेंद्र जी का एक मैसेज आया है अंशिका कि पहले मैम बचपन में हमारे स्कूल में पहाड़े लिखवाते थे। एक सर थे, जब वो बोलते थे कि आओ कौन सा पहाड़ा याद किया है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखो, उस वक्त सर पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो तरीका मुझे पहाड़े और कुछ सीखने में बहुत आसान सा लगता है, मतलब वो तरीका मुझे आज। महेंद्र जी यही बातें है ना कि जब हम लोगों ने मार खा के जो चीजें सीखी हैं आज उसका
4: बेनिफिट
3: मिल रहा है कहीं ना कहीं, है ना।
4: जी मैम।
3: तो मॉनसून स्पेशल जो है आज हम बताएंगे आपको एक डाइट चार्ट, वो भी बच्चों के लिए, कि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि पेट की बीमारियां होती हैं सबसे ज्यादा। इसमें जो हमारा खाना होता है वो पूरी तरीके से पक नहीं पाता है, उनका पोषण ठीक से उन्हें मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं बरसात में। तो क्या करना है, सुबह का नाश्ता आपको 8 बजे तक कर लेना है, जिसमें आप बेसन का चिल्ला, गर्मा गर्म पोहा, ओट्स, साथ में गुनगुना दूध जिसमें चुटकी भर हल्दी हो। ठीक है
4: जी मैम।
3: क्यों हंसी?
4: नहीं आपने
3: जो करूं?
4: नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं
3: कोई फनी बता रही हूँ?
4: नहीं आप ऐसा फनी भी नहीं बता रही।
3: मैं कोई बात करती हूँ तो आप हेडफोन लगा लेती है, मतलब हम कौन सी ऐसी अश्लीलता की बातें कर रहे हैं जो हम आप हेडफोन लगा लेती?
4: नहीं तो वो एक वो होती है, मतलब
3: क्या होती है,
4: मुझे गाना सुनने का मन था, अच्छी लाइन आ रही थी, मेरा गाना सुनने का मन था, आप अदर वे में क्यों जाती हैं?
3: दोपहर का खाना 1 बजे तक हो जाना चाहिए, जिसमें हम लोग यहाँ रहते हैं, जो बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे घर में पहुँचने से पहले ही वो कुछ अंटे संटे खा लेते हैं, तो 1 बजे तो खैर बच्चों को देना जरूरी होता है, जो कि डाइट चार्ट के हिसाब से है। अच्छा एक चीज देखी है मैंने कि एक एनर्जी जब मिल जाती है ना तो नींद, भूख, प्यास सब गायब हो जाता है और फिर लगता है कि हाँ, मतलब और अच्छे से काम करो।
4: जी मैम।
3: अच्छी तरह पकी हुई मौसमी सब्जियां जैसे कद्दू, परवल, अरहर की दाल और गर्मा गर्म रोटी या जीरा राइस।
4: ओके, यानी इतनी चीजों को आप लेंगे तो वो परफेक्ट डाइट होगी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं।
3: ठीक है। और शाम का नाश्ता 5 बजे, जो कि घर पर बना मिक्स वेजिटेबल सूप या भुट्टा यानी कॉर्न, ये शरीर को गर्माहट देता है।
4: ओके।
3: सर्दियों के लिए ये मॉनसून में, एक्चुअली मॉनसून में भी तो मौसम बहुत ठंडा होता है ना।
4: जी मैम।
3: तो हम वो ले सकते हैं। रात का खाना 8 बजे तक, जिसमें कढ़ी चावल कम तेल में या उबली हुई सब्जियों के साथ चपाती। कढ़ी चावल कौन खाता है यार रात में?
4: कढ़ी चावल
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, चपाती के साथ सब्जियां।
4: रोटी,
3: हाँ रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे खा सकते हैं आप, परोठे के साथ आप सब्जी खा सकते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसी वाली आप ले सकते हैं। एंड एक बहुत ही स्पेशल सा आज के दिन हम आपको टिप देना चाहते हैं, वो ये कि इस मौसम में यानी मॉनसून में सड़क किनारे मिलने वाले कटे हुए फल, चाट और जूस बिल्कुल ना पिए, उससे आप बचें।
4: राइट, तो ये थी हेल्थ इज वेल्थ वाली बात, क्योंकि जब सेहत अच्छी होगी तभी मन अच्छा होगा, तभी अच्छे अच्छे विचार आएंगे और तभी आप अच्छी अच्छी चीजों को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। चलिए फिलहाल हम एक्सप्लोर करते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को, बस यू गए यू आए।
3: हाँ, और उसके बाद आएंगे हम आज की मॉरल स्टोरी लेकर के, तो बस हम यू ही गएंगे यू ही आएंगे बिना किसी देर के, क्योंकि आपको अगर सुननी है हमारी मॉरल स्टोरी तो इस प्यारे से गाने को सुनने के बाद जल्दी से आ जाइएगा।

0: वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए फटाफट लास्ट बट नॉट लीस्ट आ गए हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले सेगमेंट की ओर। बारिश भी बहुत अच्छी वाली बन के आई है, तो फटाफट हम अपने शो को करते हैं अभी एक मॉल स्टोरी के बाद एंड, क्योंकि घर जाना है, खाना पीना है। तो आज की मॉल स्टोरी बहुत ही शॉर्ट सी होने वाली है, जो कि आपको बताएंगी आज ये अंशिका।
1: तो आइए बढ़ते हैं फटाफट से स्टोरी की तरफ, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम अभी कम है। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी वो श्री कृष्ण की लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है, कि जब वो कंस को मारने के लिए गए थे वहाँ कंस के यहाँ, यानी कि जब वो उनके महल में पहुंचे तो वहाँ उन्हें तर्णवत नाम का एक राक्षस मिला, जो कि चक्रवात और धूल भरी आंधी थी, मतलब वो राक्षस के रूप में। एक दोपहर जब माता यशोदा कान्हा को गोद में लेकर बैठी थी, तो अचानक उन्हें कान्हा का वजन किसी विशाल पर्वत जैसा महसूस होने लगा। हैरान होकर मैया ने उन्हें जमीन पर सुला दिया। तभी तर्णवत बवंडर का रूप लेकर उन्हें लेने आया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण को भला कौन उठा सकता है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर उड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि उनका वजन 100 धरतियों के समान,
0: और वो छोटा था जबकि बच्चा,
1: छोटे थे। हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण थे, तो कंस ये जानता था कि वो उनका काल है, इसलिए उसे उन्हें मारने के लिए उसने उस राक्षस को भेजा। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो उन्हें नहीं उठा सका, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना एक पैर लगा दिया। जब उन्होंने उसे पैर लगाया तो आप मानेंगे नहीं कि वो एक विशाल बवंडर एक तिनका बन गया, जब उन्होंने पैर उसको लगा दिया। और वहीं उन्होंने श्राप दिया कि जाओ अब जिंदगी भर तुम सबके पैरों के नीचे आओगे और सब तुम्हें कुचल कुचल कर जाएंगे, क्योंकि अब तुम एक कंकर हो। इससे हम ये सीखते हैं इस कहानी से, बहुत ही छोटी है लेकिन इसका जो मीनिंग निकलता है वो बहुत अच्छा निकलता है, कि कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड मत करना, क्योंकि जब हम अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं और जब ईश्वर उसमें कहते हैं ना कि आप बहुत सारी गलतियां करो, लेकिन जिस दिन उसकी अदालत में आपकी गलतियां भारी हो जाती हैं, उस दिन वो ऐसा इंसाफ करता है कि फिर हम बैठकर ये सोचते हैं कि क्या हमने किया था जो हमें ऐसा उसका प्रतिफल मिला। इसलिए काम हमेशा अच्छे करने चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर प्रतिफल देने पर आता है तो फिर आप पछता भी नहीं पाते।
0: एग्जैक्टली। तो चलिए आज के शो को यहीं करते हैं एंड, क्योंकि हो गया हमारा टाइम। कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
1: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

धुन है ये मोहब्बत, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। भाई आज मौसम जो है वो इतना मस्त और ज़बरदस्त था कि हमने सोचा आपको दो चार लाइनें सुनाने के बाद ही एंट्री करते हैं। तो एंट्री की है इस बहुत ही प्यारे किसी सॉन्ग के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका और आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला कार्यक्रम जो कि है कॉलर ट्यून गोंडा। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, उनका भी जो कि हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, हमारे उन लिसनर्स का भी जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, और उनका भी जो कि हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं। हम चैट बॉक्स में भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले पहले पहले चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि अभी तक कोई भी नहीं आया है। तो आइए सीधा चलते हैं हमारी सबसे पहली फरमाइश की तरफ, देखते हैं कि सबसे पहली फरमाइश जो कि है वो किसकी है और क्या है। तो सबसे पहली फरमाइश है सबीहा जी की, जो कि उन्होंने लिखा है हाय ये लाल दुपट्टा मलमल का। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और मिलते हैं सॉन्ग के उस पार आप सभी से। तो चलिए फटाफट से सुनते हैं हम इस प्यारे से सॉन्ग को, और इस प्यारे से सॉन्ग के साथ ही, यानी सॉरी इस प्यारे से सॉन्ग के साथ नहीं, मिलते हैं इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार आपसे।

पंछी को दिल के पिंजरे में बंद किया, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी सबिया जी की। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश आइए देखते हैं किसकी है। तो हमारी अगली फरमाइश है राजू जी की, और राजू जी का सॉन्ग भी बड़ा प्यारा है, अकेले ना बाजार जाया करो। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश के साथ।

नजर लग जाएगी। बिल्कुल अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है सुनील कुमार जी की। और सुनील कुमार जी का सॉन्ग भी बड़ा प्यारा है, मुझसे शादी करोगी। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और मैं याद दिला दूं लिसनर्स कि हमारे जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं, अगर वो भी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए फटाफट से फ़ोन उठाइए, डायल करिए 6393316429 और भी फरमाइश को हम तक पहुँचा दीजिए। तो आइए सुनते हैं मुझसे शादी करोगी।

शादी करोगी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कमारों को कितना सताओगी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है सावित्री सावित्री प्रसाद, श्रीदेवी प्रसाद, सॉरी श्रीदेवी प्रसाद जी की। और उन्हें बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि डेडिकेट किया है आर्या कांशा जी को, जो कि है तुझे जीवन की डोर से। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश के साथ।

बिल्कुल, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी श्रीदेवी प्रसाद जी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है निशा जी की। तो आइए सुनते हैं निशा जी के सॉन्ग को।

0: मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी निशा जी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली फरमाइश है अनन्या मिश्रा जी की, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।
1: ये सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन।

बिल्कुल गीत सुनोगे हुजूर या मैं गजल गाऊं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो की है चांद बाबू की। आइए सुनते हैं चांद बाबू के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन फिर एक बार आप सभी को बता दूँ, याद दिला दूँ कि अगर आप भी अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो फटाफट से डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचा देना है, जो भी हमें सुन रहे हैं।

इकरार है, अल्लाह अल्लाह। आइए बढ़ते हैं अब अगली फरमाइश की तरफ, जो की है हमारी अगली फरमाइश इरशाद जी की। तो आइए सुनते हैं इरशाद जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल धड़कने चुराने लगे, जरा जरा पास वो आने लगे, जरा जरा। तो आइए बढ़ते हैं अब अगली फरमाइश की तरफ, जो कि आपको बरसात की याद दिलाएगी, जो कि फरमाइश है मोहम्मद शाकिर जी की। तो आइए बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। मिलती हूँ आपसे इस फरमाइश के उस पार।

बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, और बरसते पानी का मजा होता भी है। तो आइए अब अगले सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, अगली फरमाइश की तरफ, जो कि फरमाइश है सुरेश कुमार जी की। और सुरेश कुमार जी का सॉन्ग बड़ा ही प्यारा है, भोली सी सूरत। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार अगली फरमाइश के साथ।

0: आए
1: बिल्कुल भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए मेरी नजर से तुम देखो तो जा नजर वो आए। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी सुरेश कुमार जी ने। तो आइए अब चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि आ गए हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ तबिश खान जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून तबिश जी, सनी पांडे जी और साथ में अनोखी शर्मा, धर्मेंद्र मोहन आवाज़ से और नीना जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसका नाम है कॉलरट्यून गोंडा में। और साथ में अनोखी जी लिख रही हैं हम आ गए हैं चुपके से मैम गुड आफ्टरनून। तो मैं बता दूं कि मैं बहुत अच्छी हूं और गुड आफ्टरनून, लेकिन आप चुपके से नहीं आए, मुझे पता है कि आप सभी आ गए। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है महेंद्र जी की। तो आइए सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को।

घर और तुम मेरे साथ हो, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी महेंद्र जी ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है राकेश वर्मा जी की। तो आइए सुनते हैं राकेश जी के सॉन्ग को और आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार।

की 16 साल पतली कमर और लंबे बाल, बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि फरमाइश की थी राकेश वर्मा जी ने। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है कमल नयन जी की। तो कमल नयन जी को सॉन्ग जो कि सुनना है बहुत ही प्यारा, जादू तेरी नज़र। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

कर या ना कर तू है मेरी किरण जादू तेरी नजर, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी कमल नयन जी ने। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है सोनम मौर्या जी की। तो आइए सुनते हैं सोनम जी के सॉन्ग को और इसके बाद मिलती हूँ आपसे आप अगली फरमाइश के साथ। लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला दूँ कि हमारे जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं अगर उन्हें भी अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचाना है तो उसके लिए फटाफट से फ़ोन उठाइए, डायल करिए 6393316429 और फटाफट से अपने सॉन्ग को हम तक पहुँचा दीजिए। तो आइए सुनते हैं सोनम जी के सॉन्ग को।

0: इज लाजवाब तेरा कोई ना जवाब सॉन्ग। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है अरमान जी की। तो आइए सुनते हैं अरमान जी के सॉन्ग को। और अरमान जी का जो सॉन्ग है वो बहुत ही प्यारा है जो कि है मोहब्बतें मूवी से। तो आइए सुनते हैं मोहब्बतें मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।
1: अब ये झुकने वाली नहीं

सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर, दिल के सब दरवाजे खोल, पैरों में बंधन है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग ये है मोहब्बतें मूवी का। तो भाई बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और हमारी अगली फरमाइश जो की है वो है खानसा इकबाल जी की, जिनको की सॉन्ग सुनना है झूम झूम माने। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार।

क्या मैं रब से पाया है तुझे जब से, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि थी हमारी आखिरी फरमाइश। तो आइए अब चलते हैं सीधा चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ अक्षरा जी, और अक्षरा जी के बाद अनोखी जी और अनोखी जी के साथ तबिश खान जी हैं जो कि गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, सनी पांडे जिन्होंने बहुत सारे हार्ट्स भेजे हैं थैंक यू, और इसी के साथ नीना जी, धर्मेंद्र जी थैंक यू लिख रहे हैं, इट्स ओके धर्मेंद्र जी यू वेलकम, और इसी के बाद सनी पांडे जी फिर से। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू क्वालिटी ट्यून गोंडा में मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ बने रहने के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए, और बारिश का ये बहुत ही प्यारा सा मौसम है इसे इंजॉय करते रहिए। तो चलती हूँ लिसनर्स, कल मिलूंगी फिर आपसे आपके अपने पसंदीदा वाले प्रोग्राम में जिसका नाम है सुन सहेली। तब तक के लिए बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
7: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
6: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
7: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
6: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: Mixing it.

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

स्पेशल स्पेशल से मुझे याद आया कि हर दिन स्पेशल हो अगर हमें कोई खास चीज़ें बताने वाला हो, और ऐसे में अगर आरजे बीना आपको कुछ खास बताए तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत ही खास होगा। फिलहाल तो मौसम जो है बेहतरीन हो रखा है और लग रहा है जैसे बारिश नहीं, आहा क्या बात है। लेकिन जो टेम्परेचर है अभी भी स्थिर है, लेकिन इसी स्थिर टेम्परेचर के साथ कुछ है जो नया है वो बताने वाली बात है आपको। और जैसे कि आप सभी को पता है आज 4th of August है, और मतलब ऐसी तारीख जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत ख़ास मानी जाने वाली तारीख है। आप सोच रहे होंगे आज की तारीख में ऐसा क्या है, आज क्यों इसको इतना स्पेशल ओहदा दिया जा रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि आज ना सिर्फ एक स्पेशल डे है, बल्कि आज हमें एक जागरूक करने वाली मैसेज देने वाला दिन भी है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हम लोगों ने स्तनपान को मोटिवेट करने वाला वीक पूरा मनाया, सप्ताह पूरा मनाया कि मदर फीड कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, उससे जुड़ी बातें सीखी जानी, और जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाए गए सरकार द्वारा। और इतना ही नहीं, स्तनपान के महत्व को बताते हुए कई जगह CSCs में, PSCs में कार्यक्रम चलाए गए माताओं को जागरूक करने के लिए। एक पोषण किट भी दी गई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फिलहाल मैं आज आपको बता दूँ कि आज अगस्त के महीने में साइंस से जुड़ी क्यों खास बात होती है, क्यों मतलब कहें तो इस पूरे के पूरे मंथ को स्पेशल माना जाता है, क्योंकि आज मतलब पूरे के पूरे मंथ में हेपेटाइटिस को लेके जागरूकता फैलाई जाती है, जो कि पिछले वीक भी मैंने आपको बताई थी। और ना सिर्फ बताई थी बल्कि आपको ये भी समझाया था कि आप सभी को आज के पूरे मतलब जो सोसाइटी है, बदलता माहौल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हेपेटाइटिस को लेके जागरूक होना है। मतलब कई लोगों को लगता है कि कैंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, लेकिन कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस है ये। मतलब हम लोगों ने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये समझने की ज़रूरत है। और आप लोग को बता दूँ कि हम लोग के लिए अगस्त का महीना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि एटॉमिक विस्फोट की जब बात होती है तो हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सबसे टॉप पे आ जाता है। और 6 अगस्त वही काली तारीख थी जब हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था 1945 में। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को लेके कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपको जानने भी चाहिए और समझने भी चाहिए। जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है क्या, या इसके पीछे मतलब क्या सोच रहती है लोगों की, क्या होता है इससे। लोग कहते हैं कि कई सालों तक प्रभाव दिखता है, जीन्स में प्रभाव आ जाता है। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि परमाणु विस्फोट, परमाणु आप जानते हैं कि एटम बोलते हैं किसी भी तरह का जो मैटर है उसमें सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली धमाका माना जाता है अभी तक, मतलब जितने भी एक्सप्लोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये होता है। बमों की तुलना में लाखों गुना ज़्यादा ये ऊर्जा छोड़ता है, और तेज़ रोशनी और भयंकर गर्मी के साथ ये कह सकते हैं कि रेडिएशंस भी निकालता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की और न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणु के नाभिक टूटते हैं, ठीक है, नाभिक जानते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियर फिजन क्या है, जिसमें हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के नाभिक आपस में जुड़ते हैं। फिजन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब टूटना, FISSION जहां आए मतलब कोई चीज टूट रही है, धमाका हो रहा है। और जब दो चीजें जुड़ेंगी तो फ्यूजन होगा, फ्यूज करेगा, मिलेगा, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई परमाणु की और परमाणु विस्फोट की। अब मैं आपको और इससे जुड़ी थोड़ी मतलब जो रोचक जानकारी कहें या कहें कि इससे मानव जाति को किस प्रकार नुकसान पहुंच सकता है या सब मतलब जो हमारे दिमाग में क्यूरोसिटी है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या क्या हो सकता है। पहले तो आप ये समझिए कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो इस हद तक जो कहते हैं ना कि तबाही मचाता है कि आप समझ भी नहीं सकते, आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलता, आपको भागने का मौका नहीं मिलता। और इसका प्रभाव एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, कुछ 100 सालों तक दिखने का मतलब दावा किया जाता है। ठीक है, और मैं सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि जो परमाणु विस्फोट है वो एक तरह से ब्लास्ट वेव होती है, जैसे कि इमारतों, सड़कों और अन्य संरचनाओं को भारी नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही साथ इसमें से ऊष्मा भी बहुत नहीं, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती है, प्रकाश बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा जलन होती है, लोगों के जो शरीर है वो पूरी तरह से झुलस जाते हैं। आयनाइजेशन रेडिएशन भी होता है इसमें, इस विस्फोट के दौरान स्वास्थ्य में आंतरिक प्रभाव मतलब बीमारियां फैलती हैं बहुत सारी। मतलब एक तरह से आपने बम धमाके में क्या देखा होगा, पैर हाथ टूट गया, चोट लग गई, बात मामला सही है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं लोगों में। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव फॉलआउट होता है। इसमें क्या होता है, रेडियोधर्मी जो कण वातावरण में, भूमि में और जल में फैल जाते हैं, जो कि पर्यावरण में हमेशा मौजूद रहेंगे, आपको मतलब कुछ सालों तक मौजूद रहेंगे, पानी, खाना, हवा से, ये सारी चीज़ों से आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे मतलब ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो आगे जानते हैं इसके बारे में कि कैसे आपको इसमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले समझिए कि जो नाभिकीय विखंडन है वो यूरेनियम प्लूटेनियम के टूटने से होता है, और इसमें से न्यूट्रॉन और गामा किरणें निकलती हैं और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तीव्र विस्फोटक तिरंगे होती हैं, इसमें अत्यधिक ताप होता है, फॉलआउट होता है। और मैं कहूँगी 6 अगस्त 1945 का दिन जो है वो हमारे इतिहास में एक ऐसा काला दिन बन के आया जिसने जापान को एक ऐसा झटका दिया, जैसे कहते हैं ना कि आपने बहुत मेहनत से कुछ बनाया और किसी ने आके सब कुछ जीरो पे लाके कर दिया हो, तो ये हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में 6 अगस्त को, नागासाकी में 9 अगस्त को। क्यों मतलब लोगों के अंदर इतनी ज्यादा मतलब क्यों मतलब कह सकते हैं दुश्मनी है या इतनी हिंसा क्यों है, मासूम बच्चों ने आखिर क्या किया था। अब इसके हानिकारक प्रभाव बता देती हूँ। विस्फोट में भारी संख्या में लोग मरते हैं, गंभीर चोटें आती हैं, रेडियोथर्मी विकिरणों के कारण गंभीर स्वास्थ्य बीमारियाँ होती हैं, प्रदूषण फैलता है, जल मिट्टी वायु में रेडियोथर्मी जो पदार्थ है वो जमा हो जाते हैं, फसलें और कृषि कई सालों तक नहीं उग पाती हैं, कह सके तो जमीन बंजर हो जाती है, वन्य जीवों पर भी असर होता है, पशु पक्षी ये सब गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, और कहने के लिए कहें तो बहुत सारी प्रजातियाँ गायब हो सकती हैं। ऐसा धमाका होता है न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन को हल्का मत समझिएगा। आर्थिक नुकसान तो होता ही, इमारतें, सड़कें सब तो मतलब बिल्कुल मिट्टी हो जाती हैं। और सामाजिक और मानसिक तनाव जो आज तक हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों के अंदर अभी भी बना हुआ है, वो डर, वो खौफ, वो काला दिन भले इतने सालों पहले हुआ था पर आज भी उनके अंदर वो डर साफ दिखाई देता है। दीर्घकालिक इसके प्रभाव हैं, तो इसलिए मैं मानव जाति को एक संदेश देना चाहूंगी कि देखिए आपकी नफरत कितनी भी बड़ी हो लेकिन किसी मासूम को नुकसान पहुंचाने का हक हमें कोई नहीं देता। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को आज की शाम के लिए सबसे पहले तो आमंत्रण है, और आपको मैं बता दूं कि प्लीज़ अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच को जागृत करिए और नेकी की राहों पे चलिए। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जो इंसिडेंट्स हैं ये हमारे इतिहास में या प्रेजेंट में या भविष्य में कभी ना हो, इसी मतलब मैसेज के साथ मैं आज इस प्रोग्राम में अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। मिलते हैं कुछ ही देर में आपके शो गुंडा मैसेज मसाला आरजीबी नवाला।

0: मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

नमस्कार गोंडा, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, कैसे हैं सभी। उठ जाओ भाई, एक चाय की प्याली हाथ में लेके बारिश को फील करो। एंड यस, अगर साथ में पकौड़े बन जाएं तो क्या बात हो जाए। अरे नहीं बनते हैं तो हम आलू गुजिया से भी काम चला लेने वाले हैं। और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, सबसे दिल का, सबसे दिल के पास, खास आपका शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला। कहते हैं हर मोहब्बत की एक कहानी होती है हर मोहब्बत की एक कहानी होती है, कुछ किताबों में लिखी जाती है तो कुछ आंखों में पढ़ी जाती है और कुछ दिलों की धड़कनों में हमेशा के लिए बस जाती है। और ऐसी ही कहानी है हमारी यानी कि 89.6 FM की और आपकी, जो आज के 3 साल पहले शुरू हुई और मुझे लगता है इसके पन्ने हर दिन बढ़ते जाएंगे। हाँ हाँ, हर दिन एक नया अध्याय जुड़ रहा है, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस जुड़ रहा है, किसी की आवाज़ में, किसी के अंदाज में, किसी की हंसी में तो किसी के मजाक में, किसी के कमेंट में, किसी की सलाह में, किसी के सजेशन के साथ एक कहानी में। हंसती फूलती ये हमारी कहानी, देखते हैं कहाँ तक जाती है। आरजे बीना कितने पन्ने लिख पाती हैं ये भी आपको बताऊंगी, पर आज की शाम उस एहसास के नाम, उन मुस्कुराहटों के नाम, उन वादों के नाम और उन लोगों के नाम जिन्होंने हमें सिखाया है सच्चा प्यार सिर्फ पाया नहीं जाता, निभाया भी जाता है। आज लव स्टोरी स्पेशल डे है तो मैं तो एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन आपसे सवाल ज़रूर करूंगी और सवालों के जवाब कॉल पे देने पड़ेंगे। जी हाँ, चैट रूम वाले आंसर्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे, तो आपको कॉल करके बताना होगा मेरे सवालों के जवाब, जो आपके प्यार से जुड़े हैं या किसी के प्यार से जुड़े हैं। आज की लव स्टोरी आपको हंसाएगी भी, भावुक भी करेगी और शायद अपने किसी खास की याद भी दिला देगी। तो अपने दिल की आवाज थोड़ा और तेज कर लीजिए, चाय की प्याली पास रख लीजिए और अगले कुछ पल बिताने के लिए आरजे बीना का हाथ थाम लीजिए। हाथ नहीं, आवाज, मेरी आवाज ही आपके दिलों में जाने के लिए काफी है। और शुरुआत करने के पहले एक गाना सुनाना चाहती हूँ। अक्सर मुझे से ये कह देते हैं आप लोग, कहानी सुनाने के पहले भी आप एक गाना अगर सुना दें तो कहानी और थोड़ी समझ में आएगी। तो उसी कहानी के लिए एक गाना भी हो जाए।

तो आज ये गाना आप लोग के साथ आरजे पीना की आवाज में शुरुआत करती हूँ आज की शाम की एक कहानी से। लेकिन कहानी के पहले एक गाना जो आरजे पीना की आवाज में, और उसके बाद फिर शुरू होगी कहानी आप लोग के लिए।

प्यार की खास बात होती है प्यार की खुशबू होती है। कई बार आपने महसूस की होगी एक अलग खुशबू। अगर आपको आपके प्यार की वो खुशबू याद है तो समझ लीजिए आपके दिल में वो प्यार अभी जिंदा है। तो उसी खुशबू से जुड़ा है ये गाना।

तो बिल्कुल खींचेंगे और उन मुस्कुराहटों में अपनी मुस्कुराहटों को भी जोड़ेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त कुछ मिनटों की इस म्यूजिकल ब्रेक के लिए, और अगर आप आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं तो चैट रूम में अपनी प्रेजेंस लगा दें और आंसर्स क्वेश्चन के देने के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार ने दस्तक तो दी होगी, लेकिन आपने दस्तक सुनी या नहीं सुनी ये तो मैं ही कन्फर्म करूँगी ना। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना हमारे साथ, जो आपके और मेरे प्यार के नाम।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
6: डिलीशियस
7: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
6: और क्या क्या है खास?
7: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
6: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

शाम के म्यूजिक का पर्दा हटाते हैं और कहानी की ओर रुख करते हैं। आज की कहानी है कुछ दिलकश, कुछ अंदाज से भरी और कुछ सच से जुड़ी। सो वेलकम बैक टू योर शो गुंडा मैसेज मसाला, आपके साथ लाइव है आपकी अपनी आरजुबीना आपके वाले शो में। एंड यस, आप सुन रहे हैं ज्ञान 39.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। सबसे पहले तो कहानी प्यार की है, तो क्यों ना थोड़ी प्यार की डेफिनेशन हो जाए। आज मैं आपको प्यार की डेफिनेशन तो दूंगी, लेकिन अपनी नहीं यार, मेरी क्या ही डेफिनेशन होगी, मैं क्या डेफिनेशन बनाऊंगी। मैं कोई साहित्य से जुड़ी इंसान नहीं हूँ, साहित्य से जुड़े लोग क्या परिभाषाएं देते हैं। तो प्यार की परिभाषा, बाय डिफरेंट लोग। तो आज शुरुआत करते हैं प्यार की परिभाषा की। सबसे पहले गालिब की बात करते हैं। गालिब का नाम सुनते ही मन में शायरी उमड़ गई होगी ना। हाँ, उमड़ी कि नहीं उमड़ी? उमड़ गई होगी। तो चलिए, कहते हैं गालिब की, प्रेम एक ऐसी आग है जो ना लगाए लगती है और ना बुझाए बुझती है। ये स्वाभाविक और बेखुदी की भावना है। किसकी भावना है? स्वाभाविक और बेखुदी की भावना है। कबीर कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर के लिए प्रेम ग्रंथ पढ़ना नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाकर एक दूसरे में लीन हो जाना है। अब बात करते हैं कुछ दार्शनिक और कुछ आध्यात्मिक गुरुओं की। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई पाने की चीज नहीं, बल्कि देने और स्वतंत्र करने की कला है। ये एक दशा है, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड है, जो कोई रिश्ता मात्र नहीं है। मतलब ये एक तरह की सिचुएशन है दिमाग की, ये ओशो कहते हैं। अब बात करते हैं सुकरात की और प्लूटो की। कहते हैं कि प्रेम भौतिक आकर्षण से शुरू होकर आत्मा के परम सत्य और सुंदरता की खोज तक जाता है, यानी कि आत्मा की खोज तक पहुंच के प्यार को कह सकते हैं मंजिल मिल जाती है। अब मैं कुछ साइकोलॉजिकल बातें भी कर लेती हूँ। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिन्होंने एक प्यार की ट्रायंगुलर थ्योरी दी, प्रेम तीन तत्वों का मिश्रण है। अरे वाह, क्या बात है, प्यार तीन तत्वों का मिश्रण है, ये तो मुझे आज पता चला। कहते हैं कि आत्मीयता, जिसे बोलते हैं इंटीमेसी, जुनून, जिसे कहते हैं पैशन, तीसरा प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट। इंटीमेसी, पैशन, कमिटमेंट, इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो बन जाता है प्यार। अब बात करते हैं कुछ मनोविज्ञानी कि क्या बोलते हैं, प्रेम दिमाग में होने वाला एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का, ये कहते हैं ना कि रिलीज हुआ एक फील है जो हम महसूस करते हैं, जो सुरक्षा और लगाव की भावना पैदा करता है। मतलब एक तरह से आपको सेफ फील कराता है और आपको किसी के लिए अटैचमेंट की फीलिंग दिलाता है। और आम इंसान के लिए प्यार अलग अलग रूप में है, दोस्त के रूप में, माँ बाप के रूप में, और प्रेमी प्रेमिका के रूप में। अब आप बताइए, आप कौन से वाले प्रेम की परिभाषा से ताल्लुक रखना चाहते हैं, ओशो वाली या किसी दार्शनिक वाली या साइकोलॉजी वाली? फिलहाल मेरे लिए तो प्यार ढाई अक्षर है। प्यार भावना है जिसको समझ के हम एक नाव पे बैठ के दूसरे एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकते हैं। आपकी भावनाओं को समझने के लिए मैं इंतजार करूंगी। फिलहाल के लिए आगे कहानी की ओर रुख करूंगी। प्यार की परिभाषा देने के बाद अब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है।

तो आज की कहानी आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे एक्टर को चुनने वाली हूं जो आपका फेवरेट है और मेरा भी। कहानी में कहते हैं कि इश्क अगर सच्चा हो तो रास्ते जो मुश्किल हैं वो आसान हो जाते हैं, और मंजिल कितनी भी दूर हो वो आपको आसानी से मिल जाती है। आज की कहानी उस इंसान की है जिसने ना सिर्फ फिल्में की बल्कि असली जिंदगी में भी प्यार को निभाने की मिसाल पेश की है। तो चलिए कहानी में पहले एंट्री मारते हैं, एक लड़का और एक लड़की दोनों के बीच प्यार कैसे शुरू होगा इस कहानी से पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की कहानी है आपकी फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी की। उन दोनों के बीच प्यार की कहानी कैसे शुरू हुई उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो चलिए चलते हैं साल दर साल पीछे और समझते हैं प्यार के उस अंदाज को। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, साल 1984, एक पार्टी और बहुत सी भीड़। अगर 1984 की बात करें तो शाहरुख खान का करियर शुरू हुआ था। जी हाँ, शाहरुख की जो कहानी है वो इसलिए भी खास है क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी उम्र में, जितनी उम्र शाहरुख की है और गौरी की शादी की है उतनी उम्र में तीन तीन चार चार शादियां कर ली हैं। इसलिए भी खान, मतलब शाहरुख खान की कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है। और अगर खान्स की बात करें, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो सैफ अली खान हो, तो इन चारों खान में अगर किसी की लव लाइफ अच्छी चल रही है तो शाहरुख खान की अच्छी चल रही है। तो इसीलिए शाहरुख खान की लव स्टोरी को समझना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब इन्होंने अपने प्यार का पर्दा उठा के किसी की ओर रुख किया था। दिल्ली की एक पार्टी में 19 साल के शाहरुख खान को 14 साल की गौरी छब्बर पहली नजर में भाग गई थी। और प्यार के लिए क्या कहते हैं, बात होना जरूरी नहीं है, नैनों से नैना मिलने जरूरी हैं, ठीक है, और पर्दा उठना जरूरी है। किसका? शर्म का पर्दा, एहसासों का पर्दा जो छुपा के रखा होता है। तो चलिए हम पर्दे में छुपे इस भेद को हटाते हैं, प्यार के पीछे की कहानी को आप तक पहुंचाते हैं। तो गाना है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा। तो चलिए हम भी इस प्यार की कहानी को फील करते हैं इस गाने के माध्यम से।

तो चलते हैं उस दौर की उस कहानी की ओर जो आज भी चर्चा में है और लोग मिसाल देते हैं कि प्यार हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। तो बता दें कि आज आपको बताने की बड़ी खुशी है मुझे कि मैं 1984 के दिल्ली के पंचशील क्लब में चल रही एक पार्टी का दृश्य आपके सामने मतलब दिखाने वाली हूँ, आपको महसूस कराने वाली हूँ, इमेजिन कराने वाली हूँ। 19 साल के शाहरुख खान कितने दुबले पतले से रहे होंगे, 14 साल की गौरी कितनी मतलब नाजुक सी रही होंगी, कितनी कोमल सी रही होंगी, कितनी स्वीट सी रही होंगी, वो भी बहुत सुंदर है। पार्टी में शाहरुख ने जैसे गौरी को देखा, वो किसी और लड़के के साथ डांस कर रहे थे और डांस करते करते उनकी नज़र गौरी पे पड़ी और गौरी से उन्हें प्यार हो गया। लेकिन उस रोज़ शर्मीले शाहरुख और गौरी से बात करने की जो हिम्मत थी वो दोनों ही उनके अंदर नहीं थी, क्योंकि शर्म ने अलग ही एक पर्दा बना रखा था। इसके बाद वो जिस पार्टी में भी गौरी के पहुँचने की उम्मीद जानते थे वहाँ वो पहुँच जाते थे। 25 अक्टूबर 1984 में तीसरी मुलाकात में शाहरुख ने गौरी के घर पर फ़ोन नंबर हासिल कर लिया था, मतलब उनके घर का नंबर कॉन्टैक्ट हासिल कर लिया था। अब शाहरुख को तो गौरी पसंद आ गई थी, उनसे फ़ोन पर बात करने का तरीका भी शाहरुख ने निकाल लिया था। वो अपने किसी दोस्त से गौरी के घर फ़ोन करवाते, गौरी के घर जो भी फ़ोन उठाता शाहरुख की दोस्त उसे अपना नाम शाहीन बताती। शाहीन कोडवर्ड था जिसे सुनकर गौरी समझ जाती कि फ़ोन शाहरुख का है। गौरी के घर किसी को शक भी नहीं हुआ कि शाहरुख और गौरी देर तक बातें करते हैं। गौरी और शाहरुख की मुलाकात पार्टियों में ही हो पाती थी, जहां गौरी की फीमेल फ्रेंड्स भी उनके साथ रहती थी। धीरे धीरे दोनों लॉन्ग ड्राइव पर भी जाने लगे। एक बायोग्राफी मैंने पढ़ी थी शाहरुख खान की, उसमें पता चला कि एक दिन शाहरुख खान ने गौरी को घर छोड़ा। जब वो गाड़ी से उतर रही थी तो उन्होंने मतलब शाहरुख ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद बिना जवाब दिए गौरी वहां से चली गई गाड़ी से उतर के। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि शाहरुख गौरी को लेकर पॉजिटिव बहुत थे, इतने पॉजिटिव कि वो अगर अपने बालों को खोल कर रखें तो शाहरुख उनसे लड़ने लगते थे। एक मैगजीन में छपे अपने लेख में शाहरुख ने कहा था कि उस समय गौरी को लेकर इनकी दीवानगी इतनी हाई थी कि अगर वो स्विम सूट पहनती तो उसे बाल खुले रखती तो वो उनसे लड़ने लगते थे। कहते थे कि तुम बाल खोलती हो तो बेहद खूबसूरत लगती हो, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लड़के तुम्हें देखें। ओ माय गॉड, इतना पॉजिटिव कोई हो सकता है? तो ये थोड़ा सा मतलब इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती थी इनके अंदर, क्योंकि उस समय प्यार भी नया था और मैच्योरिटी भी नहीं थी। हर लड़के के अंदर ऐसी फीलिंग आएगी। शाहरुख गौरी को मनाने के लिए अक्सर शाहरुख से गुस्सा होके गौरी बात नहीं करती थी, तो शाहरुख मनाने के लिए मुंबई पहुँच जाते थे और पता नहीं कब गौरी मुंबई में कहाँ उनसे मुंबई की गलियों की खाक छनवाती थी, मतलब ढूंढना पड़ता था उन्हें गौरी को वहाँ पे। बहुत ढूंढने के बाद एक दिन शाहरुख ने गौरी को मुंबई में आक्सा बीच पे ढूंढ निकाला। शाहरुख को देख गौरी रोने लगी और कहते ना प्यार वापस से जिंदा हो गया। शाहरुख और गौरी अपने प्यार को शादी में बदलने के लिए तैयार थे, मगर दोनों के धर्म अलग होने की वजह से इनके घर वालों ने कड़ी आपत्ति जताई। शाहरुख ने गौरी के परिवार वालों को मनाने के लिए खूब पापड़ बेले, उन्हें मनाने के लिए आखिरकार वो कामयाब भी हो गए। गौरी के माता पिता समझ चुके थे कि गौरी और शाहरुख अब किसी भी तरह की बात नहीं सुनेंगे और मानेंगे भी नहीं, इसलिए आखिरकार दोनों की शादी कर दी और हाँ कह दिया, मतलब शादी के लिए हाँ कह दिया। शाहरुख और गौरी का निकाह भी हुआ जिसमें गौरी का नाम आयशा रखा गया। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 में हिंदी रीति रिवाजों से इनका विवाह हुआ। शादी के संगीत में गौरी और शाहरुख और गौरी ने जमकर डांस भी किया और
दो बार शादी ज़रूर हुई, लेकिन दोनों बार जो सोच थी वो यही थी कि इस रिश्ते को निभाया जाए, और ऐसा निभाया गया कि आज तक इस रिश्ते में प्यार, सम्मान और कहते ना कि एक दूसरे का साथ निभाने की जो सोच है वो बरकरार है। बिल्कुल फिल्मी प्यार था उनका। उनकी लव स्टोरी जो भी सुनेगा वो कहेगा अरे यार कोई इतना कैसे दीवाना हो सकता है। इतने साल हो गए शादी को, दोनों के तीन बच्चे हैं, सहाना खान, आर्यन खान, अबराम खान। तो मुझे लगता है कि प्यार तीनों के बीच में बरकरार रहा, तीनों एक दूसरे पे भरोसा करते रहे, मतलब दोनों भरोसा करते रहे, परिवार उसमें जुड़ा, उन्होंने भी भरोसा किया, तब जाके ये शादी इतनी सक्सेसफुल रही। और बॉलीवुड की शादियों में, सक्सेसफुल शादियों में ये नाम है। बहुत सारी ऐसी शादियां जिनमें शादी तो बरकरार है लेकिन अभी भी बीच में एक जो दरार है वो बनी हुई है, और वो भी पुराने एक्टर्स की बात करूँगी, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, चाहे वो धर्मेंद्र हो हमारे स्वर्गीय या हमारे अमिताभ बच्चन हो। दीवार दिखती है रिश्तों में, पर इस रिश्ते में मुझे कभी दीवार नहीं दिखी। तो एक आइडल कपल के लिए शाहरुख खान को हम लोग याद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गाना शाहरुख और गौरी के लिए। आप बताइए शाहरुख और गौरी खान के प्यार को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या एक बॉलीवुड की सक्सेस लव स्टोरी इसको मान सकते हैं, या हम ये कहें कि बाकियों की तरह इन्होंने मॉडर्न जमाने को फॉलो नहीं किया या फिर अपने प्यार पे भरोसा बना के रखा? तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना हमारे शाहरुख और गौरी के लिए।

0: दिल दीवाना है या नहीं है, लेकिन हाँ प्यार तो जरूर करना है। और हमारे साथ आशु जी भी हैं। तो सवालों की अगर बात करें तो मेरे पास आज आपके लिए कुछ सवाल भी हैं। अगर आप जवाब देने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल हाथ उठाइए, अगर नहीं देने के लिए तैयार है तब भी उठाइए, क्योंकि आंसर देना तो मैंडेटरी होता है ना किसी भी एग्जाम में। नहीं आता है तो ये आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास आपके लिए क्विज है और उस क्विज के लिए अगर आप तैयार हैं तो चलिए देखते हैं जवाब क्या सुनने को मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि प्यार का इंतजार करने के लिए हेलो जी, तो मैं कह रही थी कि प्यार का इजहार करने के लिए वो कौन सा मशहूर रंग है जिसे शुभ माना जाता है? चलिए बताइए जल्दी से। तो प्यार के इजहार के लिए शुभ रंग कौन सा माना जाता है? कॉल करके बताना है, ऐसे नहीं बताने का है। यू हैव टू कॉल एंड देन स्पीक। और अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको मैं सुना दूंगी एक बढ़िया सा गाना जो आपके प्यार को डेडिकेटेड होगा। है ना मज़ेदार? हाँ, वैसे आंसर मुझे भी आता है, लेकिन चलिए मेरे डेडिकेटेड गाने तो आप लोग दिन भर सुनते रहते हैं। और अभी आप लोग की बारी है, तो बारी किसी की मैं ले नहीं सकती। चलिए देखते कौन आंसर दे रहा है। ये दो, यस यस, ओहो ओहो हो हो,
1: मुझको भी
0: आहा
1: कर डाला
0: दीवाना। क्या बात है, दिल की खता भी है क्या, कैसे कहूं भी मैं क्या, क्या बात है। कवि का अभिप्राय बिल्कुल प्यार से है। प्यार का इजहार करने के लिए कौन सा शुभ रंग हमारे भारत में माना जाता है? जल्दी सोच के बताइए कॉल करके। 6793 31 429 नंबर आप ही का है।

वैसे आंसर चैट रूम में आया है तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं। आशीष जी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, लाल रंग वाला या फिर कोई और वाला?

सूफियाना है या नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास सवाल दूसरा दीवाना ज़रूर है। तो चलिए आप बताइए कि आपके लिए अगला जवाब देने का टाइम है या नहीं। तो ये बताइए प्यार का रिश्ता अगर मजबूत रखना हो, मतलब नींव अगर मजबूत रखनी हो, तो नींव किसकी बनी होनी चाहिए? आप सोच के बताइए, प्यार का रिश्ता बनाना है, नींव रखनी है आपको, तो नींव किसकी बनानी चाहिए? सोच के बताइए। और तब तक के लिए ये गाना सुनिए हमारी प्रिय आशु जी के लिए।

वैलेंटाइन डे किस महीने में मनाया जाता है आपको हिंदी कैलेंडर के अनुसार बताना है। जी हाँ, कोई भी ऐसा इंग्लिश वाला नाम नहीं बताएगा, हिंदी माह के अनुसार किस माह में वैलेंटाइन।

0: वैसे हमारे आंसर देने वालों का भी जवाब नहीं, क्या कहने क्या कहने। आप लोग बहुत सही आंसर देते हैं। और देखिए आंसर देने में हमारे 14 फरवरी को मनाया जाता है, हिंदी में पूछा था मैंने और हमारे लिसनर्स ने आंसर दिया है। एक कॉल भी आया है, चलिए देखते हैं किसका है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: अमित कुमार।
0: अमित, अमित बताइए वैलेंटाइन डे किस महीने में मनाया जाता है? हिंदी वाला बताइए।
1: वैसे तो फागुन।
0: फागुन, माघ फागुन दोनों रहता है, ध्यान दीजिएगा। फरवरी महीना दोनों का कंबाइन है, माघ और फागुन दोनों इसी में लगता है।
1: हाँ हाँ, तो मैं लेकिन
0: माघ खत्म फागुन शुरू
1: ज्यादा फागुन में आता है।
0: हाँ चलिए, अब ये बताइए अमित, गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: नो कंडोले मेरा मंडोले, नया वाला।
0: ओ नया वाला, ओके
1: जी।
0: किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: नहीं नहीं, किसी को नहीं।
0: चलिए ठीक है, थैंक यू। तो भाई अमित ने आंसर दे दिया है बहुत अच्छा सा, और मुझे लगता है कि ऐसे आंसर्स का इंतज़ार रहता है। तो चलिए नया वाला सुनते हैं। दंडोले मेरा मंडोले, दंडोले मेरा मंडोले। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ करीना कपूर एंड तुषार कपूर, नए वाले अंदाज।

बहुत दिनों बाद वापसी है सुमित्रा जी की। कैसी हैं सुमित्रा जी? शुभ संध्या और भाई सभी का स्वागत है। और जैसा कि लव स्टोरी वाली इवनिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही और जवाब भी एक से एक खतरनाक रहे। हाँ भाई, माग भी होता है लेकिन आपका गाना प्ले हो चुका है इसीलिए आपके आंसर को आंसर सही है। आपका भी नागेश्वर माघ भी है और फागुन भी है, तो दोनों को कंसीडर करेंगे। अगले सवाल के लिए अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल रेडी रहिए।

ये बताइए, दिल तो पागल है, इस फिल्म में फेमस एक्टर कौन है, जरा से बताइए, और उनकी वाइफ का नाम भी।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: परसों मिलते हैं।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आप।
8: तो भाई आज की शाम बड़ी सुरीली रही। सुरीली रहने के साथ साथ भाई क्या क्या नहीं हम लोगों ने सीखा एक दूसरे के साथ। फिलहाल आंसर्स भी आपके बड़े बिंदास थे। फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। जी हाँ, इसमें एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, अक्षय कुमार, इतने लोग थे। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि शाहरुख की पत्नी का नाम तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लीड रोल में वही थे गौरी खान, और उनकी लव स्टोरी आज हम लोगों ने डिस्कस की थी। और इसी के साथ मैं चलते चलते अब आप लोगों से विदाई तो लूँगी, लेकिन एक गाना भी प्ले करूँगी। और गाने के साथ आप लोगों को बता दूँ कि आज की शाम बड़ी सुरीली रही, बहुत कुछ सीखा भी आप लोगों ने, प्यार की परिभाषा सीखी। और सावन की बात है तो एक गाना भी प्ले करना चाहिए फाल्गुनी पाठक का। तो सुनिए, इन्जॉय करिए, सावन में मोरनी बन के हम लोग नाचना चाहते हैं। और राज बिना को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे लेकिन अंताक्षरी के साथ। बी रेडी। आप कुछ अच्छा और दीवाना करने वाला सुन रहे हैं तो डेफिनेटली गोंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला सुन रहे हैं अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM पर। यह है गोंडा शहर की धड़कन।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

एंड वेलकम इन योर शो परमाईशी वीडियो जस्ट सिंपल इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सब हाउस यो योहनी सिंह।

मैं सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। तो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात और जज्बात, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्यों, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो क्या हाल चाल है पब्लिक, म्यूजिक तो बहुत ही बढ़िया था, काहे नहीं रहेगा यो यो हनी सिंह का जो था। सो देखेंगे आप लोग की फरमाइशी की गठरी में क्या है, लेकिन उसके पहले वेलकम इन योर शो महेंद्र राजस्थान से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, रानी गुप्ता राजू सीतापुर से और उषा कश्यप गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, परी तिवारी बालपुर गोंडा से, श्याम नाम की पगली मींस सुमित्रा जी, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, रितेश साहू शायद गोंडा से, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी आ चुके हैं। वाह वाह, अब क्या बात है, अब तो धोनी भी आ चुके हैं। अरे यार, आपके आपके रियल नाम भी शायद अच्छे अच्छे नाम होंगे ना, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, काहे को क्रिकेटर्स का नाम यूज करने का, हाँ अपना नाम यूज करो ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, नागेश्वर धाकड़ स्वागत है आपका, और शशि सिंह जी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निबजी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। तो पहली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से, और महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना जाने मन तू खूब है। सो एंजॉय करते हैं जानी दुश्मन का ये सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी और थोड़ी बोरिंग बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन।

फिदा तुझ पे किया है, तू मेरा महबूब है और जाने मन तू खूब है। हमने एंजॉय किया है सोनू निगम सुनिधि चौहान की आवाज में जानी दुश्मन का ये नगमा हमारे महेंद्र की फरमाइश पे, जो कि है राजस्थान से और उन्होंने चंद शब्द भी लिखे हैं, उसको काहे नहीं पढ़ूंगी काहे नहीं पढ़ूंगी काहे नहीं पढ़ूंगी आए हाय। सो महेंद्र का कहना है राजस्थान से, नाम है आपका सिंपल पर अंदाज बड़ा खास है, आपकी बातों में घुली एक मीठी सी मिठास है, जब भी सुनते हैं आपको रेडियो पर मैम लगता है जैसे हर पल में सुकून का एहसास है। आय हाय शुक्रिया शुक्रिया। एक और है जो मांगा था हमने वो खूबसूरत नगमा सुना दिया, रेडियो ऑन करते ही शाम का माहौल बना दिया। थैंक यू सो मच आरजे सिंपल मैम फरमाइश पूरी करने के लिए, आपकी सादगी ने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। ओहो, और आपकी इन बातों ने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो धर्मेंद्र मोहन जी आवाज विकास गोंडा से और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी नमस्ते। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में आशु मिश्रा जी के लखनऊ से और उनको सुनना है गाना बरसात में जब आएगा सावन का महीना। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा हमारी प्यारी सी स्वीट सी आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना। कैसे बनते हैं साजन अंगूठी के नगीने, मुझे भी बता दीजिए। जब मेरे कभी जिंदगी में साजन बाय चांस हुए, अभी तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन बाय चांस हुए तो मैं उनको जब दिल चाहेगा अंगूठी का नगीना बना लूंगी, ताकि वो ज्यादा बकबक ना करे। कितना बढ़िया रहेगा ना। सामने इंजॉय किया है ये नगमा आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों रानी गुप्ता की। रानी गुप्ता की फरमाइशी गीत को इंजॉय करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिस्नर है नागेश्वर धाकड़, और उनका कहना है कि हर सिंपल सी लड़की दिखने वाली सिंपल नहीं होती, हर सिंपल सी लड़की दिखने वाले सिंपल नहीं होती, पानी में घुलने वाली हर मीठी चीज चीनी नहीं होती, हर बात दिल को सुकून दे ऐसी बात भी बार बार नहीं होती। अच्छा जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मेरी बातों में मिठास नहीं है, सो मेरी बातों में क्या कड़वाहट है? अगर हाँ तो आप एकदम से परफेक्ट हैं, आप एकदम से करेक्ट हैं, आप एकदम से राइट हैं, आप एकदम से सही हैं। काहे कि मेरे घर वालों को भी यही लगता है कि मैं बहुत कड़वी हूँ, कड़वी के साथ में अगर प्लस कुछ किया जाए तो मैं बहुत तीखी हूँ, तो मिठास मेरे अंदर नो दोस्तों, मेरी बातों से भी नहीं लगता होगा, मेरी पिच से भी नहीं लगता होगा, मेरी टोन से भी नहीं लगता होगा, कहीं से नहीं लगता होगा, है ना। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है रानी गुप्ता की। सो एंजॉय करते हैं इश्क है तुम्ही से सोनिया। सो ये वाला गाना है दोस्तों उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

सो ये फरमाइश थी रानी गुप्ता की और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया था महेंद्र को जो कि है राजस्थान से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से। उनको सुनना है गाना सावन का महीना आया है। सो एंजॉय करते हैं ये 90s का सदाबहार नगमा सावन स्पेशल प्लेलिस्ट से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

How romantic. आई मिलन की रात का ये नगमा मोहम्मद अजीज और अनुराधा जी की आवाज में हमने इंजॉय किया है। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, क्योंकि ये सिलसिला तो ऐसे चलता रहेगा। ये महफिल ही इसीलिए एकत्रित होती है कि जज्बातों का पिटारा खुलता रहे और फरमाइशी गीतों का भी पिटारा चलता रहे। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। उषा कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना सारा सारा दिन काम करोगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निगाहें मूवी का कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में हमारी उषा कश्यप जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

और प्यार कब करोगे। निगाहें का ये गाना कविता जी की आवाज में हमने इंजॉय किया है उषा कश्यप जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश गीत की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की। जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना सोनी मेरी सोनी। सो एंजॉय करते हैं सोनी माहिवाल का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशा जी और अनवर की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सुरेंद्र यादव जी गोंडा से, गौरा चौकी से, और तबीश खान लखनऊ से, मोहम्मद मुशीर जी बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड।

मुझे माफ करे और मेरा इंसाफ करे। हमने एंजॉय किया है आशा जी की और अनवर जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों दोस्तों दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अगली फरमाइश हमारे पास में है किशोर कुमार जी के नगमे की। जी हाँ दोस्तों, मालवी नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना ना जाइयो। सो एंजॉय करते हैं ना जाइयो। मुझे तो लगा था ये लिखा हुआ है ना जियो। सो मुझे लगा कोई सैड सॉन्ग होगा, अभी मैं दर्द की दुनिया में जाऊंगी, थोड़ा सा दर्द से भी रूबरू होके फिर से वापस आऊंगी। लेकिन आई डोंट नो ये कौन सा इमोशन वाला गाना है। सो इसमें लिखा है प्यार भरे नगमे। सो एंजॉय करते हैं ये किशोर कुमार जी की आवाज में ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, प्यार भरा नगमा, हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, जिंदगी में जब तक ड्रामा ना हो तब तक कुछ मजा

0: बाय। किशोर कुमार और लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है शहजादा का ये नगमा, ना जाइयो छोड़ के। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ और दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अगला गाना है ओह वाह वाला। जी हाँ दोस्तों, एंजॉय करते हैं एसआर के और काजोल का कुमार सानू लता मंगेशकर जी की आवाज में सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा, सुपर डुपर डुपर हिट पिक्चर DDLJ मूवी का गाना हो गया है तुझको नो नो नो, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, कहाँ ही जाएं हम, ऑब्वियसली तेरी बाहों में मर जाएं हम। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा सदाबहार नगमा, हम सबके दिलों में बसने वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: प्यार होता है,
0: ये फरमाइश है परी तिवारी की बालपुर गोंडा से। हाउ स्वीट परी, थैंक यू सो मच।

0: तेरी बाहों में मर जाए हम। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा लवली लवली लवली सॉन्ग परी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से। और धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना, आज उनसे मिलना है हमें। सो प्रेम रतन धन पायो का ये सुपर डुपर हिट नगमा एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। वैसे किससे मिलना है आपको? किससे?
1: अरे भागन लाग्यो रे वैरागी मन।
0: अब दोस्तों इस गाने को सुन के और कुछ हो जाए ना हो, लालच जरूर आएगा, क्योंकि स्टूडियो में बैठ के आप कुछ खा नहीं सकते हो और भी सब कुछ खाने पीने के आइटम का ये नाम ले।

प्रेम रतन धन पायो का बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश हमारे पास में है श्याम नाम की पगली मींस सुमित्रा जी की, और उनको सुनना है सावन स्पेशल प्लेलिस्ट से डिवोशनल गाना भोले छोड़ दो ना भंगिया हमारे लिए। ओ माय गॉड, सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा डिवोशनल सॉन्ग श्याम नाम की पगली की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले मेरे एक पगले से लिसनर हैं, उनका कहना है, लेकिन नहीं नहीं नहीं उनका कहना है कि स्टूडियो में बैठकर चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, तो फिर मिठाई गुजिया क्यों नहीं खा सकते हैं? स्टूडियो में बैठ के सब खा सकते हैं, लेकिन ऑन एयर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ऑन एयर आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। और अभी हमने जिनका फरमाइशी गीत इंजॉय किया है धर्मेश त्रिपाठी का, उनका कहना है कि आज उनसे मिलना है हमें, जैसे खूबसूरत गीत को सुनाकर दिल की हर धड़कन को एहसासों से सजा दिया है। आरजे सिंपल आपकी आवाज ने इस पल को और भी हसीन बना दिया। दिल से शुक्रिया, आपने यादों का सफर फिर से जगा दिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और अब एंजॉय कर लेते हैं ये वाली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड। श्याम नाम की पगली मीन्स सुमित्रा जी की फरमाइश जो कि है गोंडा।

0: भोले छोड़ दो ना भंगिया हमारे लिए, हमने एंजॉय किया है। ये वाला नगमा सुमित्रा जी की फरमाइश पे जो कि है गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबीहा की गोंडा से। सबीहा को सुनना है गोंडा से गाना बादशाह वाला।
1: गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो गाना

सबने एंजॉय किए है, सबिया की फरमाइश पढ़ते हमारे आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की, आवास विकास गोंडा से। और धर्मेंद्र मोहन को आवास विकास गोंडा से सुनना है गाना आप जैसा यार मुझे चाहिए। सो एंजॉय करते हैं तुमसे अच्छा कौन है मूवी का ये वाला नगमा धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

Will you dance with me?

ये फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगली फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। तो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो जिन लोगों ने अभी तक पेट पूजा नहीं की है, फटाफट से पेट पूजा कर लेना, फिर उसके बाद में सीधे 9 बजे एकत्रित होते हैं हमारी फरमाइशी की महफिल में और करेंगे ढेर सारा धूम धड़ाका, क्योंकि आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन होना चाहिए सब कुछ मंगल मंगल और एकदम रैपचेक। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश तो है ओल्ड इज गोल्ड नगमे की, लेकिन आवाज है मोहम्मद रफी और आशा जी की। एंजॉय करते हैं नया दौर का ये नगमा, उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले, और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले। सोनिया तिवारी की है ये फरमाइश। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं सीधे 9 बजे।

0: संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
4: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
6: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बता दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

अकल का ताला, लेकिन आपको पता ही क्या दोस्तों, इसीलिए तो आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल का अकल का ताला खुला नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने बनारस का पान नहीं खाया है। सो मैं सोच रही हूँ कि मुझे काशी जाना चाहिए, काशी जाके खाई के पान बनारस वाला खुल जाए, बंद अकल का ताला। ऐसा होगा शायद काशी जी मुझसे मोहित हो जाए और मोहित होने के बाद में मेरे बंद अकल का ताला खुल जाए, और फिर तो उसके बाद में बल्ले बल्ले मजे ही मजे, पैसा ही पैसा एवरीवेयर। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो दोस्तों, ये फरमाइश थी रितेश साहू की, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितना पास आ गए, ओ माय गॉड। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा कुमार सानू की आवाज में हाउ रोमांटिक लव डब वाला गाना, लेकिन थोड़ा सा दर्द वाला भी गाना। Stay tuned everyone, ये फरमाइश है कार्तिक कश्यप की। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुस्तफा जी सऊदी से।

गॉड, कितने गम हमको तड़पा गए। हम भी एक खुशी की तलाश में किसी के पास जाते हैं और अपना सत्यानाश करके चले आते हैं। वैसे एक्सपीरियंस मजेदार होता है, जिंदगी में आए हैं तो एडवेंचर करना ही करना चाहिए ना दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निशा की पटेल नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना होठों पे बस। सो एंजॉय करते हैं ये दिल लगी का गाना कुमार सानू लता जी की आवाज में। सो एक बार फिर से एंजॉय करेंगे नो डाउट दर्द भरा नगमा, क्योंकि फरमाइश है निशा की, इतना दर्द कहाँ से लाती हैं आप। हाँ, सो एंजॉय कर लेते हैं ये वाली फरमाइश। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो डॉक्टर अभिमन्यु द्विवेदी, आपका स्वागत है आपके अपने फरमाइशी की महफिल में। राम राम एंड शुभ संध्या।

अच्छा ये बताइए, आई लव यू एंड यू लव मी, आई मिस यू, यू मिस मी, कहने से क्या सच में प्यार बढ़ जाता है? क्या सच में मिस करना बढ़ जाता है? क्या सच में प्यार जाहिर हो पाता है? मुझे तो नहीं पता। मुझसे अगर कोई कहे कि आई लव यू, तो मैं तो उससे कहूँ कि भैया अगर आपने, या फिर बहना अगर आपने हिंदी में बोला होता कि बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे यार, तुम्हें तो दिल के बहुत करीब है, तो चल मैं एक बार को समझ जाती कि हाँ चल मैं तेरे दिल के करीब होंगी यार। लेकिन अगर तूने बोल दिया आई लव यू, तो मैं बोलूँगी आई हेट यू टू ब्रो, बाय। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और बहुत दिनों बाद मुमताज अंसारी जी को सुनना है। दर्द भरा नगमा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा और कुछ भूल गए और बहुत कुछ याद रहा। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही दर्द भरा नगमा, हम सब के दिल के करीब रहने वाला नगमा, क्योंकि हम सबका दिल कभी ना कभी किसी

भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, और अपनी वफा के गुल खिल ना पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल ना पाए, दर्द दिल हम कैसे सहे, दूर भी हम कैसे रहे, चाहत का जहां आबाद रहा, और तेरे दर्द से दिल क्या रहा आबाद रहा। सबने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही प्यारा सा नगमा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में दोस्तों नागेश्वर धाकड़ की। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, और मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, ऐसे कैसे चुन लूँ। हाँ आपने चुना है तो पहले आपने फर्स्ट लेवल वाला इंटरव्यू, फिर सेकंड लेवल वाला रिटर्न इंटरव्यू, फिर उसके बाद में अंदाज़ा लगाने वाला, एक्सपेक्टेशन लगाने वाला इंटरव्यू, फिर सारे इंटरव्यूज़ लिए होंगे, सारे राउंड क्लियर किए होंगे, तब आपने चुना होगा। तो सामने वाली ऐसे कैसे चुन लेगी कि आपने सिर्फ चुन लिया वो भी चुन ले, उसको भी तो यही सब चेक करना पड़ेगा। पहले हर एक लेवल पे पास होना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिंदगी में उसी कुर्सी पे बैठना चाहिए जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आपने कुर्सी ले ली है और वो कंफर्टेबल नहीं है तो उस कुर्सी को चेंज कर दो, जब तक आपको कंफर्टेबल कुर्सी ना मिले। एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश, स्टे ट्यून्ड।

साहिबा मैं नाचूंगी गाऊंगी, उड़ाल देने गाने प्यार कर दे प्यार का शगुन। सुन साहिबा सुन, कितनी प्यारी प्यारी शब्द है, कितनी प्यारी प्यारी बात है, कितनी कितनी बढ़िया एहसास है प्यार की जज्बात का ना, लेकिन लोग कदर नहीं करते दोस्तों। देखो कितना निस्वार्थ प्रेम होता है, और लोग सच में इस प्रेम का कचूमर बना के, इस एहसास को चूर चूर करके कैसे कैसे खुश रहते हैं ना दोस्तों। सो हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। मोहम्मद मुशीब जी को सुनना है गाना, तुम याद ना आया करो, याद आने के पहले आ जाया करो। सो फाइनली आप लोग दोस्तों सक्सेसफुल हो चुके हैं एकदम से आपकी अर्जी सिंपल नॉट से सिंपल के मूड को चेंज करने में, क्योंकि मैं अभी तक थोड़ा सा भी ऐसा सैड वाला गाना सुनना नहीं चाह रही थी। अब वाइब ऐसी आ रही है कि अभी आपको पता है इतने दर्द भरे गाने मैं सुनने वाली हूँ यहाँ से अपने घर जाते टाइम पे, कि क्या ही बताऊँ, जो सुनेगा वो रो देगा भाई, इतना दर्द। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: बार इतना जज्बात के साथ में खेल के गया है, वो दोबारा आके क्या आपके जज्बातों को माला में पिरोएगा? नो ब्रो नो, वो तो और आपको तोड़ के जाएगा और मरोड़ के जाएगा, ऐसा दिल टूटेगा कि दोबारा जुड़ेगा ही नहीं। आई सो फाइनली एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में अनिल शास्त्री जी की, गोरखपुर से। उनको सुनना है गाना, आने से उसके आए बहार और जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, आए हाय। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर जो की है गोरखपुर से, और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और गुनगुनाते रहना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। So guys, have a very very very great night. Take care of yourself and your family as well. Someone special का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल फिर से।
1: डाउनलोड कर
0: ऐसे मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहूंगी कि जिंदगी में दोस्तों मूव ऑन करना सीखना चाहिए, मूव ऑन करना आना चाहिए। ये जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, जिंदगी में लोग आएंगे जाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ अगर दिल दुखे तो दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए, जिंदगी भर के लिए उस चीज को लेके नहीं बैठ जाना चाहिए, है ना? अगर आपने आपको किसी ने एक महीने खुश रखा है, आप उसके दुख में 2 महीने रहो, 3 महीने, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। बाय बाय, अलविदा दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से। वैसे मैं बहुत छोटी हूँ, मेरा तजुर्बा भी बहुत छोटा है, लेकिन

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गैनस्ट्रीट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास जी। और ये वो वक्त होता है, ये वो लम्हा होता है, जब लगभग 9:30 के आसपास का जो वक्त होता है, उसमें हमको कुछ सुकून के पल चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमारे दिल को छू जाए, कुछ एहसास, कुछ जज्बात, कुछ रिश्ते, कुछ संबंध, कुछ खामोशियां, कुछ गलतियां, कुछ यादें और कुछ बातें। इन्हीं सब को लेकर उपस्थित होता हूं मैं आप सभी के समक्ष, आप ही का कार्यक्रम बहारे गजल लेकर। और आज के सफर की शुरुआत यहां से करते हैं कि करवट बदल बदल कर हर एक रात काट दी, करवट बदल बदल कर हर एक रात काट दी, कच्चे मकान में अब के भी बरसात काट दी, वो सिर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, वो सिर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, अफसोस ये है उसने मेरी बात काट दी। हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी, जब भी हमें चराग मयस्सर न हो सका, मयस्सर मतलब उपलब्ध, जब भी हमें चराग मयस्सर न आ सका, सूरज का जिक्र करते हुए रात काट दी। शायद यहां पर कहना चाहता है कि जब जिंदगी में उलझने बढ़ी, दुश्वारियां बढ़ी, तो ये सोच करके कि आने वाला कल अच्छा हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ हमने आने वाले पल को बीत जाने दिया। दिल भी लहूलुहान है, आंखें भी हैं उदास, दिल भी लहूलुहान है, आंखें भी हैं उदास, शायद अना ने लोगों की जज्बात काट दी। अना मतलब अभिमान, गुरूर। मुझको लगता है कि ये शायद अगर इस दुनिया से निकल जाए तो ये धरती सबसे खूबसूरत हो सकती है, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि उस खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना शायद हमारे और आपके लिए थोड़ा सा लगता होगा कि ये कुछ संभव कम सा है,

लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर हम चाहें और अना बीच में ना आए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। किसके बारे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये सारी बातें लौट कर करेंगे आपसे। फिलहाल आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद ख़ास। फिलहाल मखमली आवाज़ की ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए। और मखमली आवाज़ आप जानते हैं कि हम किन्हें कहते हैं, जी हाँ, हम सबके बहुत चहेते, हम सबके बहुत प्यारे जगजीत सिंह साहब। फिल्म का नाम शरफरोश। पर्दे पर हैं नासिरुद्दीन शाह के साथ आमिर खान, सोनाली बेंद्रे भी की भी झलकियाँ आती हैं, लेकिन गज़ल जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में क्या गुफ्तगू करती है, आइए आपको सुनाते हैं।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

जी हाँ, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है। और वास्तव में कहा भी जाता है कि कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। मतलब वो इस दुनिया के लिए फरिश्ता सा बन जाता है। आज जिनकी हम बात करेंगे वो हमारे उत्तर प्रदेश की एक प्यारी सी मिट्टी है, और उस मिट्टी का नाम है, उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम है कानपुर। और कानपुर से आते हैं जौहर कानपुरी साहब। जिंदगी के कई सारे मौजूआत को छूती हुई उनकी गजलें, उनके नगमे, उनकी नज़में हमारे दिल को कहीं ना कहीं छू कर निकलती हैं। उन्होंने कहा कि ज़बान मीठी है, मेरा बयान अच्छा है। ज़ुबान मीठी है, मेरा बयान अच्छा है, बस इसलिए ही मेरा ख़ानदान अच्छा है। छतें टपकती हैं लेकिन खुलूस तो है यहाँ। खुलूस मैंने मोहब्बत। छतें टपकती हैं लेकिन खुलूस तो है यहाँ। अरे तेरे महल से ये कच्चा मकान अच्छा है। आप बहुत ऊंची बिल्डिंग बनवा लें साहब, लेकिन अगर आपके घर में रिश्ते नहीं हैं, मोहब्बत नहीं है, एहसास नहीं है, तो शायद उस महल से वो कुटिया अच्छी जिसकी छत टपकती है। ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता। गीबत का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं बैक बाइटिंग, हिंदी में कहते हैं चुगली करना, मतलब इधर की बात उधर करना। ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता। ज़बान वालों से ये बेज़बान अच्छा है। हमने अभी तक सुनना था कि मतलब ईश्वर के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वो मनुष्य है, लेकिन कवि ने यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि एक काम जानवर है जो नहीं करता और जो नहीं किया जाना चाहिए, वह है किसी की पीठ पीछे बुराई। ये जानवर नहीं करते, ये इंसान करते हैं। ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता, ज़बान वालों से ये बेजुबान अच्छा है। मोहब्बतों से भरे एक दिल में रहते हैं, मोहब्बतों से भरे एक दिल में रहते हैं, जमाने भर से हमारा मकान अच्छा है। अभी है बाकी बुजुर्गों का एहतराम यहाँ। एहतराम मतलब इज्जत। हमारे यहाँ भी बुजुर्गों का एहतराम, उनका सम्मान है। अभी है बाकी बुजुर्गों का एहतराम यहाँ, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। कहाँ से चले जौहर कानपुरी और कहाँ तक पहुँचे, एक ही गजल में जिंदगी के कितने सारे पहलुओं को छुआ। गरीबी को भी छुआ, एहसास को भी छुआ, इंसान की उस व्यथा को भी छुआ कि मतलब हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करने वाले लोग, ये कम से कम जानवरों में नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ बुजुर्गों की इज्जत है। मुनव्वर राना ने कभी कहा था कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। ये हुनर बुज़ुर्गों को आता है। कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास है।

और बहुत ही अच्छी बात मुझको याद आ गई, आपसे अपनी बात को शेयर करते हैं। जब बात यहाँ मुनव्वर राना साहब की आई कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा।

वो एक ऐसे शायर हैं जो आम इंसान के कर्ब को, उनके दर्द को लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में हम लोग जब जाते थे कुछ सामान लेने, तो राशन की दुकान पर गए जहाँ पर सब घर की चीज़ें मिलती हैं, तो मम्मी पर्ची देती थी, जाते थे और मीठा बहुत पसंद था, तो चीनी जो है वो मुट्ठी में भर लेकर भागते थे। दुकानदार दौड़ाता था, रुको रुको रुको रुको, उनको मैं सुन रहा था, गुना महोत्सव में आए हुए थे। उन्होंने एक बात बोली कि तब जब हम चीनी फाँकने का हुनर रखते थे, बच्चे थे, तो लगता था कि ये हथेली बहुत छोटी है, बहुत कम चीनी आ पाई, थोड़ा सा हथेली और बड़ी होती तो, मुट्ठी बड़ी होती तो शायद ज़्यादा चीनी आ जाती। तो उन्होंने कहा कि तब भी ये हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। अब वो बुज़ुर्ग हो गए तो बहुत सारी बीमारियां हो गई, दवा करने लगे, तो उन्होंने पंक्ति लिखी कि तब भी ये हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है, तब इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। तो उनकी एक बहुत ही खूबसूरत घटना उनके साथ हुई। उन्होंने कहा कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनाहगार पयंबर नहीं होने वाले, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और ये गजल अधूरी थी, और वो एक शादी में गए हुए थे, तो पैर में कुछ समस्या थी, ऑपरेशन हुआ था, तो उनके बहुत ही खास दोस्त के बेटी की शादी थी तो गए थे, तो उनका बेटा भी उनके साथ था, और बेटा उनके साथ था तो उनको लगा कि पार्टी है यहाँ पर, हम उसके कंधे पर रख कर चल रहे हैं अपना हाथ, बड़ा अंदर से दिल को दुख हुआ कि बताओ हमारे कारण हमारा बच्चा जो है वो महफिल में आया तो है लेकिन शिरकत नहीं कर पा रहा है, अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, मौज मस्ती नहीं है, पापा को लिए है, पापा को लिए, अब्बू के लिए, अब्बू को लिए लिए। तो इस गज़ल के बाद दो पंक्तियाँ उन्होंने कही, और अगर आप पिता होंगे तो शायद पिता का दर्द समझेंगे, और अगर पुत्र होंगे तो शायद बेटे के गम का भी एहसास आपको हो। उन्होंने अपने बेटे से कहा धीरे से, जब देखा कि कहीं गड्ढा था, कालीन बिछी होती है कहीं और कहीं गड्ढा होता है, तो संभाला बेटे ने, तो उन्होंने कहा, और कुछ रोज़ यूं ही बोझ उठा लो बेटे, अपने बेटे से कहा कान में धीरे से, लड़खड़ाए बेटे ने सहारा दिया, तो कहा और कुछ रोज़ यूं ही बोझ उठा लो बेटे, कुछ दिन हमारा बोझ और उठा लो, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, अरे चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले, अगर इस दुनिया से हम चले गए तो फिर दोबारा तुमको मिलने नहीं आएंगे, इसलिए कुछ दिन ये बोझ और उठा लो। वो बताते थे कि उनका बेटा, इस पंक्ति को जब उन्होंने सुना तो उनका बेटा रो पड़ा, और पिता और पुत्र दोनों फूट फूट के रोए। लोग समझ नहीं पाए कि क्या बात हो गई, बेटे को भी एहसास हुआ कि मेरा बाप है,
कितने दिन का मेहमान है। वास्तव में और पिता के दर्द का भी एहसास हुआ। आप लोग अगर हमको सुन रहे हैं और अगर आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आपके पास आपके माता पिता हैं, तो उनसे कभी ऊंचे स्वर में मत बोलिएगा जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है, नहीं तो ऊपर वाला मुआफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। हमारे जाने के बाद सिर्फ अफसाने रह जाएंगे, हम नहीं रह जाएंगे। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है। जी हाँ, ये मुनव्वर राना की कहानी थी। आइए अब गज़लों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मैं, क्षमा चाहूँगा आपसे। और आइए अब चलते हैं पंकज दास साहब की एक गज़ल, और इस गज़ल के बाद फिर आपसे मिलते हैं, फिर करते हैं कुछ प्यारी सी एहसास वाली बातें। सुनते रहिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM।

क्या बात है पंकज उदास की आवाज़, और जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। मतलब जी रहे हैं लेकिन जिंदा लाश है, कुछ इसी प्रकार की सोच। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं, आवाज़ विकास से। भाई क्या बात है, आज दूसरों के साथ जो करते हैं दगा, कल उनके साथ भी होगा। सूरज भगवान भी गवाह है और धरती माँ भी, क्योंकि कर्मों की कहानी यही भुगतनी पड़ती है इसी धर्म में, चाहे मैं हूँ या। बिल्कुल सही कहा आपने। सविता जी हमारे साथ चरण स्पर्श करते हैं आपको, शुभ संध्या सर जी आपको भी। और महेंद्र दीपेन जी हैं राजस्थान से, थैंक यू सॉन्ग प्ले करने, क्या बात है। जुबान तीखी है लेकिन वो सबसे मोहब्बत है, जुबान अगर मीठी है तो जहर घोलने का काम करती है, और अगर बेजुबान हो तो नादान है। सरहद पर जवान हूँ तो क्या उनकी कोई कहानी नहीं होती, उनकी तो सिर्फ जवानी नादान होती है। वो देख तो नहीं सकते लेकिन देश की सेवा में लगे रहते, सिर्फ अपने आप को कहते हैं जय हिंद। बिल्कुल भाई धर्मेंद्र मोहन जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आइए चलते हैं जौहर कानपुरी साहब की तरफ दोबारा।

उन्होंने लिखा कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। तिलावत मतलब किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ना, तिलावत कहते हैं। कुरान के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जो धर्म ग्रंथ होते हैं उसके उसको पढ़ने को तिलावत बोलते हैं। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर मतलब शाम, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर मुकर्रर मतलब निश्चित, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, यानी ईश्वर की प्रार्थना का कोई समय नहीं है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। जी मतलब उसे आप जब भी पुकारिए, जब कभी, तो ईश्वर का आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपके साथ मिलती हैं। अलग ही ठीक है। अब देखिए गजल का रुख कैसे बदलते हैं। अभी तक बात ईश्वर की हुई, अब संबंधों की है। अलग ही ठीक है वरना अब तो साथ रहने पर, अलग ही ठीक है वरना अब तो साथ रहने पर सगे भाई के सीने में भी नफरत जाग जाती है। सगा भाई अगर साथ में है तो कहते हैं कि जिसने भाई बनाया उसने बांट बनाया, जिसने सुख बनाया उसने दुख बनाया। तो अलग ही अलग रहे तो ठीक है, अलग ही ठीक है हम वरना तो अब तो साथ रहने पर सगे भाई के सीने में भी नफरत जाग जाती है। हमें जिस वक्त अखला के पैगंबर याद आता है, अखला के पैगंबर मतलब संदेश वाहक, जो संदेश लेकर आते थे ईश्वर का, तो दुश्मन के लिए दिल में भी गुर्बत जाग जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी तारीख बनाने वाले कितने नेक दिल थे, और जब पैगंबरों की बात करते हैं तो हमारे दिल में तो दुश्मनों के लिए भी मोहब्बत जाग उठती है। गजालों का बदन, गजाल मतलब होता है जो हिरन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको गजाला कहा जाता है। गजालों का बदन झुलसा के रख देता है जो मौसम, उसी मौसम में उस चेहरे की रंगत जाग जाती है। कभी कभी देखिए जो अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं लगता है कि उनके चेहरे से मतलब अभी खून बाहर निकल पड़ेगा, मतलब एकदम से चेहरा लाल लाल सा हो जाता है। मौसम तो सबके लिए एक जैसा है लेकिन अलग अलग असर डालता है। एक व्यक्ति था, उसकी दो बेटियां थी, तो उसने एक बेटी की शादी किसान के साथ की थी और एक की कुम्हार के साथ। दोनों बेटियां अपने ससुराल में खुश, अपने घर में। एक साल कुछ यूं हुआ कि जिसकी शादी किसान के साथ हुई थी वो बेटी आई और मिठाई लेकर के कहा, पापा मिठाई खाइए, अगर अब की बरसात न हुई होती तो हमारी सारी फसल चौपट हो जाती, हमारे पास खाने को कुछ न बचता। बरसात हो गई, बहुत अच्छी बात, ईश्वर की कृपा है, बरसात में अनाज अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया। अभी वो उस मिठाई खिला ही रही थी कि उनकी छोटी वाली बेटी आई। रोती उसने कहा, पिताजी सब गड़बड़ हो गया। तुमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा बारिश हो गई, हमने मिट्टी के बर्तन बनाए थे और उसको आप जानते होंगे कि तपाने के लिए आग जलाई जाती है तब वो पक्के हो पाते हैं, कच्चे बर्तन। उनका बारिश हो गई और सारे बर्तन हम लोग के बेकार हो गए, बारिश ने हमसे हमारा खाना छीन लिया। दोस्तों आप बताइए क्या बारिश गुनाहगार है? वो तो सबके लिए एक जैसी बरसती है लेकिन
उसका असर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। इंतजार करते हैं लोग बारिश कब होगी, बारिश कब होगी, बारिश कब होगी, और आती है तो किसी को सुख देकर जाती है और किसी को दुख देकर जाती है। ये इंतजार भी न साहब बड़ी बाकमाल चीज है। बात इंतजार की कर रहे हैं तो आइए अब आपको इंतजार से ही संबंधित उसी से व्यवस्था कराते हैं। देखिए इंतजार का क्या मजा होता है गजलों की दुनिया में। आइए इंतजार से रूबरू होते हैं।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि वापसी अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप ही के कार्यक्रम बहारे गज़ल में अपने खजाने को रखिएगा तैयार, क्योंकि कल है कालीन प्रोग्राम, कल होगी आपकी परीक्षा। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। चलते चलते आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी लोरी।

के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी वफादारी। पड़ोस में आते ही अशोक दंपति ने 9 साल की सपना को अपने 5 साल के बेटे सचिन की दीदी बना दिया था। तुम सचिन की बड़ी दीदी हो इसलिए तुम्हें इसकी आसपास के बच्चों से दोस्ती कराना और स्कूल में भी इसका ध्यान रखना। सपना को भी गोल मटोल सचिन अच्छा लगा था। उसकी मम्मी तो ये कहकर कि गिरा देगी छोटे भाई को गोद में भी नहीं लेने देती थी। समय बीतता रहा, दोनों परिवारों में और बच्चे भी आ गए, मगर सपना और सचिन का स्नेह एक दूसरे के प्रति वैसा ही रहा। सपना को अपने ही शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। फिर एक सहपाठी से शादी के बाद वो स्थानीय अस्पताल में काम करने लगी। हालांकि सचिन के पापा का वहां से ट्रांसफर हो चुका था, फिर भी वो मौका मिलते ही सपना से मिलने आ जाता था। विदेश में नौकरी पर जाने के बाद भी उसने फोन और ईमेल द्वारा कांटेक्ट बनाए रखा। इसी बीच सपना और उसके पति सलील को भी विदेश जाने का मौका मिल गया। बहुत दिन लगा दिए दीदी लौटने में, मैं तो यहाँ इस आस में आया था कि यहाँ आप अपनी मिल जाएंगी। मम्मी पापा तो जबलपुर में ही बस गए हैं और आप भी यहाँ से चली गई। इतने साल बाहर में अकेला रहा और फिर यहाँ भी कोई अपना नहीं, बेजार हो गया हूँ अकेलेपन से, सचिन ने शिकायत की। कुंवारों की तो साथिन ही बेजारी है साले साहब, सलील हंसा। ढलती जवानी में अकेलेपन का स्थायी इलाज सिर्फ शादी है। सलील का कहना ठीक है सचिन, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की, सपना ने पूछा। विदेश में और फिर यहां अकेले रहते हुए शादी कैसे करता दीदी, खैर अब आप आ गई हैं तो लगता है कि शादी हो ही जाएगी, सचिन बोला। लगने वाली क्या बात है, शादी तो अब होनी ही चाहिए। जबलपुर वाले मेरी उम्र की वजह से ना अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढ पा रहे हैं और ना ही मेरी पसंद को पसंद कर रहे हैं, सचिन ने हताश स्वर में कहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है वफादारी। अब तक आपने सुना सचिन और सपना, एक दूसरे को सगे भाई बहन से भी ज्यादा मानते थे। काफी उम्र हो जाने के बाद भी जब सचिन की शादी नहीं हुई तो सपना ने चिंता व्यक्त की। अब आगे आप समझा सको तो मम्मी पापा को समझाओ, या फिर खुद ही बड़ी बहन बनकर ये जिम्मेदारी निभा दो। सचिन बोला, मगर चाचा चाची जी को एतराज क्यों है? तेरी पसंद दूसरे कास्ट की है या कोई और बात है? सपना ने पूछा। नहीं दीदी, अपने ही कास्ट की है और अनमैरिड है, लेकिन वो एक्चुअली भविष्य में बच्चे नहीं चाहती, इसलिए मम्मी पापा तैयार नहीं हो रहे हैं। मगर उसे संतान क्यों नहीं चाहिए और इतनी उम्र तक वो अनमैरिड क्यों है? सपना ने शंकित स्वर में पूछा। तो सचिन ने बताया कि दीदी सिमरन इकलौती संतान थी। उसने पढ़ाई पूरी की ही थी कि उसके पिता को कैंसर हो गया था और माँ को पैरालिसिस। बहुत इलाज के बाद भी वो दोनों को बचा नहीं सकी। मेरे साथ ही पढ़ती थी मणिपाल में और अब काम भी करती है। इन्हीं सब झंझटों में शायद उसकी इतनी एज हो गई। वो मुझसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन अपनी संतान ना होने वाली शर्त के साथ। सचिन बोला, मगर उसकी ये शर्त या जिद क्यों है? सपना बोली। तो सचिन ने कहा, ये मैंने नहीं पूछा और ना पूछूंगा। वो बताना तो चाहती थी, मगर मुझे उसके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उसे सुखद भविष्य देना चाहता हूँ। उसने मुझे बताया था कि माता पिता के इलाज के लिए पैसा कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए कभी किसी से या स्वयं से लज्जित होना पड़े। दीदी, मैं उसकी प्राइवेसी की कद्र करता हूँ। आप जानती हैं ना दीदी, प्यार अंधा होता है और खासकर बड़ी उम्र का प्यार पहला ही नहीं अंतिम भी होता है। सिमरन का भी पहला प्यार ही है? सपना ने पूछा। सचिन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ दीदी, पसंद तो हम एक दूसरे को पहली नजर से ही करने लगे थे। सोचा था पढ़ाई खत्म करके आगे की प्लानिंग करेंगे, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल हो गई कि इतना समय निकल गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ईमानदारी। अब तक आपने सुना, एक दिन सचिन ने सपना को बताया कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उससे शादी करने के लिए घर वाले इसलिए तैयार नहीं हो रहे क्योंकि वो भविष्य में अपनी संतान नहीं चाहती। सपना ने सचिन से उस लड़की के बारे में सब कुछ पूछा। अब आगे, ठीक है, आज फोन पर बात करूंगी चाची जी से और जरूरत पड़ी तो जबलपुर भी चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सचिन मुझे सिमरन से तो मिलवाओ। आज तो देर हो गई है, कल ले चलूंगा आपको उसके घर, मगर उससे पहले आप मम्मी

काल पर सपना भी सकते में आ गई। हो सकता है चाची, कल मैं उससे मिलकर पता लगाने की कोशिश करूंगी, कहकर उसने फोन रख दिया। हमने तो इस संभावना के बारे में सोचा ही नहीं, सब सुनने के बाद सलिल ने कहा। सपना ने कहा, सिमरन के घर जाने के बजाय उससे पहले कहीं मिल लेना मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा। ऐसा करो, तुम कल लंच ब्रेक में सचिन के ऑफिस चली जाओ, कह देना किसी काम से इधर आई थी, सोचा लंच तुम्हारे साथ कर लूं। वैसे तो वो खुद ही सिमरन को बुलाएगा, और अगर ना बुलाए तो तुम सचिन से कह देना, सलिल ने सुझाव दिया। अगले दिन सपना सचिन के ऑफिस में पहुंची ही थी कि सचिन लिफ्ट में एक लंबी सांवली मगर आकर्षक युवती के साथ निकलता दिखाई दिया। अरे दीदी, आप यहाँ? खैरियत तो है? सचिन ने चौंक कर पूछा। सब ठीक है, इस तरफ किसी काम से आई थी तो मिलने चली आई। कहीं जा रहे हो क्या? सिमरन को लंच पे ले जा रहा था, शाम का प्रोग्राम बनाने के लिए। आप भी हमारे साथ लंच पे चलिए ना दीदी।

ने घड़ी देखी, फिर बोली, अभी तो लेट हो रहा है, चलती हूँ। जब तुम्हारे पास फुर्सत हो तो बताना, तब इत्मीनान से बैठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे और कोई हल ढूंढेंगे। आज शाम को ही आप और जीजा जी चल रहे हैं ना इसके घर? सचिन ने पूछा। तो सिमरन बोली कि आज तो बहुत थक गई हूँ, मन नहीं कर रहा। तो सचिन ने कहा, कोई बात नहीं, आप और जीजा जी घर पर रहिएगा, मैं सिमरन को लेकर घर ही आ जाऊंगा। इससे अच्छा और क्या होगा, जरूर आओ। सपना मुस्कुराई, खाना हमारे साथ ही खाना।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है वफादारी। अब तक आपने सुना, काफी उम्र हो जाने के बाद सचिन ने सपना को ये बताया कि उसकी शादी इसलिए नहीं

पा रही है, क्योंकि वो जिस लड़की को पसंद करता है उसकी शर्त घर वाले मानने को तैयार नहीं है। सपना के पूछने पर उसने बताया कि उसकी शर्त ये है कि उनके भविष्य में खुद के बच्चे ना हों। सपना ने वादा किया कि वो उसके मम्मी पापा को मनाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले वो सिमरन के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। सचिन सिमरन को लेकर सपना के घर पहुंचा। शाम को सचिन और सिमरन आ गए। सलिल की चुटकियों से शीघ्र ही वातावरण अनौपचारिक हो गया। जब किसी काम से सपना किचन में गई तो सचिन उसके पीछे पीछे आया। आपने मम्मी से बात की दीदी? हाँ, हालचाल पूछ लिया सबका, सपना बोली। बस हालचाल ही पूछा, जो बात करनी थी वो नहीं की। आपको हो क्या गया है दीदी? सचिन ने झल्ला कर पूछा। तजर्बा सही समय पर सही बात करने का। सिमरन कहीं भागी नहीं जा रही है, शादी करेगी तो तेरे से ही। जहां इतने साल सब्र किया है, थोड़ा और कर ले, सपना बोली। इसके सिवा और कर भी क्या सकता हूं, सचिन ने उसास लेकर कहा। इसके बाद सपना ने सिमरन से और भी आत्मीयता से बातचीत शुरू कर दी। एक दिन जब सपना को यह पता चला कि सचिन ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा है, वो सिमरन के घर उससे मिलने चली गई। उसका घर बहुत ही सुंदर था, लगता था बनवाने वाले ने बहुत ही शौक से बनवाया था। बहुत अच्छा किया तुमने ये घर ना बेचकर सिमरन, सच दिखता है कि इसमें तुम्हारे पापा के सपने बसे हैं। जाहिर है शादी के बाद भी यहीं रहना चाहोगी, सचिन तैयार है इसके लिए, सपना बोली। सचिन तो बगैर किसी शर्त की मेरी हर बात मानने को तैयार है दीदी, लेकिन मैं बगैर उसके मम्मी पापा की रजामंदी के शादी नहीं कर सकती। माँ बाप से उनके बेटे को विमुख कभी नहीं करूंगी। प्यार तो विवेकहीन और अव्यवहारिक होता है दीदी, उसके लिए सचिन को अपनों को कभी नहीं छोड़ने दूंगी। मैं अपनों से दूर होने का दर्द बहुत अच्छी तरह समझती हूँ दीदी, सिमरन ने कहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ईमानदारी। अब तक आपने सुना, एक दिन सचिन ने अपनी मुंह बोली बहन सपना से कहा कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उससे शादी करने को घरवाले तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी शर्त ये है कि वो भविष्य में अपने बच्चे नहीं चाहती। सपना ने तय किया कि वो सिमरन की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगी और जब उसे सब कुछ सही लगेगा तब वो सचिन के मम्मी पापा को मनाने की पूरी कोशिश करेगी। सपना सिमरन से मिलकर उसके बारे में और जानने की कोशिशें करने लगी। अब आगे सपना बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सिमरन, चाचा चाची जी यानी सचिन के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें ठीक से समझाया जाए यानी तुम्हारी शर्त का कारण बताया जाए तो वो भी सहर्ष मान जाएंगे, लेकिन सचिन ने उन्हें कारण बताया ही नहीं है। इस पर सिमरन बोली, बताता तो वो तब ना जब उसे खुद मालूम होता। मैंने तो उसे कई बार बताने की कोशिश की लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता। कहता है कि जब मेरे साथ हो तो भविष्य के सुनहरे सपने देखो, अतीत की बात मत करो। दीदी, मुझे भी अतीत याद रखने का कोई शौक नहीं है, मगर अतीत से या जीवन से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके साथ जीना मजबूरी होती है। अगर चाहो तो उस मजबूरी को मुझसे बांट सकती हो सिमरन, सपना ने धीरे से कहा। मैं भी यही सोच रही थी दीदी, सिमरन ने जैसे राहत की सांस ली। अक्सर देर से जाने और बार बार छुट्टी लेने के कारण ना मैं नौकरी पर ध्यान दे पा रही थी और ना पापा के इलाज पर। इसलिए मैं नौकरी छोड़कर पापा को इलाज के लिए मुंबई ले गई थी। वहां पैसा कमाने के लिए कभी वैक्यूम क्लीनर बेचने से लेकर अस्पताल की कैंटीन, साफ सफाई और बेबी सिटिंग तक के सारे काम मैंने किए। फिर मम्मी पापा के ऐतराज होने के बावजूद पैसा कमाने के लिए दो बार सैरोगेट मदर बनी। तब तो मैंने एक मशीन की तरह बच्चों को जन्म देकर पैसे देने वालों को उन्हें पकड़ा दिया था, लेकिन अब सोचती हूँ जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो उन्हें पालते हुए मुझे उन बच्चों की याद जरूर आएगी जिन्हें मैंने अजनबियों पर छोड़ दिया था। हो सकता है कि विचलित या व्यथित भी हो जाऊं, और ऐसा होना सचिन और उसके बच्चे के प्रति अन्याय होगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये स्थिति आने ही ना दूं, यानी हम अपना बच्चा बनाए ही ना। वैसे भी मेरी उम्र अब इसके लिए सही नहीं है। आप चाहें तो ये सब सचिन और उसके परिवार को बता सकती हैं। उनकी कोई भी प्रतिक्रिया मुझे स्वीकार होगी। सिमरन ने सारी बात खुलकर सपना को बता दी। ठीक है सिमरन, मैं मौका देखकर सबसे बात करूंगी, सपना ने सिमरन को आश्वासन दिया। सिमरन ने जो कहा था उसे नकारा नहीं जा सकता था, उसकी भावनाओं का ख्याल रखना भी जरूरी था। सचिन के साथ तो खैर कोई समस्या नहीं थी, उसे तो सिमरन हर हाल में स्वीकार थी, लेकिन उसके घर वालों से आज की सच्चाई यानी सैरोगेट मदर बन चुकी बहू को स्वीकार करवाना आसान नहीं था। उन लोगों को तो यही कहकर समझाना होगा कि सिमरन इतनी बड़ी उम्र में बच्चे पैदा करने के लिए उपयुक्त नहीं है,
सचिन के प्यार के लिए इतने से कपट का सहारा लेना तो बनता ही है। सपना मुस्कुराते हुए मन ही मन ये निश्चय ले चुकी थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी वफादारी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप हमें ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
3: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोवर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
2: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
3: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज के सफर में, हम इसी खूबसूरत सफर को लेकर के साथ में उनकी कई चीजों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफर होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं की फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपने अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोक गीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में, जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थी। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो जरा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, जरा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी। ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफी मजेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूजिक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार एसडी वर्मन से जिद की गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबा गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो जाना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से।

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी, रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी, हर अदा में जादू था, हर नजर में प्यार था, मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्योहार था, दर्द छुपा कर भी उन्होंने हंसना सीखा, हर किरदार में जीवन का रंग सजाया, वक्त ने बहुत कुछ छीना फिर भी वो मुस्कुराती रही, अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई, हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई, कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई, पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफर को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश भूले बिसरे गीतों की, तो ये शाम यही थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में, तब तक आप सभी को शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वही श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।